मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि तदनुसार 18 जून सन 2026 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार

0: उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी पारंपरिक देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण के स्वर में उन्हीं का लिखा भजन।

वाणी जयराम के स्वर में अभी आपने सुनी भक्ति रचना। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये भजन।

मानिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराय पाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख डॉक्टर शीला दानी का है।
1: विचार एक सूक्ष्म शक्तिपुंज है, इसलिए अधिकांश लोग उसके कार्यकलाप और प्रभाव को अनुभव नहीं कर पाते। परंतु अपने आसपास के व्यक्तियों पर दृष्टिपात किया जाए तो इसका रहस्य आपकी समझ में अवश्य आएगा। आरंभिक जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे हमारी समझ में नहीं आ पाता, परंतु जिसके विचार जिस ओर लगे थे, आगे चलकर उसी दिशा में क्रियान्वित हुए, जिनमें जितनी प्रतिभा योग्यता कर्मठता थी, उसी परिमाण में उनको सफलता प्राप्त हुई। हमें स्मरण होता है कि बरगद के नन्हे से बीज में एक वृहद वृक्ष होता है। उसी प्रकार नगण्य समझे जाने वाले विचारों में जीवन की महान संभावनाएं छिपी रहती हैं। जिस प्रकार एक साधारण सा कारीगर अपड़ होने के बाद भी एक अभियंता को सलाह देकर ऊंची इमारत बनाने में सहयोग कर अपने विचारों का परिचय कराता है, और एक नन्हा सा अखबार हॉकर भविष्य में अपने सद्विचारों और विचारों की शक्ति से किसी प्रेस का मालिकाना हक प्राप्त करता है, तो इसका मुख्य आधार उसकी सोच, उसकी कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण ही कहा जाएगा। संसार सागर में भांति भांति के जो कार्य संपादित हो रहे हैं, नए नए आविष्कार, महान परिवर्तन, राज्य क्रांतियां, समाज का कायाकल्प, इस सब का बीज तो विचारों में ही अवस्थित होता है। हमारी प्रत्येक क्रिया और विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं। ये विचार संस्कार ही ये निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण व्यवहार करते हैं। हमारे इन्हीं विचारों का योग हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया है, वर्तमान विचार और क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करेंगी। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है। प्राचीन ऋषियों ने अपने तप ज्ञान से ये ज्ञात किया कि मनुष्यों की शक्ति और क्षमता को पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्होंने माना कि मनुष्यों में एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो मन का भी मन, आँखों की भी आँख है और वाणी की भी वाणी है। ये एक दिव्यता है। शरीर का अंत होने पर भी उस दिव्यता का अंत नहीं होता। विचार व्यक्ति के देहांत के पश्चात भी जीवित रहते हैं। वास्तव में विचारों में ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं, इसलिए इन्हें दूधारी तलवार की भी संज्ञा दी गई है। एक ओर जहां वे निर्माण कार्य या सदकार्यों को संपादित और संचालित करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें विध्वंस की अपार संभावनाएं भी कहीं कहीं अंतर्द्वंद उत्पन्न करती हैं। हमारे पूर्वजों ने इसलिए हमें हमेशा आगाह किया है कि अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छे संपर्क से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो सकता है। आज हमारे आसपास विचारों को संजोने संवारने और सुरक्षित रखने के आधुनिक उपाय विद्यमान हैं। इन्हें आत्मसात कर समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोगी बनना हमारा परम कर्तव्य है। हम किसी विचार को लेकर उसका जैसा अनुकूलन कर मानस चित्र बनाएंगे, वैसा ही प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप एक विचार लीजिए, आत्मविश्वास। इसे लेकर मानसिक चित्र बनाएं। एक ऐसे दृढ़ निष्ठाशील व्यक्ति को मानस नेत्रों से देखिए जो प्रत्येक कार्य स्वयं अपने विचार, पुरुषार्थ और स्वावलंबन से करता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता। वो यश प्रतिष्ठा स्वयं अर्जित करता है। आज सूरदास जी, तुलसीदास जी, मुक्तिबोध जी, अज्ञेय जी, रघुवीर साहब, केदारनाथ सिंह जी यद्यपि हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी रचनाएं, उनके विचारों का शक्तिपुंज हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रचनात्मक बनाता है, हमें प्रेरणा देता है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था डॉक्टर शीला दानी का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस कान।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव, जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे, अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा में, लाख खेती अपनाएं लाखों कमाएं, इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लाख खेती कब और कैसे करें। लाख की खेती किसानों के लिए एक लाभकारी और कम लागत वाली खेती होती है। लाख की खेती शुरुआत करना बेहद सरल है, बशर्ते अगर आप सही तकनीकी का उपयोग करें तो। लाख की खेती के लिए मुख्य रूप से बेर, पलाश, सेमीलता और कुसुम के पेड़ पर की जाने वाली एक कीट पालन प्रक्रिया है। इसमें केरिया लाका नामक सूक्ष्म कीट पेड़ की टहनियों से रस चूसकर एक प्राकृतिक रेजिन जिसको लाख बोलते हैं छोड़ते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा 60% लाख की खेती झारखंड में की जाती है। और हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन होता है। लाख का इस्तेमाल मुख्यतः सिंगार की वस्तुएँ, फलों एवं दवाओं की कोटिंग तथा सजावट की वस्तुएँ तैयार करने में किया जाता है। लाख की खेती सेमीलता पे कैसे करें उसकी बात करेंगे। सेमीलता का गुड़ कैसा होना चाहिए, तो सेमीलता जहाँ पे इसका लाख उगाना है इसका बागान एक वर्ष में तैयार किया जाता है। बागान लगाने के दूसरे वर्ष से लाख की खेती प्रारंभ की जा सकती है। पौधे की ऊंचाई सेमीलता पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण महिलाएं भी लाख की खेती आसानी से कर सकती हैं तथा फसल की कटाई के 6 माह पश्चात दोबारा इन्हीं पौधे पर कीट संचारण किया जा सकता है, जबकि कुसुम एवं अन्य वृक्ष पर 18 माह का समय लग सकता है। लाख की खेती की हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताएंगे सेमीलता पे। तो सबसे पहले पेड़ की छटाई, सबसे पहले पेड़ की सूखी टहनियों को काटा जाता है ताकि नई टहनियाँ आ सके। कुसुम वृक्ष के लिए जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में की जा सकती है तथा पलाश के वृक्ष के लिए इसकी कटाई छटाई पतझड़ के बाद, बेर और सेमिया लता की कटाई की छटाई मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक की जाती है। दूसरा इसका स्टेप है बीहन या बीहन लाख का संचारण। जब नई टहनियाँ निकल आए तो 100 ग्राम की बीहन लाख को नायलोन थैले में रखकर 6 इंच लंबी 3 से 4 डालियों को डंठियों में बांधा जाता है तथा कीट पालन की प्रक्रिया आती है। इसमें डंडियों में कीट निकालकर नए पेड़ के टहनियों पर फैल जाते हैं और लाख की परत जमाना शुरू कर देते हैं। बीहन लाख से शिशु कीट निकल जाने के बाद डंठलों को पेड़ से हटा देना चाहिए। इसके बाद हम किसान भाइयों को सेमीलता में जो लाख की खेती करें उसको लगाने की विधि बताएं। तो ये आंशिक छायादार एवं उपजाऊ काली मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। इसको बीज द्वारा या आंशिक रूप से कलम करके किया जा सकता है। क्यारियों का आकार इसमें 9x1.2 मीटर रखें। लगभग आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी को उलट पलट कर देना चाहिए। इसमें लगभग 50 केजी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाकर अप्रैल मई माह में 15 सेंटीमीटर कतार की दूरी पर बीज लगा देना चाहिए और हो सके तो किसी संभावित फफूंद के आक्रमण से बचाने हेतु तो कार्बेंडाजिम का छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। किसान भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। तो जो पौधे से पौधे या पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 1 मीटर पर रखना चाहिए तथा इसके पंक्ति के बाद 2 मीटर का खाली जगह छोड़ देना चाहिए, जिसमें से कि इसमें हवा का आगमन हो सके तथा खर पतवार के नियंत्रण के लिए मशीन द्वारा रोकथाम किया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे कीट संचरण। यदि शाखाएं 4 से 5 फीट की हो गई हो तो कीट संचरण जुलाई माह में किया जा सकता है। संचरण इस प्रकार से किया जाता है कि प्रति शाखा पर लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की लंबाई तक ही शिशु कीट बैठें। लाख की उत्पादकता के बारे में बात करें तो सिंचित अवस्था में जहां वातावरण का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है वहां ग्रीष्मकालीन फसल ली जा सकती है। वैसे 35 से 40 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। 1 हेक्टेयर में 8000 पौधे पर कीट संचरण ऋतु लगभग 400 केजी बीहन

0: की आवश्यकता होगी, जिससे कि लगभग 2000 केजी बीहन का उत्पादन होगा।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लाख खेती अपनाएं लाखों कमाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सत्यप्रकाश विश्वकर्मा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। रात 9:25 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा विरासत। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम नक्सलवाद सुनिएगा सुबह 10 बजे। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऑटिस्टिक गौरव दिवस पर ऑटिस्टिक पीड़ित बच्चों की समस्या और देखभाल पर विशेष शिक्षक श्री विनय शर्मा से खास बातचीत। साथ ही सुनिएगा योग और महिलाओं का स्वास्थ्य पर योग चिकित्सक डॉक्टर सुनीता जैन से विशेष चर्चा। और आप सुनेंगे संपत्ति कर भुगतान विशेष अभियान पर रायपुर नगर निगम की राजस्व और बाजार उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा से विशेष संवाद। प्रस्तुतकर्ता होंगी श्रेया श्रीवास्तव। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल वाटिका के आकर्षण होंगे बेरा के बाद। इसमें योग ला अपन दिनचर्या के हिस्सा बनावव पर चर्चा होगी। आवव सुनन कहानी में कहानी सुनिएगा चिरई चिरगुन हमर संगवारी। कहानीकार होंगे श्री राम कुमार साहू। और होगा लयिका मन की चिट्ठी और लयिका मन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फुलवारी। और होगा बाल गीत। कार्यक्रम प्रगति के सोपान में सुबह 9 बजे आप सुनेंगे नशा मुक्त भारत अभियान पर समाज कल्याण विभाग रायपुर के संयुक्त संचालक श्री अरविंद गेदाम से बातचीत। आपसे बातचीत करेंगे रमाशंकर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे बांस गीत। कलाकार होंगे साखू राम यादव। और साथ ही आप सुनेंगे राजकुमार उदल और इदल का किस्सा। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मुन्ना लाल पाल। और साथ ही ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। श्रोताओं की पसंद पर आधारित इस कार्यक्रम का प्रसारण समय है सुबह 11:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुनेंगे शाम 5 बजे। आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में सुनिएगा हल्बी गीत और सरगुजिहा गीत। हल्बी गीत के कलाकार होंगे मधुराम और साथी। और सरगुजिहा गीत के कलाकार होंगे राम रतन और साथी। प्रसारण समय दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया प्रसारित होगा। आकर्षण होंगे आज के बाद। इसमें अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें और योग भगाए रोग इस पर चर्चा होगी। स्वरोजगार से सशक्तिकरण इस विषय पर डॉक्टर अंजलि औधिया की वार्ता आप सुनेंगे। और होगा गीत संगीत और टिप्स। शाम 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी के आकर्षण होंगे अपन गोट। इसमें सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर चर्चा होगी। संस्कृति के महक में खेती किसानी और हमर संस्कृति इस पर दीपमाला तिवारी की वार्ता आप सुनेंगे। और होगा माटी के गीत। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा मक्का के वैज्ञानिक खेती। किसान वाणी में आज की सलाह में हल्दी और अदरक की उन्नत खेती इस विषय पर डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी की सलाह आप सुनेंगे। 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता सुनिएगा रात 8:15 पर। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे आप सुनेंगे पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देश अनुरोध गीत। फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9

15 मिनट, 10:35, दोपहर 1:05, 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमन्त्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीयदिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीयदिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च सम्बोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटम् अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 2022 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सात बजकर 5 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है श्रेया श्रीवास्तव,

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। सुबह का समय वो पल है जो प्राकृतिक ऊर्जाओं से भरा होता है, वो ऊर्जाएं जिनमें जीवन का सार निहित है और जो हर नए दिन के साथ हमारे लिए ना केवल नई खुशियों की बल्कि नए जीवन की सौगात लेकर आती है। काली अंधेरी रात के बाद हर सुबह उगते हुए सूरज के साथ हम एक बार फिर से जन्म लेते हैं, क्योंकि हर नया सवेरा हमें कुछ नया और कुछ बेहतर करने का संदेश देता है और हमारे अंदर उस नवीन ऊर्जा का संचार करता है जिससे कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और खुद के लिए बेहतर जीवन की कल्पना को साकार कर सकें। क्योंकि साथियों, कामयाबी भी सुबह के जैसी ही होती है, जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। तो आइए साथ मिलकर प्रकृति की इस सौगात को स्वीकार करें और इसका शुक्रिया अदा करें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर, मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव और पूरे दिल से स्वागत करती हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में, ये कहते हुए कि नमस्कार रायपुर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: जो इंसान अपनी स्वयं की निंदा सुन लेता है, वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। कमजोर व्यक्ति हर काम को असाधारण समझता है, जबकि वीर हर काम को साधारण मानकर उसे पूरा करने का प्रयास करता है। श्रोताओं, प्रेरणादायक ये सुविचार है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का, जिन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अपने सुविचार के माध्यम से वो हमें आत्मनियंत्रण के महत्व को समझा रहे हैं। साथियों, कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, अच्छी नीयत और सकारात्मक विचार, इन सब के साथ साथ जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण का होना बेहद जरूरी है। अक्सर जब हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब बहुत सी कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्ष के साथ ही हमें कई बार लोगों के नकारात्मक विचार और उनकी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसका असर कई बार ये होता है कि हम निराश हो जाते हैं, खुद पर संदेह करने लगते हैं और कभी कभी तो प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। पर यही वो समय होता है जब हमें संयम और धैर्य का दामन थामे आत्मनियंत्रण बनाए रखना है, और चाहे अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले कितनी भी कड़वी बातों का घूंट क्यों न पीना पड़े, हमें उस पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र रखना चाहिए, क्योंकि यही वो निर्णायक पल है जो हमें बना भी सकता है और हमारा सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में कमजोर व्यक्ति हर काम को असाधारण समझते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि वीर अपने आत्मबल को बनाए रखते हैं और हर काम को साधारण मानकर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर एक बात हमेशा याद रखें कि सुनते वही हैं जो कुछ करते हैं, और जो इंसान अपनी निंदा सुन लेता है, वो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य तो क्या बल्कि विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है।

0: श्रोताओं, हर दिन में कुछ ना कुछ खास होता है। हर दिन की कोई ना कोई कहानी होती है। आज 18 जून है, यानी साल के 6वें महीने का 18वां दिन। एक ऐसी तारीख जो वैश्विक स्तर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो आइए हम भी जाके इतिहास के पन्नों में और देखें कि 18 जून इस दिन में क्या कुछ खास है। साथियों, हर साल 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय ऑटिस्टिक गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को सम्मान देना और गौरवान्वित महसूस कराना है। इसलिए ऑटिस्टिक लोगों के लिए इस दिन का खास महत्व है। इसके माध्यम से ये बताया जाता है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे थोड़े अलग होते हैं। उनकी आकांक्षाएं और संभावनाएं सामान्य बच्चों से थोड़ी कम होती है, पर ये बच्चे किसी से भी कम नहीं होते। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन जीने के लिए अच्छा माहौल मिल सके, उनके गर्व की भावना पैदा हो सके और उन्हें भविष्य में बेहतर अवसर मिले, इसी उद्देश्य के साथ ये दिन हर साल इसी तरह से मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। ब्राजील में पहली बार AFF द्वारा इसी साल ये दिवस मनाया गया था और तब से लेकर आज तक हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे, यानी कि ऑटिज्म प्राइड डे गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस अवसर पर हमने बात की अर्ली इंटरेस्ट और स्पेशल एजुकेटर श्री विनय शर्मा से, जो पिछले 23 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय ऑटिस्टिक गौरव दिवस पर ऑटिस्टिक बच्चों की समस्याओं और देखभाल संबंधित उचित सलाह पर आपको सुनवाएं विशेष शिक्षक श्री विनय शर्मा से विशेष संवाद।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार मैडम।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे सामान्य बच्चों से अलग कैसे होते हैं और शुरुआती दौर में ही इनकी पहचान कैसे हो सकती है।
2: मैम, ऑटिज्म जो बच्चे जो होते हैं ये भी मतलब सामान्य बच्चे की तरह होते हैं। इनके दिमाग का जो काम करने का तरीका जो होता है थोड़ा अलग होता है। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म बच्चे की पहचान होती है। कई बार क्या होता है कि ऑटिज्म बच्चों में 3-4 से प्रॉब्लम दिखते हैं, जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन प्रभावित होता है इन बच्चों का। ऑटिज्म बच्चे में क्या होता है, बच्चे आंख से आंख मिला के बात नहीं करते हैं। जब आप उसके नाम लेके बुलाओगे तो बच्चा क्या करता है, रेस्पॉन्स नहीं करेगा आपको, और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते बच्चे। उन बच्चों में कुछ बिहेवियर इश्यूज रहते हैं, जैसे एक ही काम को बच्चा जो है बार बार करता है, अपने हाथ को रगड़ेगा कई बार, खिलौने को लाइन में खेलना पसंद करता है बच्चा। रूटीन में बदलाव थोड़ा सा भी करेंगे तो बच्चा क्या है, इरिटेट हो जाता है, रूटीन को बदलाव पसंद नहीं करता है बच्चा। और कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं बच्चे में। ऑटिज्म बच्चों के सेंसरी इश्यूज में जैसे कि बच्चा तेज आवाज जब आएगा कहीं से भी, बच्चा अपने कान को बंद कर लेगा, अजीब से चिल्लाते, या तो उसको तेज लाइट चाहिए या तो बिल्कुल लाइट उनको पसंद नहीं है बच्चे को। कई बार कपड़े से भी बच्चों को एलर्जी होता है, बच्चे कपड़े को पसंद नहीं करते पहनने के लिए। तो इस सब के बच्चे जो है वो ऑटिज्म बच्चे में आते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं इस तरह से।
1: सर, ऐसे में जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी अच्छी और सही देखभाल के लिए आप अभिभावकों से क्या कहेंगे?
2: सबसे पहले तो ये जरूरी है कि बच्चे को स्वीकार करें कि आपका बच्चा ऑटिज्म है, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब इसे डरे नहीं कि बच्चे में ऑटिज्म हो गया, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनके ब्रेन का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये बच्चा अलग है लेकिन कम नहीं है, ऑटिज्म बच्चे कम नहीं रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा ऑटिज्म, अगर आपको लगता है कि बच्चे में प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो उसका अर्ली इंटरवेंशन चालू करना है। अर्ली इंटरवेंशन जल्द से जल्द बच्चे में शीघ्र हस्तक्षेप करना है कि बच्चे में प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से उसके कोर्सेस होते हैं, उनको जो आपको ढूंढना है कौन कोर्स उसमें, वैसे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, उसका स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर थेरेपी, इस सब की जो थेरेपी जो होती है इन बच्चों को इंटरवेंशन देना है। क्योंकि अगर जल्दी से जल्द हमने अगर काम करना चालू करते हैं, समझ में आगे कि 1 से 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसमें ऑटिज्म दिख रहे हैं, तो हम समय रहते हुए उसके ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हम कम कर सकते हैं। और कई बार बच्चे अच्छे भी हो जाते हैं क्योंकि अगर अर्ली इंटरवेंशन मिले तो। अगर ऑटिज्म बच्चा है तो उसकी रूटीन को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा सुबह से लेकर रात के सोने तक में जो रूटीन होती है उसका रूटीन को बनाए आप। सामाजिक संपर्क बच्चे का डेवलप करें, क्योंकि बच्चों में सामाजिक संपर्क में बहुत पीछे रहते हैं, तो आप बच्चों को समाज के बीच में लेकर जाए, सामाजिक संपर्क बनाए उनसे बच्चों का, उनके दैनिक जीवन के जो रूटीन के उसको एडियल एक्टिविटीज को उसको सिखाए। एडियल एक्टिविटी बहुत जरूरी है बच्चे का, इस सबसे हम करा सकते हैं बच्चों को।
1: सर, जो ऑटिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करने और बेहतर जीवन जीने के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
2: ऐसे बच्चों को जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी है कि उसके जो खूबियों का ध्यान रखे, क्योंकि उन बच्चों में भी बहुत सारी कुछ खूबियां रहती है, कि उनकी खूबियों को हमको बढ़ाना है, उसके जो लाइफ स्किल्स है बच्चों को जिसको हमको सिखाना है, इन बच्चों में फंक्शनल जो चीजें जो होती है ऐसे स्किल्स उसमें डेवलप करना है, जिसको बोलते हैं हम लोग जो कार्यात्मक इच्छा कार्यात्मक फंक्शनल स्किल्स होती है वो इन बच्चों को सिखाना है और उन बच्चों में ये डेवलप करना है। पेरेंट्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो अभिभावक जो होते हैं जिन बच्चे ऐसे जो जूझ रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स, उनको भी ट्रेनिंग चाहिए ऐसे बच्चों को, उनको घर में डेवलप करना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, तो ये सब चीजें कम करके बच्चों को उसकी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं।
1: सर, जो समाज का समान वर्ग है उनका रवैया किसी ऑटिस्टिक के लिए कैसा हो और आम जन किस तरह से अपना सहयोग इन्हें दे सकते हैं?
2: तो समाज का रवैया ऐसा रहे कि उनको दया मत दिखाए, बच्चा ही दया के पात्र है, उसको स्वीकार करे कि ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमसे बड़े इनकी जरूरत थोड़ी अलग है लेकिन स्वीकार करे। जो इनके जो पेरेंट्स है उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे जो पेरेंट्स रहते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं समाज, तो वो बहुत निग्लेक्ट हो जाते हैं, उनको घूरे नहीं। कई बार क्या होता है कि बच्चा कहाँ से आ गया, देखो ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, कहाँ उसको कौन लेके आया, समाज के बीच में बाजार में मॉल में अक्सर ऐसा होता है कि हमें बच्चे दिखते हैं, बच्चे कुछ अच्छी शोर करते हैं परेशान करते हैं, तो समाज को देखने का नजरिया थोड़ा अलग तरह का हो जाता है, कई लोग घूरते हैं, कई लोग उसको चिल्लाते हैं, घिना करते हैं इन बच्चों से, तो समाज को चाहिए कि उनसे किसी घिना नहीं करे और उनसे किसी तरह का कोई ताना मत मारे, इसे मेजर बढ़ाए, क्योंकि इन बच्चों को सोशल इंटरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो समाज का भी दायित्व है कि हमारे हिस्सा है, तो हमें इसे सोशल इंटरेक्शन को बनाना है इसके साथ में और हमारे समाज में जागरूकता फैलाना है कि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है, इसको हमको छोड़ना नहीं है।
1: सर, जाते जाते आज अंतर्राष्ट्रीय ऑटिस्टिक गौरव दिवस पर आप हमारे सभी श्रोताओं से इस विषय पर और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
2: हर इंसान एक खास होता है, हर बच्चा खास होता है, और गौरव दिवस में ये कह रहा हूँ कि चाहे जैसा भी हो वो एक गौरव का पात्र है, उसे भी उतना हक है, उनका जो समझने का देखने का जो नजरिया वो अलग है थोड़ा सा, वो उनकी ताकत है। माता पिता अभिभावक से कहूंगा कि ये जो संघर्ष में एक मीठा संघर्ष बोलते हैं इन बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स अभी जो डील कर रहे हैं, तो एक मीठा संघर्ष है, उसको एक्सेप्ट करें, आप डरे ना, हार नहीं माने अपना, तो किसी भी कीमत है उसको हारना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है और जीत हासिल करनी है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं होती है, इनके बस थोड़ा सा देखने का तरीका इनका अलग होता है, तो इनको बीमारी मत समझे इसको, ये समाज को चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करे और इनको भी अपने समाज के साथ मिला के आगे बढ़े। सामान्य बच्चों को भी चाहिए कि बच्चे भी इन बच्चों के साथ दोस्ती करें, उन्हें भी अपने साथ खिलाए, उसे इनसे निग्लेक्ट नहीं करे, उनको चिढ़ाए नहीं, उनको भी अपने साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए बच्चों।
1: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी जरूरी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य और योग का गहरा संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन से है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से न केवल रोगों से बचाव होता है, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है। योग का अभ्यास जीवन को संतुलित, सुखी और रोग मुक्त बनाता है। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान के साथ संतुलित आहार, समय प्रबंधन और सकारात्मक विचार अपनाकर हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली ही शारीरिक सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। अगर खास तौर पर बात की जाए योग और महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो योग की महिलाओं के स्वास्थ्य को पुष्ट करने बहुत ही विशेष भूमिका होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनके रोकथाम को समय पर करना बेहद जरूरी है और उसका उचित निराकरण योग विशेष लाभकारी होता है। और इन सब के साथ साथ गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ महिलाओं द्वारा योगाभ्यास उनकी इस यात्रा को और भी सुगम, सरल और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। ऐसे में योग और महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में उपयोगी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की आयुष योग वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में पिछले 9 सालों से बतौर योग चिकित्सक कार्यरत डॉक्टर सुनीता जैन से। तो आइए इस विषय पर आपको सुनवाए डॉक्टर जैन से विशेष चर्चा।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्ते मैम।
1: मैम, अगर बात करें योग और महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य को पुष्ट करने योग की क्या भूमिका होती है।
2: महिलाओं का काम आजकल बहुत बढ़ चुका है। जैसे पहले लेडीज केवल घर पे रहती थी, ज्वाइंट फैमिली में रहना है, 40 से 50 लोग के साथ रहती थी, उनके ऊपर एक केवल फिजिकल वर्क का एक प्रेशर होता था। बट अभी आज के कंडीशन पे अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद पूरी जवाबदारी महिलाओं के ऊपर बढ़ चुकी है। उन्हें घर का काम भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है और एट द सेम टाइम उनको इकोनॉमिकली भी हेल्प करनी है घर चलाने के लिए। तो इस वजह से उनका जो प्रेशर है, फिजिकल और मेंटल प्रेशर, अभी वो दोनों बढ़ चुका है। तो इस स्थिति में योग एक सबसे सरल मार्ग है, जिसमें अगर वो लेडीज योग अपने जीवन पे से अगर अपनाती है तो वो फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल हेल्थ को भी वो अचीव कर सकती है।
1: मैं, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जैसे PCOS, PCOD, PMS या अन्य ऐसी कई समस्याएं, तो इन सब में योग किस तरह से कारगर है?
2: आजकल जितने भी ये कंडीशंस हो रहे हैं मैम, PCOD, PCOS, ये सभी इररेगुलर लाइफस्टाइल, अत्यधिक तनाव और अनियमित खान पान के कारण ही ये हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजों से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है आजकल मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बॉडी में हाई होता है और उसको कम करने के लिए जो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो बॉडी में होते हुए भी वो अपना कार्य नहीं करता है। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा फायदा योग करता है, क्योंकि योग से इंसुलिन सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं थ्रू फिजिकल वर्कआउट, आसनों के माध्यम से। बहुत सारे पावर योगा है, सूर्य नमस्कार है, ये सब कंडीशन से हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, मोटापा कम करने में ये बहुत लाभकारी है और उसके साथ साथ अनियमित जीवन शैली में भी हम सुधार कर सकते हैं योग के माध्यम से। और जब हम योग करते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखते हैं, तो ये जो अनियमित खान पान होता है उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो योग वुमन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल, क्योंकि ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस हैं और हार्मोनल जो है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है। तो इमोशंस को अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन योग है।
1: मैम, गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही नाजुक पल होता है, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान गर्भस्थ महिलाओं के लिए योग का क्या महत्व है?
2: जो गर्भावस्था होता है अगर हम देखें उसे हम तीन भाग में, तिमाही में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम योग आसन अवॉइड करते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं जेंटल स्ट्रेचिंग, बिल्कुल हल्के शिथिलीकरण अभ्यास, कुछ प्राणायाम, सबसे इम्पोर्टेंट है नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। जो उस समय शारीरिक चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या उस समय जो तनाव होता है, वो सब चीज को अगर हमको कोप अप करना है तो हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, रिलैक्सेशन टेक्निक और ध्यान के माध्यम से हम उस तनाव को कम कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, चौथा, पांचवा और छठवा महीना, उस समय बेबी का डेवलपमेंट स्टेज होता है। समय हम यूट्रस को और मजबूत बनाने के लिए और बेबी तक बहुत अच्छे से नरिशमेंट पहुंचाने के लिए हम ऐसे बहुत सारे आसन कर सकते हैं जिससे एक गर्भावस्था की स्थिति में फायदा हो, जैसे तितली आसन है, ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, ऐसे बहुत सारे आसन है जो धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर अर्थात नितंब को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें ज्यादा फोकस करना होता है अपने पेल्विक फ्लोर पर, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो उसे जितना हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे उतना अच्छे से उस पेशेंट को, उस लेडीज को हम तैयार कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उसके साथ में हम बहुत सारे मंत्र चैंटिंग पे फोकस करते हैं, भजन सेशन हम प्लान कर सकते हैं और उनके धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है इंसिस्ट करें कि वो उसे फॉलो करें, तो वो सभी चीजें जो है एक गर्भ संस्कार के रूप में वो बच्चों को भी ट्रांसफर होती है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं बेबी को जैसा हम चाहते हैं, डिजाइन हाउ वी आर डिजायरिंग। तो ये एक आउटकम हमको मिलता है अगर हम योग और गर्भ संस्कार फॉलो करते हैं पूरे प्रेगनेंसी के दौरान।
0: मैम, गर्भावस्था के दौरान योग अभ्यास करते हुए किस तरह की सावधानियां रखना अनिवार्य है और ऐसे किस प्रकार के आसन विशेष लाभकारी होते हैं?
2: गर्भावस्था में मैम कंडीशन जो है वो अलग अलग महिलाओं की अलग अलग होती है, तो बेटर है कि वो किसी के गाइडेंस में किसी योग चिकित्सक या जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, योगा नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स या जो सर योग प्रशिक्षक हैं, उसके अंडर ही योग अभ्यास करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना किसी के गाइडेंस के योग ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे आसनों का बंधन होता है, उसे नहीं करेंगे और पूरे 9 मासिक यात्रा गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखें। पेट पे प्रेशर पड़ने वाले अभ्यास ना करें, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होने वाले, थकाने वाले, जंपिंग, जॉगिंग, ये सब प्रैक्टिस ना करें तो ज्यादा उचित होगा।
0: मैम, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से और खासकर महिलाओं से इस विषय पर क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
2: पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी अपने लिए पूरे दिन भर में कम से कम 45 मिनट जरूर निकालें, क्योंकि पूरी लाइफ हमें दूसरों के लिए निकालना होता है और लेडीजों के लाइफ में 3 बार उनका जन्म होता है, एक बार जब उनका मासिक धर्म चालू होता है, सेकंड जब वो प्रेग्नेंट होकर एक बेबी को डिलीवर करती है और थर्ड मेनोपॉजल एज। ये जो 3 पड़ाव जो होता है महिलाओं के लाइफ में, वो उस पड़ाव में पूरे हार्मोन्स का अप एंड डाउन होता है, तो उस पे उनके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। कई बार वो चीजें कोप अप हो जाती है और कई बार वो एक विशेष लक्षण के रूप में, कई बीमारियों का रूप लेकर वो बाहर आती है। तो अगर आप योग को शुरू से अपनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम रोक सकते हैं, क्योंकि योग एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। अब उसे योग थेरेपी के रूप में यूज कर रहे हैं। यहाँ अगर रायपुर के होता अगर आप सुन रहे हो तो आप यहाँ आयुष योग वेलनेस सेंटर रायपुर में, जो गवर्नमेंट संचालित एक कक्षाएं यहाँ पे होती है, ये आयुष योग वेलनेस सेंटर रायपुर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में संचालित है, कि हर जिले में यह आयुष विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा ये संचालित है। आप कहीं पर भी निःशुल्क योग का फायदा उठा सकते हैं और योग थेरेपी के रूप में अलग अलग बीमारी में भी आप योग को सीख सकते हैं।
0: मैम, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी उपयोगी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ, क्या कहा?

0: श्रोताओं, किसी भी शहर, राज्य और देश के सर्वांगीण विकास में उसके जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका होती है। वो नागरिक जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का भी भलीभांति पालन करते हैं। किसी राज्य और राष्ट्र के प्रति प्रमुख कर्तव्यों में से एक है संपत्ति कर भुगतान या प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स, जिसे हम आम भाषा में हाउस टैक्स भी कहते हैं। ये टैक्स नगर निगम और नगर पालिका द्वारा अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, फ्लैट या दुकान आदि पर लगाया जाता है और इससे मिलने वाली राशि स्थानीय सरकारों की मुख्य आय का साधन होती है, जिसका उपयोग वो विभिन्न विकास कार्यों में करते हैं। इसलिए लोगों को टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने नगर निगम रायपुर द्वारा संपत्ति कर भुगतान विशेष अभियान या यूं कहें कि प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसे में इस विशेष अभियान से जुड़ी सटीक और अधिकृत जानकारी आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की रायपुर नगर निगम राजस्व एवं बाजार विभाग उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा से। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस विषय पर उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा से खास बातचीत।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्ते श्रेया।
1: मैम, सबसे पहले हम आपसे संपत्ति कर भुगतान विशेष अभियान या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट कैंपेन के बारे में जानना चाहेंगे और ये भी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: नगर निगम रायपुर द्वारा विशेष संपत्ति कर भुगतान अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को समय पर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक धारणा होती है कि केवल वो मार्च में टैक्स पटा सकते हैं, लेकिन नगर निगम के केस में ऐसा नहीं होता है। कभी भी जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, उसके 3 महीने बाद आकर आपको उसकी सूचना देनी होती है और आपको प्रॉपर्टी टैक्स पटाना होता है और पूरे साल यह प्रक्रिया चलते रहती है। आप पूरे साल इसको पटा सकते हैं। आप जो प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं, इससे जो नगर निगम है उस राशि का उपयोग करके सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता उद्यान, अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास और रखरखाव में इस्तेमाल करते हैं इसको। और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान का लाभ उठाते हुए समय पे अपना कर जमा करें और शहर के विकास में सहभागी बने।
1: मैम, इस अभियान के अंतर्गत भुगतानकर्ता को क्या किसी तरह की विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं?
2: जी हाँ, नगर निगम रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 के संपत्ति कर के अग्रिम भुगतान पर 6.25% की विशेष छूट दी जा रही है, जो संपत्ति कर में रिबेट रहेगा। यह छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो निर्धारित अवधि के भीतर अपना संपत्ति कर जमा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम नागरिक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर जमा करने का हम सुविधा दे रहे हैं। प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है, अपने नजदीकी जोन ऑफिस जाके या फिर गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी वो जमा कर सकते हैं।
1: मैम, इस विशेष छूट या सुविधा के लिए क्या किसी तरह की कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है?
2: जी, जो ये संपत्ति कर पर छूट दी जा रही है 6.25%, यह केवल 30 जून 2026 तक निर्धारित है। अतः सभी करदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और समय रहते हुए अपना संपत्ति कर जमा करके छूट का लाभ उठाएं।
1: मैम, इस संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया किस प्रकार है और इसके लिए भुगतानकर्ता को क्या कुछ करना होगा?
2: संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। नागरिक अपने नजदीकी नगर निगम के जोन कार्यालय में जाकर संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो नगर निगम की ऑनलाइन सुविधा है, उसके माध्यम से भी घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के लिए करदाता को अपने संपत्ति का विवरण या पुरानी कर की रसीद रखनी चाहिए। उसके अलावा, जैसा कि मैंने बताया, फोन पे, गूगल पे पर प्रॉपर्टी UID डालकर भी वो भुगतान कर सकते हैं।
1: मैम, ऐसे में ये अभियान अपनी उद्देश्य पूर्ति में कहाँ तक सफल रहा है और भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं?
2: जो ये अभियान है, उसका उद्देश्य यही था कि नागरिक जो मार्च में होने वाली रश होते हैं उनसे बचें और जो जिम्मेदार नागरिक है जो समय पर टैक्स पे करते हैं, हम उनको कुछ सहूलियत दे पाएं। इसीलिए हम ये 6.25% का हम ये विशेष छूट भी उनके लिए लाए हैं। तो अभी हमारे लगभग 12 करोड़ के आसपास यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुकी है। ये जो आपका छोटा सा योगदान है, ये रायपुर को अधिक स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो हमारा उद्देश्य है, उससे हम सफल हो पाएंगे।
1: मैम, अंत में जाते जाते आप सभी श्रोताओं से इस विषय पर और क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
2: मैं रायपुर नगर निगम के सभी सम्माननीय नागरिकों से अपील करना चाहूंगी कि वे अपने शहर के विकास, स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें और जो अनावश्यक रूप से उनको सरचार्ज देना पड़ता है, जो कि 17% है, उससे बचें, बकायेदार होने से बचें और आपके छोटे से योगदान से हम अपने ही शहर को बहुत अच्छा, स्वच्छ, सुंदर और विकसित बना पाएंगे।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: श्रोताओं, आइए अब आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा की समय सारणी के संबंध में आवश्यक जानकारी दें। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 10 अगस्त से प्रारंभ होंगी। परीक्षा के दौरान अगर कोई अवकाश घोषित किया जाता है तो भी ये परीक्षाएं यथावत ही होंगी। राज्य ओपन स्कूल ने दोनों परीक्षाओं की समय सारणी भी घोषित कर दी है, जिसके अनुसार 10वीं की परीक्षा 10 अगस्त से 25 अगस्त तक और 12वीं की परीक्षा 10 अगस्त से प्रारंभ होकर 29 अगस्त तक संचालित होगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:30 रखा गया है और प्रायोगिक परीक्षाएं भी परीक्षा के दौरान ही संबंधित केंद्रों में प्रसारित की जाएंगी। हायर सेकेंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान हाई स्कूल की प्रायोगिक परीक्षा और हाई स्कूल की सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान हायर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षा ली जा सकती है। ओपन स्कूल की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है। विद्यार्थी सामान्य शुल्क के साथ 30 जून तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद किसी कारणवश फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थी ₹500 विलंब शुल्क के साथ 3 जुलाई से 8 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थी प्रवेश से संबंधित जानकारी के लिए समीपस्थ अध्ययन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं और परीक्षा फॉर्म ओपन स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर समीप के अध्ययन केंद्र में ऑफलाइन भी इसे जमा कर सकते हैं। अगर आप भी राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दिलाना चाहते हैं तो इन सभी आवश्यक जानकारियों पर विशेष ध्यान जरूर दें, ताकि आप बिना किसी रुकावट अपनी परीक्षाएं दिला सकें।

श्रोताओं, रिश्ता निभाना उतना ही जरूरी है जितना कि रिश्ता बनाना। दशकों से ऐसा ही एक प्यारा और अनोखा रिश्ता है आपका और आकाशवाणी रायपुर का, जिसे ना केवल हमने बनाया है बल्कि निभा भी रहे हैं। तो इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। साथियों, आज के लिए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये सुहाना सफर यहीं पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको हमारी प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं, हमें अपने पत्रों के माध्यम से ज़रूर लिख भेजें। हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। बहुत जल्द नए अंदाज में, नई बातों, नए गीतों और नई रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए अपनी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत और आगे भी सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुतकर्ता थी श्रेया श्रीवास्तव। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
12: We have a huge pool of talent.
13: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
14: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
15: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्ते ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
17: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
18: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
16: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
19: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
16: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
7: President will arrive in Indore and then travel to Betul, where she is scheduled to attend a program organized by Brahma Kumaris. Later, she will visit the Omkareshwar temple and participate in the evening aarti. On June 19, the President will attend an event marking International Sickle Cell Anemia Day. On June 21, President Murmu will take part in International Yoga Day celebration in Jabalpur. She will also attend the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University as the chief guest. Later, she will visit Kuno National Park before returning to New Delhi. In view of the President visit to Betul, District Collector Dr. Saurabh Sanjay Sonwani has imposed certain restrictions as part of the security arrangements. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
16: Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram will take place today. In Jharkhand, Jharkhand Mukti Morcha's Baidyanath Ram, Congress candidate Pranav Jha, and independent candidate Parimal Nathwani are contesting the election. In Mizoram, candidates from the ruling Zoram People's Movement, ZPM, and the opposition Mizo National Front, MNF, are locked in a direct contest to fill Mizoram's lone Rajya Sabha seat. The BJP and the Congress have decided to abstain from voting. The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will come into force on the 15th of July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. We have more from our correspondent.
20: The Ministry of Commerce and Industries also noted that the period of exemption under the Double Contribution Convention, DCC, has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers, hailing the government as a triumph of economic statecraft. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said that this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage and supply their world-class products. The ministry said that the India-UK CETA has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The ministry noted that this historic economic architecture effectively prepares both nations to navigate the complexities of modern international commerce while permanently accelerating India's trajectory toward an inclusive, prosperous and self-reliant Viksit Bharat 2047. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
16: Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to eradicate Naxalism and bring an unprecedented wave of developmental activity in the affected regions. We have a report.
21: The Narendra Modi government's coordinated multi-pronged strategy combining calibrated security operations, financial choking and rapid development saturation has resulted in making the country free from Naxalism and Maoist terror. Home Minister Amit Shah had formally announced that Naxalism would be completely eradicated from the entire country by 31st March 2026 and the pledge has now been fulfilled. Several landmark security operations played a decisive role in breaking the backbone of the Maoist network over the years. Operation Octopus was conducted in Budha Pahad region of Jharkhand in 2022 and Operation Double Bull liberated the Gumla, Lohardaga and Latehar districts of Jharkhand in February of the same year. Operation Thunderstorm targeted strongholds of Naxals in Saraikela, West Singhbhum and Khuti district of Jharkhand in 2022. Operation Black Forest, which was conducted in 2025 across a hill stretching 50 kilometers in length and 37 kilometers in width along the Telangana-Chhattisgarh border, dealt a severe blow to the remaining Maoist cadres. One of the residents of Bastar in Chhattisgarh had lauded the government's efforts, saying that it has fulfilled its promise of making the country free from Naxalism.
22: They fulfilled the promise they made. I thank Modi government, Amit Shah ji and Vijay Sharma ji from the bottom of my heart.
21: The results of the coordinated multi-pronged strategy on the ground reflected the scale of the crackdown. Several top Naxal leaders were neutralized during this period, including Hidma, Kadri Satyanarayan Reddy, Ganesh Uike, and the Naxalite General Secretary Basavraju. These security efforts brought an unprecedented wave of development activity in Naxal-affected regions. Tambu Orao, a resident of Gumla district Jharkhand, said that since the Modi government was formed, Naxalism has gradually come to an end and people living with peace and harmony.
0: A decade ago, our village was completely under the control of Naxalites. We are afraid to go out even during the day. Since 2014, when the Modi government was formed, gradually that fear has disappeared. Today we are living a peaceful life. The village is developing. They have made roads. It is very good now.
21: The National Investigation Agency played a critical role in disrupting Naxalite financing, significantly depleting their operational resources. Today, the story of Naxal-free India stands as a testament to the triumph of democracy, development and the constitution over decades of violence. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
16: US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have virtually signed a 14-point memorandum of understanding aimed at ending hostilities between the two countries, reopening the Strait of Hormuz, and launching a 60-day process to negotiate a final agreement on sanctions and Iran's nuclear program. We have a report.
1: The White House said that Mr. Trump signed the MOU personally while meeting French President Emmanuel Macron in Paris. On the other hand, Iranian Foreign Ministry spokesperson confirmed that the text of the memorandum has been finalized and signed by both sides. He stated that consultations with Oman and other countries have been underway for some time and that arrangements for managing the Strait of Hormuz have largely been agreed upon. The US has released the official text of the MOU. The 14-point agreement includes an immediate and permanent cessation of military operations, including in Lebanon, and a pledge to conclude negotiations on a final deal within 16 days, extending by mutual consent. Under the MOU, the US will begin removing its naval blockade and related restrictions, while Iran will facilitate the safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz free of charge for an initial 60-day period. The document also outlines plans for the phased lifting of sanctions, the release of frozen Iranian assets, treasury waivers for Iranian oil exports, and a US-backed reconstruction and economic development program for Iran worth at least $300 billion. Iran also reaffirmed in the memorandum that it will not develop or acquire nuclear weapons. The agreement also provides for discussions on the future of Iran's enriched uranium stockpiles under the supervision of the International Atomic Energy Agency. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
16: In men's cricket, India defeated Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, India posted a massive 402 runs in 49.5 overs before being bowled out, powered by Shubman Gill's 154 and Ishan Kishan's 125. For Afghanistan, Nange Alia Karoti picked up 4 wickets while Rashid Khan claimed 3. In reply, Afghanistan were bundled out for 232 in 44.3 overs. For India, Arshdeep Singh and Gurnoor Brar picked up 3 wickets while Prince Yadav claimed 2. Shubman Gill was adjudged the player of the match. The third and the last match will be played in Chennai on Saturday. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in 20 overs powered by Smriti Mandana's 74 and Shafali Verma's 55. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Nishit. News of Prime Minister Modi meeting US President Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France is carried prominently by all the leading dailies. US President Trump says will help India, led by Prime Minister Modi, if attacked, according to Hindustan Times. India-UK trade deal to come in effect from July 15th. No tariff on key exports, writes the Tribune. Parliamentary board meet convened by Shiv Sena UBT today amid split rumours, says the Hindu. Delhi High Court seeks government reply as Telegram challenges ban over NEET exam, according to a report in the Times of India. 10-year wait ends as NSE files for IPO, while Reliance Jio set to file for IPO this week, reports Financial Express. And finally, in QS rankings, IIT Delhi tops India list for second year. Delhi University shines as well, says the Indian Express. And with that, it's back to you, Nishit.
16: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in the French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end the West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका।

मोर जम्मो नान्हे संगवारी मन ला अपन चंचल दीदी के जय जोहार। संगी हो, जैसे हमन रोज खाना खाथन, रोज नहाथन, उसनेच योग घलो हमर जीवन के एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। तब आज बेरा के बात में चर्चा करबो योग के बारे में। संगवारी हो, योग एक पुराना भारतीय विद्या आए। योग संस्कृत के युज शब्द से बने हैं, जेकर मतलब होते जोड़ना या मिलाना। योग हमर शरीर मन और आत्माला एक साथ जोड़ के संतुलित करते। योग के शुरुआत हजारों साल पहले भारत में हुई रही से। हमर ऋषि मुनिमन जंगल में ध्यान और योग करके अपन शरीर और मन ला स्वस्थ रखे। योग के ज्ञान ला महर्षि पतंजलि जी हा व्यवस्थित रूप दिन। योग के नियम और सिद्धांत ला एक किताब में लिखिन, जेन ला योग सूत्र कहे जाते। आज योग केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में प्रसिद्ध हो गए है। आज लाखों लोग रोज योग करके स्वस्थ जीवन जिया थे। अब देखथन योग के फायदा का कहे। संगवारी हो, योग करे से हमर शरीर हा स्वस्थ रहे थे। योगा से हमर शरीर घलो मजबूत बन थे, उसने मन हा शांत रहे थे। योग प्राणायाम करेले मन की चिंता कम होते, गुस्सा घलो कम आते और मन हा खुश रहे थे। उसने योग करे से पढ़ाई मा मन लगते। योगा करे से एकाग्रता बढ़ते और याददाश्त घलो बढ़ते। उसने बीमारी ले घलो बचाव होते। आजकल हमर संगवारी मन रंग रंग के जिनिस खाते, जेकर से शरीर में घलो रंग रंग के बीमारी बढ़ जाते। तब संगवारी हो, योगा करे ले शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ते। सर्दी खांसी और कई प्रकार के बीमारी ले घलो छुटकारा मिलते। उसने आलस हा घलो दूर होते। आजकल हम देखथन हमर नान्हे संगवारी मन थोकनिक बूता करते और थकान महसूस करते। तो संगी हो, आप मन हर दिन योग करहु ना तो आप मन के आलस घलो दूर हो जही और आप मन हमेशा फुर्तीला रहो। योगा करे से शरीर मा ऊर्जा आते और दिन भर ताजगी महसूस होते। हमर नान्हे संगवारी मन सोचत हो ही कि चंचल दीदी हा योग योग कहा थे, मगर कौन से योग ला करना है। तो संगवारी हो, हमन नान्हे संगी मन बर कई ठन सरल सरल योगासन है। जैसे ताड़ासन है, जेकर से आप मन के शरीर के लंबाई बढ़े। वृक्षासन है, जेकर से आप मन के एकाग्रता बढ़े। भुजंगासन है और वज्रासन ला तो खाना खा के बात करना चाहिए। उसने कई ठन योगा में प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करे से आपके याददाश्त ताजगी होते। उसने स्वामी विवेकानंद जी भी कहे थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन के निवास होते। तो संगी हो, आज से हम संकल्प करन कि रोज योग करबो, स्वस्थ रहबो और निरोग रहबो। तो संगवारी हो, खेल कूद घलो योग के एक अंग आए। तो आवो हम मन खेल खेलन, संगे संग गीत ला घलो सुनन।

0: अभी आप मन सुनत रहे हो गीत जेला स्वर दे रहीन राकेश तिवारी और साथी मन संगी हो। अभी हमन नान्हे संगी मन अपन ममा घर गर्मी छुट्टी ला मना के आ है। जी हाँ, नाना नानी ममा मामी के तीर मा कई ठन कहानी और सुघर सुघर बात ला सीखे है। तब आवो आज हम सबो जन सुनथन कहानी जेकर नाम है चिरई चिरगुन हमर संगवारी और जिला सुनावत है राम कुमार साहूहा।
1: बाल वाटका सुनैया जम्मो संगवारी मनला जय जोहार। मोर कहानी के शीर्षक है चिरई चुरगुन हमर संगवारी। नान्हे चिरई अपन खोंधरा ले घेरी भेरी जाके रोज बहनिया सूरज नारायण के लाली के संग जागे संझा मुंध्यार लोहा सूज जाए। ओकर दाई चारा पानी के व्यवस्था में ओला खोंधरा में अकेला छोड़ के बाहर खेत खलिहान बगीचा ले चारा लाने और ओला खवाए तेकर पाछू खुद खाए रोज के ही बूता करे। ओला मया दुलार करके गजब सुख पाए। नान्हे चिरई खोंदरा में चहकत रहा खेलत रहा ओकर पाखी जागे लागिस फिर उड़े नहीं सके। तेकरे सेती मन मार के कले चुप आकाश में उड़ावत चिरई चुरगुन मन ल देख देख के ओकरो मन उछाल मारे। कभू महू उड़ू आगास कह के देखत मन ललचाय फिर टिंग टिंग करके उलन जाए। घेरी बेरी प्रयास करत रहा फुर फुर ए डारा ले ओ डारा उड़े के सोच विचार करत खुशी के ठिकाना नहीं रहा। फिर एक दिन ओकर दाई हवा गर्रम छिगा गे रास्ता सूझे न बाट ओती लैका मन के संसो मजीव ब्याय बाकुल का करे का ना करे अलकरहा सोच विचार में बिहाने ले मंझनिया हो गए हड़बड़ा गए। ओती नान्हे चिरई के जी सी उड़िया गे रास्ता देखत आँखी पिरा गे ओकर मन में ऐसे भाषे लागिस जैसे चारा लेके दाई द्वारी माँ का खड़े है। फिर दाई के अतर है न पता मन में भाषे जैसे दुपले महतारी के फोटो मन में छप जाए। भूख प्यास में छटपटावत नान्हे चिरई के जीरो वासी लागिस ओती ओकर दाई संसु फिकर में अरन बरन तात तात झान झोला हवा बनोरा में फंसे रहा लैका के सुरता में छटपटावत हवा बंडोरा के कमतियाय के अगोरा में रास्ता देखत रहा। आंधी तूफान थिरके लागिस तहन लकर धकर माई चिरई अपन खोंधरा में लहुटिस। अपन नान्हे चिरई ले देखिस तभे ओकर जी जुड़ेस महतारी और लैका के आँखी डबडबा आ गए। बड़ मया ले अपन डेना के अचरा बना के भीतरी में ओमन ल दुलारिस। दुलारत कहे लागिस हाय रे मोरहाड़ा मोर राजा बेटा काबा भर पोटार लिस। महतारी चिरई अपन पुरखा मन के गोट बात नान्हे चिरई ल बतावत बड़ गर्व गुमान ले भर के कहिस कि राजा महाराजा के जमाना में चिट्ठी पत्री के लेन देन हमरे भरोसा रहा है। राजा के बाजू बन के बात चिरई राजसभा में मान पाए है तेला सुरता करत बतेस। पुरातन काल में सीता हरण के बेरा में नारी के सम्मान बर रावण संग पहली लड़ाई पक्षी राज जटायु लड़िस। बड़ भागमानी आवन की गड़ूर महाराज है भगवान विष्णु के सवारी बने एकरे सेती हमर खानदान के नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिए जाते। बड़े बड़े महात्मा मन कथा प्रवचन में चिरई चुरगुन के प्रसंग के बड़ विस्तार ले बात बताते। भगवान संग जोड़ के कही थे काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गए माखन रोटी। तेकरे सेती मानव समाज हमरे खानदान के भागला आज भी सहरा थे। कथा भागवत में सत्संग के माध्यम से बताते कि घा काग भूसुंडी गड़ीर गड़ूर प्रति कह के भगवान के कथा शुरू करते। घर के बरेंडी में बैठ के कौआ काँ काँ करिस तब मनखे जान रहते सगा पहुना वैया है। पितर पाख में तो कौआ जाति के पक्षी के विशेष महत्व होते। वर्षा ऋतु में वर्षा के पहली बूंद पान करे खातिर चकवा चकवी चिरई आकाश को टकटकी लगाए रही थे। जंगल में मजूर के नाच मन ला मोह ले थे। प्रवासी पक्षी मन के का कहना देश विदेश पूरा दुनिया पूरा आकाश तो ओकरे मन के आए आज यहाँ काली उहाँ समूह में कलरव करत उड़त देखे जा सकते। संत महात्मा के आश्रम के संगति पाके राम राम सीताराम बोल रे मिठू तपत गुरु के शब्द आदमी असन बोल निकाल के आनंदित वातावरण बना देते। अमरैया ले कोयली के गुरतुर बोली करिया बादर संग मंजूर पंख फैला के नचई बड़ निकलाक थे और नीर छिक भीवे की हंस के बात तो झन पूछ एकदम निराला है। जेन दूध और पानी ला अलग अलग करके दूधे दूध ला पी जाते। नान्हे चिरई अपन पुरखा मन के गोट बात ल सुन सुन के भारिया चंभित हो गए। अतका कारनामा अतका वाह वाई अरे वाह मह उड़ सकता हूँ का। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सोच के फुर फुर उड़े लागिस। ये डारा ले वो डारा धरती आगास का डोंगरी का पहाड़ नरवा नदिया कछार बड़े बड़े रुख राई सब डहार ससन भर उड़ीस। अब्बड़ मजा पाए नान्हे चिरई के महतारी कहना बरजना करत कहिस कि बैरी दुश्मन कतको लगे रही थे दाँव म देख ताक के उड़बे शिकारी मन फांदा खेले रही थे ठाँव ठाँव म फांदा खेले रही थे ठाँव ठाँव म। नान्हे चिरई मन लगा के बात ल सुनिस और मने मन गुने लागिस। अचरज है मनखे के गुण अतेक भलाई के बदला हमरे भर बुराई। महतारी चिरई कहिस अरे ये दुनिया है बाबू तरह तरह के मनखे यहाँ देखे सुने बर मिलते। बात बात माँ सुरता आगे सुनहूँ लैकुसुहूँ उमर माँ हम मन गर्मी के छुट्टी माँ बीच अंगना माँ सुपा ला खड़ी करके लकड़ी टेका के बना के चाउर ला बगरा के चिरई ला लुका के देखत रहन। जैसे ही चिरई दाना खाए

0: नहीं करत रहिन। कतको दयालु मनखे मन गर्मी के दिन म परई म सिका म टांग के पानी भर के दाना राखे रहाय, जेला चिरई मन आए दाना पानी पी के फुर ले उड़ जाए। मनखे और चिरई मन के पुरातन समय से ही जुगल जोड़ी कस नाता है, एक दूसर के बिना जिंदगी अधूरा है। चिरई चुरगुन हमर घर अंगना के सुघरई, खेती किसानी जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ पर्वत के मितान हमर घर संसार प्रकृति के सिंगारे। आवाओ एकर सुरक्षा संवर्धन बढ़ोतरी बर चिंतन मनन विचार करिन, धरती ला सरक बनाए खातिर चिरई चुरगुन ला घलो मया दुलार करिन, चिरई चुरगुन ला घलो मया दुलार करिन। मोर कहानी पूर गे अवदार भा चुर गे, जय जोहार जय जोहार।
1: संगीहो अभी आप मन सुनत रहे हो कहानी चिरई चिरगुन हमर संगवारी, जेला सुनावत रहिन राम कुमार साहू हा। संगी हो अब हमर बारी है नान्हे नान्हे संगी मन के, और हमर नान्हे संगी मन रंग रंग के कविता गीत लेके आए, तो वावो सुनन आज के हमर बाल वाटिका के फुलवारी माँ नान्हे लेका के आवाज माँ ओकर जुबानी ला।

0: आज के फुलवारी मा जम्मो नान्हे संगवारी मन के हम स्वागत करत हन। आवो देखन कौन कौन संगवारी मन काका सुना थे। जय जोहार सारिका।
1: जय जोहार दीदी हो।
0: अच्छा ये बताओ, आप मन बालवाटिका कार्यक्रम ला संथो?
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा तो ये बताओ, ये बालवाटिका कार्यक्रम ला संथो तभी हा कब आते?
1: ये कार्यक्रम तो हर गुरुवार को आते।
0: अच्छा तो गुरुवार के आप मन कार्यक्रम सुनतो, तो ये बताओ बालवाटिका कार्यक्रम आप मन ला कैसे लागते?
1: बालवाटी कार्यक्रम हाँ बड़ सुनहर लागते।
0: अच्छा और यहाँ का का मिलते?
1: जी हाँ, कविता कहानी ज्ञान विज्ञान के गोठ बताते, जे हमर जीवन के गात शिक्षाप्रद होते। मैं छत्तीसगढ़ी माँ चिरई के ऊपर एक कविता बोला था। वो चिरई चिरई चोच मारे चुकते धान के दाना, खुले गगन मा उड़े सियान बने चिड़िया के बाना, फुदक फुदक के घर आंगन मा गीत माया के गावे, खूब पेड़ की डाली बैठे मन ला हर सवारे।
2: मोर नाम में धांसु साहू हबे, मैं हाँ आज एक ठक छत्तीसगढ़ी गीत सुनावत हो।

0: हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ।
1: मोर नाम सारिका साहू हाबे, मैं कक्षा तीसरी माँ पढ़ता हूँ।
2: मोर नाम मेधांशु साहू हाबे, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ।
3: मोर नाम चिराग वाले, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ।
1: हमन तीनों जन मिला के तोता घोड़ा और चूहा के कविता बनाते हैं।
4: पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चन तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाय टाय गाता, टाय टाय गाता तो बड़ा मजा आता।
2: पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता, पीठ पर बैठाता तो बड़ा मजा आता।
3: पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चन चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता।

हरि ओम। मोर नाम कुमारी रिद्धिनी साध है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़तो। मोर गांव खुटेरी विकास खंड फिंगेश्वर और जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ हरे। आज आप मल्ला में एक ठन नानकुन किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान लगा के सुनूं। हमर गांव मा मोखू नाम के लड़का रहे। ओहा अड़बड़ उतलाई फंकट और उदास रहे। एक दिन अचानक मोखू के तबीयत खराब हो गए। पेट पीरा और कमजोरी आँखी मन खुसर गे रहे। मोखू के दाई ददा मन फुकैया झरैया बलाइस और झाड़ फूक कराइस। तब होले मोखू के पेट पीरा मारबे नहीं करीस। हला कान हो के मोखू के दाई ददा मन मोखू ला बड़े जबर डॉक्टर कर लेगीस। डॉक्टर देखीस तब ओला समझ में आगे कि मोखू के नख बड़े बड़े रहे। डॉक्टर मोखू ला कहीस, सेब खाबे केला खाबे। मोखू कहीं चला खाए के लालच नहीं करीस। फिर डॉक्टर कथे, आलू चिप्स खाबे कुरकुरे खाबे। मोखू के मुँह ले पानी आगे। तब डॉक्टर ह बताइस कि ये लड़का हा खाना पीना ला ढंग ले खाए नहीं। खई खजाना पाकिट वाला खा खा के अपन पेट ला बिगाड़ डरे है और साफ सफाई के घलो ध्यान नहीं है। नख में मैल गंदगी भराए है। मोबाइल ला देख देख के आँखी ला खुसे डरे है। तबीयत तो बिगड़बे कर ही। पैकेट बंद खई खजाना लइका मन के सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही खाना खाए के पहली अच्छा से हाथ धोना, साफ सफाई के ध्यान रखना जरूरी है। लइका मन ला मोबाइल के आदत ला छुड़ाए के उद्यम करना चाहिए। मोखू सब बात ला सुनत रहीस। ओहा कान पकड़ के चेत गे कि आज से साफ सफाई के पूरा ध्यान रखूं और अरन बरन खाए ला घलो कम करूं कहते। त संगवारी हो मोखू तो समझ गे, आप सब कब समझू। चलो चलो जी स्कूल जाबो, पढ़े लिखे के दिन हा आगे।

0: स्कूल जाबो।
1: और संगवारी हो अवैया बृहस्पत के प्रसारित होवैया फुलवारी पर रिकॉर्डिंग हो ही अवैया मंगलवार के सुबह 9:30 बजे। आप मन जो भी नाने संगीमन कविता कहानी गीत सुनाना चाहो हो तब अपन पालक के साथ मंगलवार 9:30 बजे सिविल लाइन रायपुर स्थित आकाशवाणी रायपुर के कार्यालय में पधार हो।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो हमल नान नान लेका मन के गुड़तुर गुड़तुर बानी मा फुलवारी के कार्यक्रम ला। तो संगी हो, हमार कई जन नान्हे संगवारी मन जब बाल वाटिका ला सुनते तो अपन नान नान हाथ मा चिट्ठी लिख के ईमेल करके हमार तक अपन संदेश ला पहुंचाते। तो वाओ लेका मन के चिट्ठी मा सुनन, ग्राम श्रृंगारपुर पहली मेटाले चंद्रध्वज ध्रुवे सानू ध्रुवे भाविका मायरा याचना, नान्हे कलाकार ले भेंट वार्ता मा पंडवानी कलाकार आराध्या साहू के गोड बात अवकर पंडवानी गायन हा एमल्ला बने लागे है। उसने लोरमी ग्राम चचेड़ी ले पुष्पराज मरावी ऋषभ नेहा चमन सुमित रिंझा राही मरावी मन अपन संदेश भेजते। संगे संग ग्राम भानपुरी मुसरा ले होमेश्वर कुमार यादव मनेश्वर लाक्षे तुलसी यादव मन घलो अपन मया प्रेम ल भेजे है। उसने अराड़ नांद घाट से चांदनी वर्मा राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा, ग्राम कोयलारी कंवरधाले कैलाश चंद्राकर मुकुंद चंद्राकर पूर्णेंद्र चंद्राकर साहिल चंद्राकर। उसने रानी गांव नगरीले शुभम सेजल साहू राकेश रोहन साहू, एमन कहते कि 11 जून के बाल वाटिका मा बाल पंडवानी गायिका कुमारी आराध्या साहू ले अंजू मेसराम दीदी के गोट बात सुनेन, बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद बातचीत लगिस जेकर बर बाल वाटिका टीम ला बधाई। आपो जम्मो श्रोता मन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई जेन आप मन हमर ये कार्यक्रम ला सुने। उसने ग्राम चरौदा बार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से खुशबू ठाकुर दीपक ठाकुर मन अपन मया प्रेम भेजे है। डोंगर गांव से तन्मय गजभिये बेबी अनिस्का यासिका लाउत्री और कोयल लाउत्रे हा अपन मया ला भेजे है। संगे संग कर्मा चौक लोहारीडी जिला कंवरधा से खुशान साहू निशान साहू, गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी से खुमेंद्र मसिया तुसारणी कामेश अनिरुद्ध साकेत पायल गरिमा काजल मेघा वर्षा मन अपन मया प्रेम ला भेजे है। अबे संगी मन हर गुरुवार के अपन मया प्रेम ला भेजते, जो जो भी कलाकार गुरुवार के आते सबके बाल वाटिका ला सुन के आप मन अपन मया दुलाल ला अपन चिट्ठी पाती और ईमेल के माध्यम से भेजते हो। तो संगी हो, ये हो इस हमन नान नान संगी मन के चिट्ठी पाती और ईमेल के मया दुलार। तो संगवारी हो, आज के बाल वाटिका कार्यक्रम और हमन लइका मन के फुलवारी कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगे तेला अपन चिट्ठी पाती मा हमर तक जरूर पठो हो। आप मन के चिट्ठी पाती मया दुलार के हमला अगोरा रही। तो अब देवो अपन चंचल दीदी ला विदा। जय हिंद
1: बच्चों।
2: जय

ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। कार्यक्रम प्रगति के सोपान में लीजिए सुनिए नशा मुक्त भारत अभियान पर समाज कल्याण विभाग रायपुर के संयुक्त संचालक श्री अरविंद गेदाम से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं रमाशंकर।

0: श्रोताओ नमस्कार, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में, जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत नशे से जूझ रहे लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका संचालन किया जाता है और नशा मुक्त भारत बनाने में सहायता मिल सके। और श्रोताओं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं अरविंद गेदाम जी, जो संयुक्त संचालक है समाज कल्याण विभाग में। तो अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। नमस्कार।
0: तो अरविंद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
1: नशा मुक्त भारत अभियान, जैसे नाम से ही हम स्पष्ट होता है कि भारत से नशे को मुक्त करना है। इसमें हमारी योजना चलाई जाती है कि निशक्त जो व्यक्ति रहते हैं, हमारी जो जनसंख्या है, वे किसी कारणवश नशे में लिप्त हो जाते हैं, जैसे पारिवारिक समस्याएं और अकेलापन और किसी प्रकार का क्रोध रहे, तो क्रोध को नशे के माध्यम से बाहर निकालना चाहते हैं। चाहे वो सोचते हैं कि अगर हम नशा करेंगे तो हमारा दर्द कम होगा और हमें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। शुरू में तो ये अच्छा लगता है, जैसे जैसे समय बीता जाता है इसकी उन्हें आदत पड़ जाती है और ये आदत उनकी जिंदगी खराब कर देती है।
0: जी जी जी। तो अरविंद जी, जब समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में बात करते हैं और नशा मुक्त भारत की ओर, तो कौन कौन सी योजनाएं जो है नशा मुक्त भारत के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही
1: है? नशा मुक्त भारत अभियान में जो योजनाएं चलती है, इसमें सबसे पहले एक भारत माता वाणी योजना रहती है। ये योजना प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक समूह बना रहता है, इसमें इसी का नाम भारत माता वाहिनी रखा गया है। इसमें समस्त महिलाएं रहती है, महिलाओं का एक पूरा ग्रुप रहता है। वे महिलाएं गांव में जाती है, प्रचार प्रसार करती है नशा मुक्त के बारे में, नशा मुक्त होते होने हैं तो, और भी घर में ये भी जाती है जहाँ पे लोग पता चलता है कि नशा करते हैं, और उन लोगों को समझाइश देती है कि आप नशा ना करें, नशा करने से आपको स्वयं को हानि होगी, आपके परिवार को हानि होगी, एवं परिवार आपका अच्छे से चल नहीं पाएगा और काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, आस पड़ोस में भी उसकी उतनी इज्जत नहीं रहेगी। ये सब प्रचार प्रसार करती हैं एवं रैली भी निकालती हैं, उसमें हमारा विभाग भी शामिल होता है। हमारा विभाग गाना बजाना करके उन्हें पूरा बताता है कि कैसे क्या करना है, किस प्रकार योजना को आगे बढ़ाना है। और इसमें जैसे किसी कोई परेशानी रहती है, दवाइयों की जरूरत होती है
0: जी जी,
1: तो उन्हें उनके बारे में बताती है कि आप इस हमारे अस्पताल में जाइए, जो हमारे शासकीय अस्पताल है वहाँ भी दवाइयाँ उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे नशा मुक्ति केंद्र भी चलते हैं।
0: जी जी जी जी। तो इन नशा मुक्ति केंद्रों में कैसे सहायता की जाती है नशे से पीड़ित लोगों की?
1: नशा मुक्ति केंद्रों में जैसे कि परिवार वाले बताते हैं आके कि ये इस प्रकार की हमारी परेशानी है, हमारा बच्चा नशा करता है या हमारा लड़का नशा करता है, मेरा पति नशा करता है, आजकल महिलाएं भी नशा काफी करती है। वे उन्हें विभिन्न माध्यम से योग को छुड़ाने की, योग के माध्यम से एवं दवाइयों के माध्यम से एवं मेडिटेशन के माध्यम से इन सब चीजों को छुड़ाने की पूरा प्रयास करते हैं और लगभग इसमें सफल भी होते हैं। काफी जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, नशे को प्रॉपर समय देते हैं, उसमें टाइम टेबल बनाया जाता है कि एक महीने में ये काम किया जाएगा, दो महीने में ये कार्य कराया जाएगा, तो उनका माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है कि उनका दिमाग हमेशा नशे नशे में ना रहे, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती है जिससे कि वे उसमें काम दिमाग को ध्यान दें और नशे की तरफ से डाइवर्सिफाइड करें। लेकिन इसमें परिवार का भी सहयोग है, ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में बच्चा सुधर के जाता है तो घर वालों को भी उनसे प्रोत्साहन देना है कि उसकी तरफ ध्यान दें ताकि वे इस लत में दोबारा ना पड़े और उनका जीवन सुगम में हो और वो अपना जीवन यापन कर सके, परिवार का देख रेख कर सके। इसलिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र एक सुधारात्मक ग्रह भी है।
0: जी जी। तो अरविंद जी, जब नशा मुक्त भारत अभियान की बात करते हैं तो इसमें कार्य योजना में कौन कौन से घटक होते हैं? तो किसी व्यक्ति को नशा मुक्त करने के लिए कौन कौन से चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है?
1: जी, प्रथमतः तो ये देखा जाता है कि वो किस कारण नशे में गया है।
0: जी।
1: कि वो बच्चा जैसे पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़े उसको पढ़ाई का टेंशन है। जैसे मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में गया था, वहाँ पे बता रहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो डॉक्टर के काफी नीट के पेपर तो क्लियर कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ाई और टफ होती गई तो उसको और तनाव आता गया, तो इसी कारण मैं नशे की लत में पड़ गया। इसी प्रकार जैसे आजकल बच्चे 12th में पास नहीं हो पा रहे, आप देखते हैं कि नशे की लत में पड़ जाते हैं और इसी कारण जो उनका अच्छा करियर रहता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप जैसे नशा करेंगे तो आपके परिवार पे क्या असर पड़ेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा, आपकी परिवार पढ़ाई किस तरह डाउन होगी, एवं इस चीज़ को समझाया जाता है। फिर योगा के माध्यम से सुबह उन्हें बताया जाता है कि आप ध्यान करें, ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और अगर एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी। फिर उसके बाद उनके प्रॉपर फूड डाइट पे भी ध्यान दिया जाता है, डाइट प्लान तैयार किया जाता है, डाइट प्लान में उनको प्रॉपर ऐसा फूड दिया जाता है जो उनके मानसिक और शारीरिक स्तर को विकसित करें। फिर उसके बाद जैसे पूरा टाइम टेबल जो बनता है, वीकली टाइम टेबल में असेसमेंट किया जाता है प्रत्येक शनिवार को कि जो हम टाइम टेबल चला रहे हैं वो उससे सही हो रहा है कि नहीं, कारगर हो रहा है कि नहीं, वे बच्चा उनसे वो टाइम टेबल सूट कर रहा है कि नहीं, ताकि बच्चे में प्रोग्रेस आई है। प्रोग्रेस आने के बाद उनके माता पिता को भी दिखाया जाता है कि प्रोग्रेस आई है, और प्रोग्रेस आने के बाद बच्चा माँ बाप के पास जा सकता है कि नहीं, कि उनकी और आवश्यकता है, और प्रोग्रेस की तो और रखा जाता है बच्चों को। और दवाइयाँ भी उसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेंटली चेक करते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है अभी, वे और आगे चल के कुछ उग्र व्यवहार तो नहीं करेंगे, किसी पे हाथ तो नहीं उठाएंगे, शारीरिक स्वयं को तो सेल्फ स्वयं को तो मारेंगे नहीं, या दूसरे को तो मारेंगे नहीं, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे। ये सब साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, केस स्टडी पूरी बनाई जाती है,
0: जी जी,
1: इस आधार पूरा कार्य किया जाता है।
0: जी जी जी अरविंद जी, तो अरविंद जी जब हम नशा मुक्त भारत अभियान की बात करते हैं तो समाज कल्याण विभाग के बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है नशा मुक्त भारत अभियान के लिए, तो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में ऐसे पुनर्वास केंद्र स्थापित है जहां नशे से पीड़ित व्यक्तियों के सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं?
1: हमारे भी जो 13 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र संचालित है और भी जिलों में संचालित किए जाने प्रस्तावित है। 13 में सबसे पहले तो हमारे रायपुर में है, दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, बलौदा बाजार में है, बिलासपुर में है, अंबिकापुर में है, और दंतेवाड़ा बीजापुर में है, नक्सल प्रभावित एरिया में भी है, और कोंडा गांव, इस प्रकार के 13 नशा मुक्ति केंद्र संचालित है और लोग जाते हैं वहाँ पे और अपना जो भी किस प्रकार की परेशानी है उसका समाधान प्राप्त होता है उन्हें। बच्चा दोबारा भी ललक में लग जाता है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चा बार बार इस लत में क्यों आ रहा, परिवार को विशेष ध्यान देना है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नशे से मुक्त होने के लिए किस प्रकार कार्य करें। एक परिवार अगर सही रोल प्ले करें तो बच्चा नशे से मुक्त हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा करते हैं, इसलिए बच्चों पर भी विशेष ध्यान देना है कि इसकी लत ना पड़े, क्योंकि लत एक बार पड़ जाती है इसे छूटने में थोड़ा समय लगता है। जितना लंबा नशा होगा उतना छूटने में भी उतना समय लगेगा।
0: जी जी जी, तो अरविंद गेताम जी, इसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या पुनर्वास केंद्र तक ले जाने और वहाँ उनके चिकित्सकीय परामर्श के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी की जाती है क्या?
1: हाँ जी, हमारे जो एनजीओ चलते हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है, ताकि व्यक्ति का देखभाल करते डॉक्टर लोग की फीस भी दी जाती है उसमें, और जो प्रशिक्षक रहते हैं विशेष प्रशिक्षण देते हैं, जैसे उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ योजनाएं भी बनाते हैं वहाँ पे, कुछ मेकिंग का कार्य किया जाता है उन्हें, जैसे घर के में जो आम दैनिक क्रियाएं हैं वो सब भी कराई जाती है। कि एक बार बच्चा नशे में पड़ जाता है तो दैनिक क्रियाएं करता नहीं है ना, प्रॉपर टाइम पे उठता है, जो उठने का टाइम है उसका जैसे मॉर्निंग में 6 to 7 o'clock के बीच उठना है, आराम से नशा करता है रात को और सुबह 9-10 बजे उठता है, तो उसकी क्रियाएं बिगड़ जाती है। वो क्रियाओं को भी लाइन पे लाया जाता है जिससे कि बच्चा प्रॉपर अपने लाइफस्टाइल में आए और जैसे पहले था वो उस तरह सामान्य जिंदगी जी सके, जीवन यापन कर सके।
0: जी जी जी, तो अरविंद जी, इसमें जो सबसे जरूरी है जब नशा मुक्ति की बात करते हैं तो इसमें जो एक मानसिक विकार की तरह देखा जाता है, तो पुनर्वास केंद्रों में साइकेट्रिक होते हैं जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा किस तरह सहायता की जाती है ऐसे रोगियों के लिए?
1: जी, जो हमारे जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, वे प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, कि रिपोर्ट तैयार करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर किस तरफ जा रहा है, बच्चा दूसरी तरफ किस प्रकार अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस पर डिस्ट्रैक्ट किस तरह करना है उस चीजों की तरफ, एवं कुछ कुछ दवाइयां शासन द्वारा ही बनाई गई कि यही दवाइयों को देना है जिससे बच्चे का मानसिक स्तर है जो थोड़ा डाउन हो रहा है वो अप हो जाए, और जो नशा में जो लिप्त है नशे से दूर हो। इसके लिए काफी सारे मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि इन्हें योग के माध्यम से चीजों को काफी सही लाइन लाने की कोशिश करते हैं। जब भी आगे चल के योग दिवस भी आ रहा है हमारा, कि जून को योग दिवस है, योग दिवस में भी ये नशा मुक्ति केंद्रों में कराए जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर कराया जाता है, लोगों को ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि योग करें, निरोग रहें। और योग से ये भी होता है कि लोग एक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अगर जब वो ध्यान केंद्रित करता है तो बच्चा नशे में नहीं आता है, अगर उसको प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर हैबिट्स उसको प्रदाय की जाए, तो वहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र जो हमारे चलते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर करिकुलम बनाया गया है, उसमें वो सामूहिक एक्टिविटीज करते हैं जो दैनिक दिनचर्या में की जाती है। वो एक्टिविटीज करने से उनको ये भी मालूम होता है परिवार में किस तरह रहना है, परिवार से किस तरह व्यवहार करना है, कब खाना है, कब उठना है, कब पढ़ाई करनी है, कब टीवी देखना है, कब जो छोटी छोटी चीजें लाइफ में आती है, कब साफ सफाई करनी है, सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बताया जाता है, कपड़े साफ सफाई रखनी है, कब कब खाना खाना है, कहाँ प्लेट्स रखनी है, ये सब। जब बच्चा नशा करता है तो वे कोई भी चीज़ों को जस्ट करता है वहीं कमें रख देता है, खाना भी टाइम बे टाइम, उठना बैठना भी टाइम बे टाइम, किसी से बात नहीं करता, अपना अकेले रहता है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र में ये स्टेप बाई स्टेप सिखाया जाता है और बताया भी जाता है कि नशे जो करते हैं उससे उनका समय भी बर्बाद होता है, उनके जीवन भी बर्बाद होता है। जीवन में सुधार लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र और हमारी समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं कारगर हैं।
0: जी जी जी। तो अरविंद जी, नशा मुक्त भारत अभियान की बात कर रहे हैं, तो यदि हम आज के प्रदेश में देखें तो हर कोई नशे के चपेट में है, विभिन्न तरह के नशाओं का प्रयोग करते हैं और जिससे जीवन मुश्किल में पड़ जाता है और इससे कई गंभीर रोग भी होते हैं, कैंसर जैसे गंभीर रोग भी हो रहे हैं। तो इसका युवाओं पर किस तरह दुष्प्रभाव आप देखते हैं, जो युवाओं के साथ साथ समाज में इसका दुष्प्रभाव कैसे हो रहा है?
1: जी, समाज में इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि एक आदमी को देखे दूसरा व्यक्ति भी करता है नशा। जैसे एक बच्चा कर रहा है, कॉलेज में जा रहा है, वो कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, तो पढ़ने के लिए एक बच्चा करता है, उसके साथ रहने वाला रूम में से रहते हैं, तो वो उसकी गलतियां देख के वो भी दोहराता है उसी गलतियों को। उस गलती के कारण उनके परिवार पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा नियमित नशे में रहेगा तो एक उसके कारण एक बच्चा दूसरे में इफेक्ट किया, फिर वो तीन चार बच्चे और मिल जाते हैं, ये भी नशा करते हैं, वो भी नशा करते हैं, और एक जैसे दूसरे नशे की तरफ भी जाते हैं, कभी लीकर लेते हैं, शराब लेते हैं, फिर उसके बाद सिगरेट में भी जाते हैं, ऐसे करके और नशे भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए बच्चों पे विशेष ध्यान देना, भी माँ बाप को भी। आजकल समाज आजकल समय चल रहा है, अब सब बच्चे मोबाइल के इसमें, मोबाइल में देखते हैं कि वो बच्चा नशा कर, मोबाइल देख के भी लोग करते हैं कि नशा करने से कैसा लगता है, एक बार टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट करना काफी हानिकारक होता है। इसलिए बच्चों पे विशेष ध्यान दें, कभी बाहर पढ़ने जाए तो उसे विशेष ध्यान दें कि बच्चा क्या कर रहा है, प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, बच्चे का ध्यान किस तरफ है, उसकी जो ग्रुप्स है किस ग्रुप्स में घूम रहा है और टाइमिंग क्या है उसका, प्रॉपर उस पर ध्यान दें बच्चों के ऊपर, तभी जो हमारे समाज में आजकल जो नशा फैला हुआ है किसी की कितनी प्रकार की जो हानियां हो रही है, हानियों पर रोक लगाया जा सकता है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो गर्विंद जी, कार्यक्रम में चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति यदि नशा छोड़ना चाहे तो वो समाज कल्याण विभाग की कोई टोल फ्री नंबर है जिससे आपसे संपर्क कर सके, या समाज कल्याण विभाग में कहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं?
1: प्रत्येक जिलों में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक पदस्थ हैं, वे वहां जाके पूरी योजना के बारे में समझ सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि नशे से मुक्त किस तरह हुआ जाएगा। अगर वो एक गांव में रहकर नशे से मुक्त रहना चाहता है, गांव के लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन गांव में अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उसे हमारे जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां भर्ती करा सकते हैं, या तो हमारे जो योगा सेंटर्स भी चलते हैं वहां योगा सेंटर्स के माध्यम से उन्हें काफी सारी चीजों को बताया जाता है, और आजकल आयुष विभाग भी इस पर विशेष ध्यान दे रहा है, समाज कल्याण के अलावा दोनों विभाग, सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी दे रहा है इसमें ध्यान, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में साइकेट्रिस्ट भी हैं, वे भी इस योजना के साथ में कार्य करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार नशे से लोग लिप्त होते हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए नशे से, उन लोग भी पूरी डिटेलिंग स्टडी बनाते हैं कि इस गांव में कितने हैं जो नशा करने वाले और कहां नशे की जो प्रकोप ज्यादा है, कहां नशे की, जैसे अब देखें मसलाइड एरिया में ज्यादा शराब बनती है, महुए की जो शराब बनती है, इससे क्या कि नशा सस्ते में मिलता है वहाँ पे, इसलिए इस पर भी रोक लगा रही है आजकल कि नशा बनता है तो वहाँ 10-10-20 रुपए में लोग लेते हैं नशा, लेकिन ये नशा उनके जीवन को और उनके परिवार को इस तरह खराब करा है। इसलिए अगर परिवार ही अगर एक साथ रहे तो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ ये नहीं होगी एवं हमारा समाज अच्छे से रहेगा।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर अभी हम बात कर रहे थे समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक अरविंद केदाम जी से। तो अरविंद जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम प्रगति के सोपान में अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत अभियान पर समाज कल्याण विभाग रायपुर के संयुक्त संचालक श्री अरविंद गेदाम से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे थे रमाशंकर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारी कई हिंदी फिल्मी गीत ऐसे रहे हैं जिसे गाया है मेल सिंगर्स यानी पुरुष गायकों ने, लेकिन उस पर नृत्य किया है महिला कलाकारों ने। तो आज कुछ ऐसे ही गीत सुने। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

दिल ही तो है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज मन्ना डे की थी, गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत था रोशन का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म मेरी सूरत तेरी आँखें का नगमा। गीत शैलेंद्र का था और संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए फिल्म काजल का नगमा। आवाज मोहम्मद रफी की, गीत साहिल उद्यानवी का, संगीत रवि का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कोहिनूर का गीत। गीत शकील बदायूनी का था और संगीत था नौशाद का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए बांस गीत। कलाकार हैं साखूराम यादव और साथी। आप सुनेंगे राजकुमार उदल और इदल का किस्सा।

0: थे राजी। अरे पिठुर के मेला में शंकर भगवान के तपस्या करे कौन हा?
1: कौन हा जी?
0: एक चित्रेखा रहा है तेना।
1: वाह भाई वाह।
0: 12 महीना तेरा पुण्य ले और सेवा बजे से शंकर भगवान के ये मस्तु के शंकर भगवान
1: हा?
0: अरे वर मांग ले बेटी कहे हवे।
1: वाह भाई वाह।
0: वाह वर मांगा पिताजी मोला आल्हा के बेटा इंद्रपति मिला कहे है।
1: वाह भाई वाह।
0: अरे पहिल जनावन जब भारत दूसर राजा बल्लार और सिर काट के दक्षिणा दिए कल युग में आल्हा उतार जेकर बेटा के कारण 12 महीना तेरा पुण्य में तपस्या करे हवा शंकर भगवान के वही मोर पति मिला के है।
1: वाह भाई वाह।
0: फिर का हुआ थे जी?
1: का हुआ
0: थे जला वासिन बतावा थे।

0: रागी हा? अरे फेर जा बाबू फलाए भाई मोर फेर जा बाबू उड़ाए ना अरे जेन में राये दे भाई मोर नौनी हा पहुंचे रो भैया जेन मेरे यहां बिठुर के मेला में कौन
1: कौन है जी
0: इधर उधर रहे तेना डुबकैया खेलत रहे रागी
1: अच्छा
0: जेन मेर जा करके कौन इंदल हरन इंदल के
1: हां
0: और उधर के वहां डुबकैया ल देख करके माता रहे तेना चित्रेखा सात चरिया आगू सात चरिया पाछू उधर के नहुली में कैसे मजा के भैया
1: हो
0: उला देख पाइस कौन हैगा
1: कौन है जी
0: अरे एक आंखी के कानी टूरी रहे तेना
1: हां
0: फिर का होत है रागी
1: का होत है
0: जेन ला बासिन बतावत हैगा
1: अरे अरे

0: ना ना ना
1: वाह भाई वाह,
2: ये टूरी नहीं देखा था का वो
1: कौन ला वो
2: कैसे रे माजा के रे भैया चीता रे खल जा बाबू लाए ना एक आंखी कानी टूरी रहते ना
1: का बोला थे भैया
2: नजर तो नहीं दिखा वो ये देवो बोलम जावला गाए ना
1: वाह भाई वाह।

0: जगन्नाथ के पंथ में कहा थे भैया
1: हरे
0: अब जगत पसारे हाँ
1: तो इसने चेगा
0: अब बिना भाग से भाग नहीं
1: हरे
0: नहीं मिले पूरी
1: बात कहा थे।

0: थैरी ले काली पीवली चावन निकाल के कौन चित रेखा टूरी रहा है तेन हा?
1: का करते भैया?
0: अरे कोना पुराण में का कहते रागे?
1: का कहते जी?
0: माछी रे बनावा रे बैरी वो हमार गदाय देना। अब कोनो का कहा थे?
1: का कहा थे?
0: सुवारे बना कला लागी अपन भौजा मा बैठा लाएना।
1: वाह भाई वाह।
0: टूटी ची तारे खाले बाबू मोर जे दीने देना।
1: अच्छा

0: 12 महीना तेरा पुनील में सेवा बजा देकर कारण आज बिठुर के घाट में मैं हाँ अरे बोला पाली अब रागी तो बोला स्व बना करके कारी प्यूरी चावर मार के
1: अच्छा
0: अरे अपन भुजा बैठा रहे हो जी
1: अच्छा
0: तोरो को सही नहीं से बैठा के तोला लेके रिस घर आगी
1: अरे मोरो है 12 महीना तेरो पुण्य छे
0: हाँ
1: शंकर भगवान के पूजा कर रही छे
0: अच्छा तब तोला पैसे
1: तब है पैसे
0: उठा बासिन का हाथ का
1: उठा ले मुनि।

0: थेला मा का करबो जलेबी खाय बरबो औ कैसे मांजा केर भाई मोर लौटा ना लाले ना
1: कहां लौटा थे भैया।

Grrrr.

0: कर थे रागी
1: का कर थे भैया?
0: सात घर सात कंधा चौदह खंड के ओगरी में लेकर के।
1: कहा जी?
0: अरे बोला बुखार में।
1: वाह भाई वाह,
0: चित्रे खा रहा थे कारी प्यूरी चावल मार के। इंदा ला साग छात बना दीजिएगा।
1: अच्छा,
0: अब पति बना करके सतखंडा में कैसे मजा के बोला रखे है का उठा बा सिंह
1: अति सालम बत्ती को देखने वाला झोल को दिया।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में बांस गीत। कलाकार थे साखूराम यादव और साथी। आपने सुना राजकुमार उदल और इदल का किस्सा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
3: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अमित कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म त्रिदेव का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल का गीत, आवाज़ी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, गीत समीर का, संगीत आनंद मिलन का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

अनुराधा पौडवाल, देवाशीष दासगुप्ता और बाबला मेहता की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत। गीत समीर का था और संगीत था नदीम श्रवण का। जी जब सुनिए फिल्म कहो ना प्यार है का नगमा, आवाज़ कुमार सानू की, गीत सावन कुमार का, संगीत राजेश रोशन का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें।

ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुनने सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को। सौम्या रिस्वी का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लव स्टोरी से, आवाजें अमित कुमार और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का, पसंद आप सभी की है। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती और मयंक मरावी। कर्मा चौक लोहारीडीह कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत और निशांत साहू। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रिहान। रसीड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू। रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू। हरदेव लालपारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबिन शाह और राजेंद्र जी शाह। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति राधे, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता। धरसीमा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू और कान्हा यादव।

ये गीत था अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म लव स्टोरी से। लीजिए अब सुनिए फिल्म ताल का गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत ए आर रहमान का। सुना चाहते हैं आप सभी साथी नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, ग्राम चरौदा बारनवा पारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजाल मलिक, बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू, योगेश्वर साहू, हेमलता और टिकेश्वरी साहू, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, कुरासी भैंसा रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू, ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, बाजार वोट महासमुंद से भीषम दास, नर्मदा हीरमणि, दीपक और लक्ष्यदास, ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल, पूजा मरावी, कुई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई, फिरतराम, मालती धुर्वे, पीपरपारा पालचुवा मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल और डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सत्यमेव जयते। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज एस जानकी की, गीत फारुख कैसर का, संगीत बप्पी लाहिड़ी का, फरमाइश आप सभी की है। अमली डी साजा से खिलेश्वर सिंह चौहान, मालती देवी चौहान, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, ठेठवार परा कनेरी से सनत कुमार यादव, परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी और खुमेंद्र मसिया, दतरिंगी भाटापारा से हीना मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और प्रहलाद, गर्रापारा बांधा बाजार से मानवेंद्र साहू, सुलोचना और राकेश साहू, भैंसमुंडी मगलोर से पूजा, तुलेंद्र साहू, पूर्वांशी साहू, ग्राम सहिया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा और पूनम चंद्रवंशी, सोंगा मगलोर से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, गजेंद्र कुमार चंदन, ग्राम पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज यादव, चिंटू और तरुण यादव, गंडई पंडरिया से कन्हैया यादव, निर्मला यादव, जोवाराम यादव और कुमार यादव, और खमरिया बिलासपुर से साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति।

लीजिए अब सुनिए फिल्म सीआईडी का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत ओपी नैयर का। फरमाइश आप सभी की है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीमुन्ना, लोरमी ग्राम चचेड़ी से मोहनसी मरावी, सविता मरावी, रिंछा तनु और राही मरावी, लोरमी ग्राम चचेड़ी से जगदीश सिंह मरावी, सावित्री मरावी, चमन अमन और सुमित मरावी, ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुणेन्द्र और साहिल चंद्राकर, करही भदर से गीतिका गुड़िया, लोचन विद्यार्थी, शारदा निर्मल, पुरुषोत्तम निर्मल, गिन्नी लल्ली और कुस्मिता निर्मल, कन्नेड़वाड़ा से बालो से देवेंद्र सोनवानी, राहुल साहू, आशीष टेमरे, बंटी उन्द्रा, वेद प्रकाश सहारे, दादू उइके, अभिलाष, माँ बमलेश्वरी धाम साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, टिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, गांव ढोडरी घोटिया मोहला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद, सौंगा धमतरी से कोमल सेन तोषण, विनायक सेन, नरगोड़ा से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल और मीनाक्षी गोस्वामी, हजदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन, सौंगा मगलोड से मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन और हियांश कुमार चंदन, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया।

0: हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
1: ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीत साहिल लुधियानवी का, संगीत ओपी नैयर का। सुनना चाहते हैं आप सभी साथी दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल। धमधाग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। ग्राम डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पटले, माधुरी पटले, याचना और दीपांशु पटले। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा और विपुल कामड़े। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय कुमार ठाकुर। चिनमिरी कुरासिया कालरी से इंद्र भान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। लूनमी ग्राम करूहा नार से गोमती रजक, काजल रजक। रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष, मयंक और जानकी साहू। ग्राम लाटा लवन से संजय साहू, दिव्य साहू। भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। बाजार पारा बेमितरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। सिंगारपुर पैलीमेटा से चिंताराम ध्रुवे, कामिन चंद्रध्वज और शानो ध्रुवे। और गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।

एक दूजे के लिए। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत, बोल आनंद बख्शी के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें SP बालासुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की। सुनना चाहते हैं आप सभी साथी, बन बघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक से ही अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, गांव तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका और पोषण और नूतन निषाद, भीमखोज तरपोंगी से हितेश, उमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा और शीतल गुप्ता, ग्राम मेचका सोंढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, निखिल नाग और तरुणदीप नाग, खमारमुड़ा से शिवायगिरी गोस्वामी, एकांशी गोस्वामी, ग्राम दहियान बांधा बाजार से हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू सरस्वती, प्यारी राम, परमानंद साहू, ग्राम जैसाकर्रा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर से असाड़ू राम निषाद, खिलावन निषाद, ऋषभ निषाद, ग्राम गूढ़ाराज से मनोज साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, अड़ार नानघाट से भूपेश और दीपेश वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शारदा और जीत वर्मा और लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रचक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

0: चोर
1: भूल गए
0: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: प्यार का मौसम
2: लीजिए अब सुनिए फिल्म जान तेरे नाम का गीत आवाज कुमार सानू की गीत अजीज खान साहनी का संगीत नदीम श्रवण का पसंद आप सभी की है नांदिया गंडई से मूलचंद पटेल आशीष पटेल शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा संजय सोनी अरुण कनौजिया पवन यादव संजीव वर्मा सुनील जैन रचन रचक लालू सोना मोना हनी यश और उनके मम्मी पापा हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव मानस शांति ऋचा गायत्री वैष्णव पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया रोहासी पलारी से श्यामलाल साहू युवराज साहू लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल और गुरु शबद सिंह राहुल लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी सहसपुर से छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश रामकिशन दुलीचंद सतीबाई सत्यम साहू ग्राम भलेसर महासमुंद से बलराम सेन इंदु सेन छगन सिन्हा द्वारिका सिन्हा नेहरूवाड़

नीतू, गेंदी, पुष्पा, झामेश्वरी, कामती और कामता, ग्राम फुलजर घटारानी से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान और हर्षिता साहू, ग्राम बम्बोडी बावनकेरा से डिगेश महिलांग, रमाकांत और चंद्रकांत महिलांग, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, खमारमुड़ा से शिवायगिरी गोस्वामी, एकांशी गोस्वामी, यहीं से सतीशगिरी गोस्वामी, श्रेयांशगिरी गोस्वामी, माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, मोहरिंगा राजिम से खुमान सिंह पटेल, तेजेश्वनी पटेल, मिष्टी और एकांश पटेल, शांतिनगर भाटापारा से पुनियाबाई नारायण यदु, हथिनीपारा भाटापारा से दुलारीबाई चोवाराम वर्मा, शहीद नगर खमतराई से हीरा साहू, धमनी राजिम से समयलाल धीवर, मुन्नी गोविंद, ममता कुणाल, युवांश धीवर, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, धमनी राजिम से समयलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता कुणाल, युवांश धीवर, गांव पिपरलोट सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पलारी से प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल यशस्वी वर्मा, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, भानबेड़ा मंगलवाल से भारतराम पडोटी, जयंती पडोटी, हेमंत, उमंग और मोक्ष पडोटी, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन, ग्राम कोटनापानी डोंगरगढ़ से कैलाश कुमार मंडावी, लीलेश्वरी मंडावी, रुपेश कुमार, हटौत बाजार लाहौल से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी, जतिन, जयंत, कुनिका देवांगन और टीकापार बालो से चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव।

इस गीत के साथ ही आज का ईमेल भेजे हैं फिल्म संगीत सुने अब समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सौम्या रिस्वी का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने, यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महलपारा बैकुंठपुर नौगई के साथ ही कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता भरत सिंह सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमेन डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उपमुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और

0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 22 से 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सिंगापुर सहित भारत के 21 राज्यों से लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट के लिए 2000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज किया जाएगा। इस विशेष भेंटवार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज ऐसा ही मौसम रहेगा। बेमेतरा जिले के शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी संस्थानों द्वारा 1600 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं धमतरी के कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 690 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता।

0: रंग सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू,
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोईता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोईता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोईता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं,

0: का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम

0: मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं,

0: बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है।

0: मेरी दूर है। रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
2: जी मालिक।
3: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
2: हाथ से निकल गई।
3: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
3: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। इसमें आज सुनिए हलवे गीत। कलाकार हैं मधुराम और मेघनाथ पटनायक और साथी, और आप सुनेंगे सरगुजिया गीत। कलाकार हैं राम रतन और साथी। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मधुराम और साथियों के स्वर में ये हलवी गीत।

मेघनाथ पटनायक और साथियों के स्वर में ये हल्बी गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा। लोकसुधा में आइए अब आपको सुनवाएं सरगुजिया गीत। कलाकार हैं राम रतन और साथी। कार्यक्रम में आप सुनिए ये डोमकच गीत जो सरस्वती वंदना है राम रतन और साथियों के स्वर में।

0: दया गौरी गाने सिगे गौरी तो गाने।
1: लोक सुधा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनिए, ये लोक भजन डोमकच गीत सरगुजिया लोकगीत।

कहत मधोदरी सुन पिहरावन गर्भ काम नहीं आई, कहत मधोदरी सुन पिहरावन गर्भ काम नहीं आई। पवन के बेटा बहुत बलधारी वो छिन्न

शेप बांधल रामेश्वर बांध के सैना पार न काई शेप बांधल रामेश्वर बांध के सैना पार न काई सब बानर दल सिर ठठाए अलंकार।

रामरतन और साथियों के सुर में ये सरगुजिया लोक भजन अभी आपने सुना। इसी के साथ आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने हल्बी गीत, कलाकार थे मधुराम और मेघनाथ पटनायक और साथी, और आपने सुने सरगुजिया गीत, कलाकार थे रामरतन और साथी। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण आप सुन रहे हैं। 1 बजने को हैं, आइए अब समाचार सुनें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए किशोर कुमार सलमा का और साथियों की आवाजों में फिल्म ऊंचे लोग से।

किशोर कुमार, सलमा आगा और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना अनजान का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का था। फिल्म थी ऊंचे लोग। आइए अब सुने मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म खुदगर्ज का ये गीत, जिसके लिए संगीत राजेश रोशन का है और इस गीत को लिखा है फारूक कैसर और इंदिवर ने।

अलका याग्निक साधना सरगम सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म त्रिदेव के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे शाम 4 बजे और रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स कैन। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात 8:15 पर सुनेगा 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम विरासत सुनिएगा आज रात 9:25 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात में सुनिएगा चर्चा, अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें और योग भगाए रोग। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर अंजलि औदिया की वार्ता, स्वरोजगार से सशक्तिकरण और गीत संगीत के साथ ही सुनिएगा कुछ टिप्स भी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट होगा शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन गोट का विषय होगा सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, क्रम संस्कृति के महक में खेती किसानी और हमर संस्कृति। इस विषय पर दीपमाला तिवारी की वार्ता और होंगे माटी के गीत भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे मुन्ना लाल पाल और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा, खेती किसानी मा उन्नत कृषि उपकरण के उपयोग संग रख रखाव और सावधानी। 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में हल्दी और अदरक की उन्नत खेती, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10 सुनिएगा पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देश। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी।

श्रोता, हम आपको एक बार फिर बता दें, कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे शाम 4 बजे और रात 8:30 पर होगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:30 पर आप सुनेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम विरासत सुनिएगा आज रात 9:25 पर। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बारिश की आहट से तपिश कुछ कम हुई है, बरसों और मेघो धरा कुछ कमतर हुई है। बिल्कुल अब झमाझम बारिश का इंतजार हम सभी को है। और आज हमारे साथ जिन्होंने ट्यून कर लिया है कार्यक्रम विद्या को, ऐसी हमारी सभी प्यारी श्रोता सखियों को इस रेडियो सखी मंजुला जैन का स्नेह भरा नमस्कार। और सखियों, आजकल जो मौसम है, जो समय है, वो इस तरह का हो गया है कि घर में या घर के बाहर हम कभी किसी को कुछ सलाह दें या नसीहत दें तो सामने वाला बिना कुछ ज़्यादा सुने विचार किए तुरंत ही हमको ये कह देते हैं कि हमें मत सुनाइए, हमें सब पता है। और अब देखिए, यदि आपको सब कुछ पता है तो और ये मानते हैं आप कि ये मेरा अधिकार है, तो वही अधिकार दूसरों का भी है। अधिकार दिए ही जाते हैं, इस पर कानून इसलिए ही बनाए जाते हैं कि आपस में कहीं टकराहट ना हो, अन्याय ना हो, शोषण ना हो। लेकिन विडंबना ये है कि हम खुद को हासिल होने तक तो सब कुछ सही समझते हैं, लेकिन जब दूसरों के हित की अनदेखी होती है तो वहीं से असंतोष पनपने लगता है और अराजकता समाज में यहीं से आती है। यूं तो हमारी न्याय संहिता में बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं और जिसको कई बार लेकर कोर्टरूम तक जंग छिड़ जाती है, मगर उतनी विस्तार पर हम इस चर्चा को लेकर नहीं जाएंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि जो हमारा देश है उससे प्रेम करिए, आपस में सभी को सम्मान आदर उनका हक और अवसर दीजिए, और जो अधिकार हैं वह हम सब नागरिकों के लिए समान रूप से हैं, और इसको जानकर कर जब हम रहेंगे तो हर जगह अमन चैन रहेगा और गतिरोध कहीं पर भी नहीं होगा। और देखिए, एक चीज और है जिस पर हम सब का अधिकार है, और वो है अच्छी सेहत पाने का अधिकार। और हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति है, चाहे हम भोजन की बात करें या अध्यात्म की बात करें, आयुर्वेद की बात करें या फिर योगासन प्राणायाम की बात हम क्यों ना करें, स्वस्थ सेहत पाने का जो खुला खजाना है वो हम सबके पास है। एक सेहतमंद जीवन जीने का जो खजाना है बिल्कुल हम सबके आसपास है, मगर हमने बिल्कुल वाकई उसको तिजोरी में बंद करके रख दिया है और किसी विशेष अवसर पर हम इसे बहुत उत्साह से प्रयोग में लाते हैं, जबकि निरोगी काया ही तो संपदा है। और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तब न कोई रोग होगा न शोक होगा। इसलिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प जरूर करें, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन नियमित रूप से इसे रोजाना जरूर करें। तो चलिए, जो कार्यक्रम की जो मधुर संगीत लहरियां हैं उसमें हम बिल्कुल भी अवरोध नहीं आने देंगे और आपको सुनवाते हैं एक मस्ती भरा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बर्फी से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की, संगीत दिया है प्रीतम ने और गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने।

0: सखियों, आज के माहौल में जब हम सोचते हैं तो लगता है उच्च शिक्षा प्राप्त करना, दूसरे शहर जाके पढ़ना, नौकरी करना आज कितना सहज हो गया है महिलाओं के लिए। और जो स्वयं अपना कोई व्यवसाय करना चाहती है उसके लिए प्रशिक्षण, लोन जैसी बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जब कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए जुनून के साथ वे जब उठ खड़ी होती हैं तो यहीं से सशक्तिकरण शुरू हो जाता है। तो चलिए इसी विषय स्वरोजगार से सशक्तिकरण पर डॉक्टर अंजलि औधिया जी से सुनते हैं उनके विचार।
1: नमस्कार। आज हम स्वरोजगार से सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम, इस विषय पर बातचीत करते हैं। सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने जीवन, संसाधनों और निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता देना। और स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी नियोक्ता के लिए काम करने की बजाय स्वयं का व्यवसाय शुरू करना। वास्तव में देखा जाए तो स्वरोजगार ही सशक्तिकरण की कुंजी मानी जा सकती है, क्योंकि स्वरोजगार केवल आय का स्रोत नहीं बल्कि यह आत्मविश्वास है, स्वतंत्रता है, सामाजिक सम्मान का आधार है। इस पर बात करते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का आधार तो स्वरोजगार है ही, क्योंकि इससे सबसे पहला लाभ जो मिलता है वो आर्थिक सशक्तिकरण का होता है। जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है तो वह नौकरी की अस्थिरता और सीमित वेतन की सीमा से बाहर निकल आता है। उसका अपनी आय पर नियंत्रण हो जाता है। अपनी मेहनत और नवाचार के दम पर अपनी आय की क्षमता को वह स्वयं निर्धारित करता है। यह गरीबी के चक्र को तोड़ने और वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति पूंजी का निर्माण भी करता है। छोटे व्यवसाय और उद्यम न केवल मालिक के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी दीर्घकालिक संपत्ति यानी कि पूंजी का निर्माण करते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। सशक्तिकरण से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण भी होता है, क्योंकि सशक्तिकरण केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्ति की पहचान और समाज में उसकी भूमिका को मजबूत करता है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अपने व्यवसाय को सफल बनाने की प्रक्रिया में व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान का कौशल और दृढ़ता विकसित होती है। यह व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसके साथ ही उसका सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि एक सफल उद्यमी या कारीगर अपने समुदाय में सम्मानित होता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या महिलाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें अक्सर मुख्य धारा के आर्थिक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है। स्वरोजगार महिलाओं को घर की आय में योगदान देने और साथ ही पारिवारिक निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देता है। इससे उनकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि एक उद्यमी यह तय करता है कि क्या उत्पादन करना है, किसे नियुक्त करना है, कैसे विस्तार करना है। नियंत्रण की यह भावना सीधे सीधे सशक्तिकरण की भावना को जन्म देती है। और आर्थिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के साथ ही स्वरोजगार के कारण आप राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब सशक्त होता है तो राष्ट्र सशक्त होता है। स्वरोजगार केवल व्यक्तिगत उत्थान तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यापक राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। इससे रोजगार सृजन होता है, वह खुद काम करता है और अन्य लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करता है, जिससे बेरोजगारी की दर कम होती है। नवाचार और प्रतिस्पर्धा की वजह से ये जो छोटे व्यवसाय होते हैं ये अधिक लचीले और नवीन होते हैं, जो बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवी सेवाओं और उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में भी इनका योगदान होता है। लाखों छोटे और मध्यम उद्योग MSMEs देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि देश में जब MSME को मजबूत किया गया तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इसका मतलब यह है कि स्वरोजगार सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है, जो व्यक्ति को नौकरी चाहने वाले से नौकरी देने वाला बनाता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सम्मान और सामाजिक पहचान देता है। सरकार द्वारा कौशल विकास, आसान ऋण सुविधाएं और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करके इस आंदोलन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा सके। और इसी को प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला कदम है व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा में एकीकरण। स्वरोजगार प्रोत्साहन का सबसे महत्वपूर्ण कदम व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। इसके लिए कक्षा 6 से 8 यानी कि मिडिल स्टेज में छात्र छात्राओं को प्रारंभिक स्तर पर ही विभिन्न व्यावसायिक कौशलों जैसे कोडिंग, बढ़ाईगिरी, कुम्हारी, बागवानी और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से परिचित कराया जाता है। इंटर्नशिप छात्रों को स्थानीय कारीगरों, कलाकारों, शिल्पकारों और व्यवसायियों के साथ 10 दिनों का बैगलेस अवधि के दौरान व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अकादमिक विषयों के साथ साथ व्यावसायिक विषय चुनने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कदम है वो है उद्यमिता के कौशल का विकास। इस नीति का सीधा लक्ष्य छात्रों को उद्यमशीलता के लिए तैयार करना है। शिक्षा का ध्यान रोट लर्निंग यानी कि रटकर सीखने की प्रवृत्ति से हटकर आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और नवाचार पर केंद्रित किया गया है ताकि छात्र खुद के व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हो। भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यवसायिक ज्ञान जैसे कि पारंपरिक शिल्प, तकनीक, लोक विद्या के रूप में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना है। बाजार की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया जाना है ताकि व्यावसायिक शिक्षा के फोकस क्षेत्रों का चयन स्थानीय और वैश्विक बाजार के अनुरूप किया जाए ताकि कौशल प्रासंगिक बने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वरोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था। स्नातक स्तर पर आप अगर पहली साल के बाद पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो भी कौशल आधारित प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरे वर्ष के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं और कोई व्यावहारिक शिक्षा लेने चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, जिससे स्वरोजगार के लिए आप जल्दी प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसके द्वारा छात्रों को उनके व्यावसायिक विचारों को विकसित करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने में मदद मिल सकेगी। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया गया है मेन स्ट्रीम कोर्सेज के साथ में। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन, संचार कौशल और तकनीकी कौशल जैसे पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जो सीधे स्वरोजगार की दिशा में सहायक होते हैं। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहती है जहां शिक्षा पूरी तरह आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करे। तो कहा जाता है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन को सशक्त करना है, आपको सामाजिक रूप से सशक्त होना है, मानसिक रूप से सशक्त होना है और व्यवसायिक रूप से सशक्त होकर आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बनाना है। तो स्वरोजगार की दिशा में आप एक कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने। स्वरोजगार और सशक्तिकरण खासतौर पर मातृशक्ति के लिए, नारी के लिए बहुत जरूरी है। शक्ति, समानता और सम्मान, ये हम सब का अधिकार है। आप अपनी कहानी की खुद नायिका हैं और आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। नारी की शक्ति केवल पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में नहीं बल्कि अपनी राह खुद बनाने में है, और इसके लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा, आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। क्योंकि समानता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि प्रगति की नींव है। नारी को यह समान अवसर लेने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और देखिए कैसे वह आसमान छू लेती है। उसे रोकने की नहीं, आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है। इसलिए सपने देखो, उन्हें पूरा करो और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि आप सीमाओं को तोड़ने के लिए बनी हैं, सीमाओं में बंध कर रहने के लिए नहीं। आप में वो साहस है, वह बुद्धिमत्ता है कि आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकती हैं। बस जरूरत है स्वयं को पहचानने की। नारी शक्ति अदम्य है, अविश्वसनीय है, अपरिहार्य है, और शिक्षा उसका हथियार है, आत्मविश्वास उसकी ढाल है। हिलरी क्लिंटन का संदेश मैं दोहराना चाहूंगी। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक भाषण में बीजिंग में हुए संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व महिला सम्मेलन में 1995 में संदेश दिया था, जो नारी सशक्तिकरण के लिए वैश्विक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया था। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन राइट्स आर वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स वंस एंड फॉर ऑल। मानवाधिकार ही महिलाओं के अधिकार हैं और महिलाओं के अधिकार ही मानवाधिकार हैं, हमेशा हमेशा के लिए। यह वाक्य विश्वभर में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का नारा बन गया। उन्होंने स्पष्ट किया, महिलाओं के साथ होने वाला हर तरह का दुर्व्यवहार, चाहे वह यौन हिंसा हो, समान वेतन न मिलना हो या शिक्षा से वंचित करना हो, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। केवल नारी का मुद्दा नहीं है ये। उन्होंने तर्क दिया कि जब महिलाओं को रोका जाता है तो देश की प्रगति रुक जाती है, और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सब कुछ आगे बढ़ता है। इसलिए हम सारे विश्व के नेताओं से आग्रह करते हैं कि केवल कागजी योजनाएं न बनाएं, बल्कि धरातल पर बदलाव लाएं, ताकि महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें। मीडिया की दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक ओपरा विनफ्री ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने अपने भाषण में आत्मविश्वास और सेल्फ वर्थ की बात कही थी। ओपेरा कहती हैं कि हर महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने अंदर की सच्ची आवाज को पहचानना और उसे बिना डर के व्यक्त करना। उन्होंने स्वयं अपने करियर में अपनी आवाज सुनी, असफलताओं से सीखा, खुद में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनका मानना है कि एक बुद्धिमान महिला किसी और की मान्यता या अनुमति मिलने का इंतजार नहीं करती, बल्कि वह खुद में निवेश करती है, खुद को ताज पहनाती।

है और अपनी जड़ों को नहीं भूलती। दूसरों को ऊपर उठाना जरूरी है, लेकिन तब जब आप खुद ऊपर उठ चुके। आपको अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए। एक और महिला का जिक्र मैं करना चाहूंगी, मलाला यूसुफ जी। मलाला यूसुफ

0: तो देश एक नए आयाम को छुएगा। धन्यवाद।
1: स्वरोजगार से सशक्तिकरण, इस विषय पर वार्ता भी आपने सुनी। वार्ताकार थी डॉक्टर अंजलि औधिया। और इस वार्ता के बाद अब रुक करते हैं एक और गीत की ओर। है फिल्म है हमारी अधूरी कहानी, जिसमें स्वर और संगीत दिया है अमी मिश्रा ने और गीत लिखा है कुणाल वर्मा ने।

सखियो आज एआई का दौर है और हमारे समय में तो आई दादी नानी का दौर चलता था और वो बताती थी अपने अनुभव से हमारी हर समस्या का समाधान दे देती थी। आज भी उनके साथ वक्त बिताइए, पूछिए उनसे, एकदम सही और सब हल आपको मिल जाएंगे। वैसे उनसे ही जानिए कुछ समझी समस्याओं का समाधान या कहें कुछ उपाय तो हम भी आपको बता ही सकते हैं। और जब बात देखिए सौंदर्य की आती है तो हम सब कुछ करना चाहते हैं, समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहते इस मामले में, लेकिन केमिकल्स के नुकसान के चलते होममेड को हम प्राथमिकता देते हैं। तो चलिए एक बहुत बढ़िया से एक मॉइस्चराइजर जो है वो हम घर पर ही कैसे तैयार करें वो हम आपको जरूर बता देते हैं। घर में जो एलोवेरा का पौधा होता है या फिर आप बाहर से भी ये जेल आप खरीद सकते हैं, वैसे घर का बेस्ट रहता है। तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें और नारियल या बादाम का तेल 1 चम्मच लें, ग्लिसरीन 1 चम्मच, विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो 1 कैप्सूल ले लें, और रोज़ या बादाम या जैस्मिन जो भी एसेंशियल ऑयल हैं जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिला लें और फेंट लें जब तक कि क्रीम जैसा जो टेक्सचर है वो ना बन जाए। तो लीजिए, इन सबको मिलाने से बिल्कुल रेडी हो गया आपका मॉइस्चराइजर और इस

को आप साफ एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में या फिर सामान्य मौसम हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं और इसे लगाइए और बिल्कुल अपने चेहरे पर ग्लो पाइए। तो चलिए एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म है भाग मिल्खा भाग, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और गीत लिखा है प्रसून जोशी ने।

सखियों, नन्हे छोटे बच्चों से जहां हमारा घर गुलजार रहता है, वहीं उनकी सेहत, उनकी देखभाल हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। और जो घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनसे उनको दूर रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार खेल खेल में तकलीफ़ों का सबब बन जाती है। और देखिए, जो बच्चों की जो होती है उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव बहुत होते हैं, इसलिए धूल मिट्टी में खेलने की ज़्यादा इच्छा के कारण सामानों को छूने देखने की जो उत्सुकता

है उसके कारण उनके कपड़ों का भी बुरा हाल हो जाता है। इसलिए कपड़ों की सफाई करते समय किसी सॉफ्ट डिटर्जेंट या कम केमिकल युक्त जो वॉशिंग पाउडर है या कुछ ऐसे सोप से धोएं जिससे उनका जो इन्फेक्शन खत्म हो जाए और वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। और इसी तरह से जो सूती कपड़े हैं, जो सॉफ्ट कपड़े हैं, वो पहनाएं जो उनके लिए आरामदायक रहें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी मंजुला जैन को। नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत राजेश रोशन का है, फिल्म का नाम है लावारिस।

0: उदित नारायण अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत राजेश रोशन का था, फिल्म थी लावारिस।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी

0: में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले चार दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में

0: अगले दो दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आपने सुना। फिल्म आग के इस गीत की धुन दिलीप सेन समीर सेन ने बनाई थी।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए प्यारे का तो फलाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में राहत इंदौरी का लिखा गीत। फिल्म नाराज के इस गीत की धुन अनु मलिक ने बनाई है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवे जिला सुने बर तै बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा ला घलो बताना सुमित।
0: बेरा हवे संझा कुन 5:10 ले जेन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तै हम मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए पापी गुड़िया। इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत है नरेश शर्मा का।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आपने सुना, संगीत नरेश शर्मा का था, फिल्म थी पापी गुड़िया। आइए अब सुने कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरण की आवाजों में फिल्म राहुल का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत अनु मलिक का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 4 बजे अपनी संध्याकालीन सभा में कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स सुनवाने इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। वहीं ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। उरुग्वे की चियारा एम्पेनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और दोपहर का वक्त है, गर्मी काफी ज्यादा है, तो जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, जब निकलें तो ढेर सारा पानी पीकर या कुछ भी तरल पदार्थ लेकर ही निकलें, और अपना खूब ख्याल रखें। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आपके मन को भाने वाले प्यारे प्यारे गीत संगीत की ये महफिल, जिसका नाम है मन भावन, और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आप अपनी पसंद अपने संदेश के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है fmgoldaird@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868867533। तो जनाब, बहुत सारे संदेश जो हमारे पुराने श्रोता हैं उनके हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला पैगाम हम शामिल कर लेते हैं, उससे पहले हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप सभी को अभिवादन प्रेषित करते हैं। तो पहला जो नगमा हमने लिया है वो फिल्म है मेरा साया, स्वर है मोहम्मद रफ़ी का, और फरमाइश बहुत सारे लोगों ने की है हमारे पास। बुराड़ी से, बुराड़ी जो दिल्ली में है, वहां से पैगाम आया है कैलाश, दिनेश, गोरांश, मायरा, रेनू, ये कहते हैं कि कोई भी अपनी पसंद का नगमा आप हमें सुनवा दीजिए। तो चलिए जी, इनके साथ ही जुड़े हुए हैं कैलाश चंद जी कोटपुतली राजस्थान से, और साथ ही हमारे पास किशन वजनानी, नीलम, स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से ये पैगाम आया हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन का भी पैगाम आया हुआ है। और तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, ये जुड़े हुए हैं शाहदरा बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमसे जुड़े हुए हैं। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन का हमारे पास पैगाम आया हुआ है, और साथ ही हमारे पास गरिमा का नई दिल्ली से ये पैगाम आया हुआ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव भी जुड़े हुए हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे पैगाम हैं और उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और एक बीच में आपसे गुजारिश है कि आप लोग बार बार पैगाम ना भेजें, अगर आपका पैगाम शामिल हो गया है तो अपने दूसरे साथियों को भी मौका दें कि उनका भी पैगाम शामिल हो जाए। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का भी हमारे पास पैगाम आया हुआ है। तो चलिए जनाब, बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म आपकी कसम से, फिल्म मेरा साया से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सबके लिए।

तो जी हाँ जनाब, आपके बहुत सारे पैगाम हमारे सामने हैं और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे पास एक पैगाम आया हुआ है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति और पौरुष का ये पैगाम है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे पास ऊपर कोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से ये पैगाम आया हुआ है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और तमाम अब्बासी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, कोशिश रहेगी और आगे बढ़ते हैं, आपकी कुछ और फरमाइशें हम शामिल कर लेते हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से राधे श्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, नेहा जगदीश देवांगन जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास और भी पैगाम है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम सुरलकर का भी पैगाम आया हुआ है। और अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, ये सब तो जुड़े हुए हैं, छोटी बलिया करजत मुंबई से, और इनके अलावा कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से जुड़े हुए आमना नसरीन बागवान, आमना परी और राबिया मंताशा, आशु अहमद भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे पास रामगढ़ कैंट से ये पैगाम आया हुआ है, महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू का भी ये पैगाम आया हुआ है। और छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हुए हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमारे साथ। और गांव चौहल्ला बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती, सूफिया नवाब बलीमारान से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप लोगों की फरमाइश में से ही लिया है मैंने, फिल्म काला पत्थर है, लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे मन भवन। मैं हूँ आपके साथ शिव प्रकाश। आपके जो पैगाम आ रहे हैं उनमें हमारे पास पैगाम आया है अनीता वर्मा जी का पीतमपुरा दिल्ली से, और इन्होंने एक फरमाइश भेजी है, फिल्म महुआ का गाना सुनना चाहती हैं। तो ये गाना हमने ले लिया है और कुछ पैगाम हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद ये गाना आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और चाणक्य चौक गाज़ियाबाद से जुड़े हुए मनोहर लाल गांधी साहब, ये विजयनगर में ये जगह है, ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी जुड़े हुए हैं। और राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार के तमाम सदस्य जुड़े हुए हैं। और भी हमारे पास कई सारे पैगाम हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जुड़े हुए हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारे पास इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, अब आप जब अपना नाम लिखेंगे तो आपका पैगाम भी हम शामिल कर लेंगे। और भी कुछ पैगाम हैं हमारे सामने, तो हम सुधाकर राजे जाधव, ये ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से जुड़े हुए हैं, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, वायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख भी हमारे से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे जो पैगाम हमारे सामने हैं, ये हैं इम्तियाज अंसारी सहारनपुर से, और ये कह रहे हैं कि जी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमें एक फरमाइश भेजी है, हम भी कोशिश में हैं कि आप सभी लोगों की फरमाइश पूरी करें। और बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नबीस, पलक लुबना और यश मंसूरी जुड़े में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और दिग्दर्शन गौड़ शोभापुर मेरठ कैंट से जुड़े में, कविता, राधा नामदेव, रानी झा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ख्याला से जुड़े हुए हैं राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार, विष्णु गार्डन से भी जुड़े हुए हैं ये लोग, सोनित कुमार भी हैं इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आप तक आपका वो नगमा पहुंचा देते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में, मखमली आवाज़ है इनकी, और फिल्म है महुआ आप सबके लिए।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूँ आपके साथ शिव प्रकाश और आप सुन रहे हैं मन भावन। आपके नगमे, आपकी फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। और हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो है 9868686853 और हमारा जो ईमेल का पता है वो है fmgoldaardelhi@gmail.com। आपके बहुत सारे पैगाम हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और एक पैगाम हमारे सामने जो है, जो हमने इनकी पसंद का गाना भी ले लिया है, ये है मजनू का टीला दिल्ली से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने शबनम फिल्म का जो गाना सुनना चाहा है वो हमने ले लिया है। और हमारे पास बिसाऊ राजस्थान से दिनेश राज कुमार, विजय कुमार और पंकज का ये संदेश आया हुआ है। इन्होंने फरमाइश तो नहीं भेजी मगर इनका संदेश जरूर हमारे पास था। धनौरा तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोहम्मद यूनुस खत्री और सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री भी जुड़े हुए हैं। चीपा कॉलोनी खांडवा से आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास मेल आई हुई है विष्णु गार्डन दिल्ली से, ये जुड़े हुए हैं नईम खान, अकरम, निसार, सारुन भाई, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश बोरगांवकर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हुए हैं, साथ इनके हैं सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदा नंद, विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये लिखते हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रुपेश जी। और अनिल मोहन का भी हमारे पास पैगाम आया हुआ है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही और भी कुछ पैगाम हैं लेकिन पहले नगमा रफी साहब की आवाज़ में आप सबके लिए।

0: क्षेत्रम।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं मनभावन। और अगला जो नगमा हम ले लिया है हमने, वो है नाइट इन लंदन का। जी हाँ, बहुत ही प्यारा ये नगमा है और इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है। मॉडल टाउन करनाल से हमारे पास पंकज शर्मा जी का ये पैगाम आया है। उनके साथ सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, जग्गी दुआ, प्रेमलता दुआ भी शामिल हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास एक पैगाम आया हुआ है मोताला बाजार से, सोहेल शेख, शेख वजीर, शेख शगीर और बबलू ठेकेदार भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरमीत सिंह मीता जुड़े हुए हैं साउथ एक्सटेंशन से, बहुत इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पैगाम हैं, उनमें गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, ज़रूर हम कोशिश करेंगे आप लोगों की फरमाइश आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और हरप्रीत कौर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ ही हमारे पास दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का रिंगणी छत्तीसगढ़ से भी ये पैगाम आया हुआ है। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उनके पैगाम शामिल करना ज़रूर चाहेंगे। हमारे पास रागिनी तिवारी का भी छत्तीसगढ़ से ये पैगाम आया हुआ है और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जी, इन तमाम लोगों ने हमें संदेश भेजा है। और उत्तम नगर से जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन, सरिता भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, ज़रूर हम कोशिश करेंगे। और गौरी शंकर जी जुड़े हुए हैं नांगलोई से और इनकी भी एक फरमाइश है, ज़रूर कोशिश होगी। और भी बहुत सारे पैगाम, अलीगढ़ से हमारे पास सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का भी पैगाम आया हुआ है। चलिए, तो नाइट इन लंदन का ये बहुत ही प्यारा सनगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं मन भावन। संदेश आया है, मेरा नाम स्वरूप आनंद सरजाल, जोड़ा पिपाई, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहते हैं कि इनका परिवार और इनके दोस्त सभी लोग एक गाना सुनना चाहते हैं और वो गाना है फिल्म धरती कहे पुकार के से। ये गाना हमने ले लिया है आपकी फरमाइश पे और मुकेश जी की आवाज़ है, गाना भी अच्छा है और कुछ और भी संदेश हम शामिल करना चाहेंगे। और हमारे पास सरोज बंसल और अनूप कौर का ये पैगाम आया हुआ है। गुरुग्राम से आप पैगाम भेजते हैं, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखें। शमशुल कमर राही गंजर डुंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। साहिन फातिमा अनु खान, अदनान खान, फैजान खान भी जुड़े हुए हैं। और ख्याला से उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनोज कुमार और सोनित कुमार भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान भी जुड़े हुए हैं। और नवसाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर।

संजय चौहान भी जुड़े हुए हैं और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, अफरीन कौसर, अल्ताफ भी जुड़े हुए हैं, नीलोफर फातिमा भी जुड़ी हुई हैं और नसरीन खान, वसीम खान और मुबीना खान तलवार गली खांडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे पैगाम और भी हमारे पास हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, इनके साथ एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, सतीश अनेजा भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारे पास सुरेश नारंग जी का भी एक संदेश आया हुआ है, इनके साथ आशा नारंग भी हैं, सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। चलिए तो अब हम चलना चाहेंगे और चलते चलते ये नगमा जो फिल्म धरती कहे पुकार के से है और उसमें जो स्वर है वो मुकेश जी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप अपना ख्याल रखें इस मौसम में, अपनों का भी ख्याल रखें। बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 4 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार

0: से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना।
0: वाह,
1: अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता। तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आर्मी का तो काम ही है आर्म्ड फोर्सेस का कि आपसे, आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, IMA में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: क्या बात है, अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: आज के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे, उस टाइम पे तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है, तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के, माँ जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है, एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे, एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना, और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर here who has such kind of ये कहूंगी मैं सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा इंडिया जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें बुजुर्ग बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन्स होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियाँ एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से ही सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी, और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया, और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है। मैं और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सकें।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, स्प्रिट कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है।

0: इन चीजों को खरीदना, जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल, अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है.
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना. और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
0: है. क्या बात है, यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया और उनका नृत्य कहीं

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफकोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ, मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
1: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
0: जी।
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे ही कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ಶಿವನೆ ಗಜಿರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये टुकुडांड, चाची डांड, करसी, बूढ़ा डांड, बरबसपुर, सिलफिली, कनकनगर, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 22 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, दांतीढाप, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछाप, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लाल डी, झुनकी डी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। स्पोर्ट्स कैन आज रात 8:30 पर ये हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। युवाणी के अंतर्गत शाम 5:10 पर अपन गोट में सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर चर्चा सुनेगा और संस्कृति के महक में खेती किसानी और हमर संस्कृति पर जानकारी देंगी दीपमाला तिवारी। इसके साथ आप सुनेंगे माटी के गीत। मुन्नालाल पाल और साथियों के स्वर में लोक संगीत सुनेगा शाम 6:30 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम विरासत का प्रसारण आज रात 9:25 पर होगा। शास्त्रीय संगीत में पंडित ब्रजभूषण काबरा का गिटार पर बजाया राग देश आप सुनेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। चौपाल में आज की बात का विषय होगा मक्का के वैज्ञानिक खेती। किसान वाणी में आज की सलाह क्रम में हल्दी और अदरक की उन्नत खेती पर सलाह देंगी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी की डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी।

अब बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। स्पोर्ट्स केन कल रात 8:30 पर, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। नमस्कार रायपुर होगा कल सुबह 7:05 पर। कल सुबह 9:00 नवा विहान कार्यक्रम में आप सुनेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर की सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत से वीरभान साहू के गुड बात। छाया चंद्राकर के गाय सुगम संगीत सुनिएगा कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हीर भैरव आप सुन सकते हैं सुबह 10:00। अनुराग धारा कार्यक्रम में कल सुबह 11:05 पर फाल्गुनी पाठक के गाए गुजराती गीत आप सुनेंगे। सदाबहार नगमों का आनंद लीजिएगा कल 11:30 पर। दोपहर की सभा में प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12:00। उदित नारायण के स्वर में सुगम संगीत सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत में पंडित अनिंदो चटर्जी का तबला वादन होगा कल दोपहर 1:30 पर। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा हमर हाथी हमर गोट। युवाणी में शाम 5:10 पर आजकल में चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का दिवस। साथ ही सुनेंगे वार्ता, क्या आपकी नजरें मोबाइल से नहीं हटती। वार्ताकार होंगी सास्वती कर और कव्वाली। हमारी बेड़ियां प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:30 पर। किसानों का कार्यक्रम चौपाल कल शाम 7:21 पर, जिसमें आज की बात में चर्चा का विषय होगा फसल चक्र परिवर्तन हेतु श्री अन्न की खेती। साथ ही सुनेंगे हेलो चौपाल। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर्यावरण का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत कल रात 10:00। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें होगा रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: युवानी के आरो लगावत है। तो संगवारी हो, आप जम्मू के अगोरा ला दुरिहावत और आपके मया के सूत्री में खिंचावत आज के युवाणी के बगिया ला सजाए बर आगेन आपके दो संगवारी, मैं तृप्ति भारती
1: और मैं दामिनी सेन। तो झोंको हमार दोनों संगवारी के मया भरे
2: राम राम जय जोहार।
1: तृप्ति,
0: हाँ,
1: का हाल चाल संगी? सब बने बने है ना? अब्बर दिन बाद तोले भेंट हुआ थे।
0: हाँ दामिनी, सब बने बने। अब तय बता,
1: महु बने हो संगी? अच्छा ये बता, कासा खा के आया है?
0: मोला के दामनी?
1: हाँ,
0: मैं तो सलगा बरा खा के आया हूँ संगवारी।
1: आहा, मुंह में पानी आ गया तृप्ति।
0: ऐसे?
1: हाँ।
0: और तय का साग खाए?
1: मैं तो करेला साग खाया हूँ संगी।
0: मुंह करू हो गए दामनी।
1: ऐसे कावर कहा था तृप्ति, तोला करेला पसंद नहीं है का?
0: पसंद ना पसंद के सवाल नहीं है दामनी।
1: हाँ?
0: फिर कैसे तो करेला करू रही थे ना?
1: हाँ?
0: तेकर से ती मुंह कोती जाला नहीं धरे।
1: हाँ?
0: फिर खा लेते हो कभू कभू।
1: अच्छा ये बता तृप्ति,
0: हाँ,
1: 4-5 दिन पहले तोर संग फोन में बात करे रहे हम, ते हाँ कहा रेहस कि तोर तबीयत ठीक नहीं है, कही के पेट है पिरा थे, कही के थोड़किन आराम मिलीस? और काय किस डॉक्टर है?
0: हाँ हो दामिनी,
1: हाँ?
0: आराम मिलीस।
1: हाँ हाँ,
0: डॉक्टर है कहीस कि बाहरी खान पान ला कम कर।
1: हाँ?
0: और घर के पौष्टिक भोजन ला खा कही के।
1: हाँ?
0: ते दिन ले कान पकड़ के चेत गयो दादा।
1: तेखरे से तो कहते हो संगी, करेला घलो खाए कर, हो स्वास्थ्य में बड़का फायदा रहे थे।
0: हाँ हो संगवारी, औ तोला पता है दामनी?
1: हाँ?
0: आज एक ठिन बड़ सुघर विशेष दिन घलो आए।
1: हाँ?
0: जो हमार स्वास्थ्य ले जुड़े है।
1: कौन से विशेष दिन आए तृप्ति?
0: संगवारी, आज आए सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस।
1: हाँ?
0: जेकर मतलब भोजन पकाए और खाए के एक ऐसे तरीका है जो पृथ्वी के संसाधन ला नुकसान नहीं पहुँचाए।
1: हाँ?
0: ये केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, भलु खेत ले लेके थारी तक के यात्रा में।
1: हाँ?
0: पर्यावरण के पूरा ध्यान रखते।
1: हाँ तृप्ति, आज के आधुनिक जीवन शैली और फास्ट फूड संस्कृति के कारण पर्यावरण ला भारी नुकसान पहुँचते। ऐसने में सतत गैस्ट्रोनॉमी हमार समय के सबले बढ़ के मांग बन गए।
0: संगवारी हो, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर बछर 18 जून के मनाया जाते, जेखर उद्देश्य लोगन मन ला ऐसे खाद्य पदार्थ के उपयोग बर प्रेरित करना है जोन पर्यावरण के अनुकूल रहा और हमार भविष्य की पीढ़ी बर प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करे।
1: हाँ संगी, जब भोजन के जम्मू प्रक्रिया उत्पादन ले लेके उपभोक्ता तक प्रकृति संसाधन ला बिना नुकसान पहुँचाए ये प्रक्रिया पूरा होते, तब ओला सतत गैस्ट्रोनॉमी कहे जाते, जेमा पर्यावरण संरक्षण के पूरा ध्यान रखे जाते।
0: हाँ दामिनी, हमला अपन थारी माँ वत के भोजन लेना चाहिए।
1: हाँ?
0: जत के हमन खा सकथन।
1: सिर्तोन?
0: उपराहा भोजन लेके ओखर अपव्यय करके अन्न के अपमान नहीं करना चाहिए।
1: सिर्तोन के संगी, और ए दिवस ला केवल भोजन के उत्सव नो है, भलुक प्रकृति संस्कृति और मानव स्वास्थ्य के प्रति हमर जिम्मेदारी के भी चिन्हारी आए।
0: बने कहा था दामनी।
1: हाँ?
0: जब हमन संतुलित स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल भोजन ला अपनाबो।
1: हाँ हाँ?
0: तभी तो एक स्वस्थ समाज और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में अपन सहयोग दे पाबो का।
1: सिर्तोन?
0: और भाई, हमर छत्तीसगढ़ में तो रिकिम रिकिम के भाजी मिलते।
1: हाँ?
0: कैसे दामनी?
1: हाँ हाँ?
0: जो हमार स्वास्थ्य बर कतेक लाभदायक है। चौलई भाजी, चेंच भाजी, बुहार भाजी, लाल भाजी, औ हाँ संगी, जौन सब लसुहाते सुहाता भाजी।
1: आहा, बड़ सुकर के तृप्ति। तो संगवारी हो, संतुलित आहार लेवो, पर्यावरण के ख्याल रखो और गोट ला सिरावत आवो सुनथन सुघर अकन गीत ला।

0: गजब मोल।
1: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीत ला, जउन ला अपन सुघर सुर में पीरो रहिन भीखम धर्माकर ह।
2: अब सुने बर चारिस हमर ए संगवारी मन है, खल्लारी भीम खोज ले, सरोज साहू, छोटी पिंकी, रोहासी छत्तीसगढ़ ले, मुकेश साहू, नंदनी, मनीषा, मयंक, जानकी साहू मन, कन्या दमो, विकासखंड बिरसा जिला ले, ध्रुवा राम साहू, पारस राम साहू, देवांग श्वेता, योगिता खेजल साहू मन है, पुरैना शहीद नगरी छुईकदान जिला खैरागढ़ ले, पूजा जंगेल, बेबी धारनी, रेखा ध्रुव जंगेल मन, और इहेल हावय धर्मेन्द्र जंगेल, संतराम लोधी, नागेश्वर जंगेल मन, लक्षणपुर ले है रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू मन है।
1: दामनी,
2: हाँ
1: कालियती पानी गिरी संगवारी।
2: ओहो तृप्ति, थोड़किन गिरी से फिर जेठ के राहत ले, गर्मी है और थोकन राहत घलो मिली सावे।
1: हाँ संगी, मानसून लाए माँ अभी थोड़किन बेरा है।
2: हाँ हाँ,
1: फिर हमर संग हमर जम्मो किसान भाई बहनी मन घलो बरखा रानी के अगोरा करत हावे।
2: हाँ,
1: और का कहा थे जानता संगी?
2: काय कहा थे?
1: हमर संगवारी मन कहा थे, कब आबे रे करिया बादर, धरती हा तो रद्दा जो है, सुखा गे है खेत खार सब, किसान के मन हा घलो रोवे।
2: हाँ,
1: नदिया नरवा पियासे बैठे, पेड़ पौधा मुरझावत है, तोर बर संगी आस लगाए, अखिया रद्दा ताकत है, अखिया रद्दा ताकत है।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीतला जौन ला अपन सुघर सुर म पिरोय रहिन चतुर राम साहू, कांति यादव और गीता भट्ट।
1: सुने बचारिस हमर ए संगवारी मन ह तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेन कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, दिव्यांशु, भूपेश, शिव, निषाद मन। ग्राम फूलजा घटारानी जिला गरियाबंद ले योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामनी, मुस्कान, हर्षिता साहू मन ह। बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन मन। रूपापाली बसना ले हीरालाल जगत, देवेश जगत और लवण्या कश्यप मन ह। माटी हमर दाई, खेती हमर करम, मिर्झा के रहना और जूर मिलके कमाना, यही हमर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के सुघर ताना बाना है। संगी हो, जब जेठ अषाढ़ में पानी गिरते तो माटी के ओ सुगंध मल्ला मोह लेते। नांगर बैला ले लेके जब किसान मन खेत ला जोतते तो ऐसे लागते जैसे धरती मैया हा सिंगार करा थे।
0: और जब खेत में रोपा लगावत खानी जौन ददरिया गाथे ओखर काय कहना संगवारी, जेमा हमर सुघर संस्कृति झलकथे और इही संस्कृति के छटा ल बगरावत हमर आज के क्रम संस्कृति के महक मा आवा सुनन दीपमाला तिवारी के वार्ता, जेखर विषय आए खेती किसानी और हमर संस्कृति।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन ठेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: जब हमन संस्कृति के बात करथन त सिर्फ नाचा गम्मत गीत संगीत और तीज तिहार के बात नहीं होवय। संस्कृति में वो सब्बो चीज शामिल होते जौन हमर जीवन के तरीका ला बताते। हमन कैसे रहथन, का खाथन, कैसे काम करथन, एक दूसर संग कैसने व्यवहार करथन, ये सब्बो संस्कृति के हिस्सा आए। त संगी हो, आज हमन बात करबो एक ऐसने विषय के जौन हमर जीवन, हमर माटी, हमर परंपरा और हमर पहचान ले जुड़े हवय। जब हमन खेती किसानी के बात करथन त हर बेर खेत फसल और किसान के मेहनत के चित्र हमर आँखी के आगू आ जाते। फिर खेती के असली मतलब एखर ले घलो बड़े आए। खेती एक जीवन दर्शन आए, ए हमन ला धैर्य, परिश्रम, प्रकृति प्रेम और संतोष के सीख देते। संगी हो, छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। ए नाम सिर्फ एक उपाधि नहीं है, भलुक हमर खेती प्रधान जीवन के पहचान आए। हजारों बछर ले हमर पुरखा मन खेती करते और खेती संग अपन संस्कृति ला संजोवत आते। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदलत हवय, तब घलो किसान धरती के भरोसा में अपन जीवन चलावत हवय। वो जानते कि हर बीज तुरंत फल नहीं दे, बेरा मेहनत और भरोसा की जरूरत होती। ये सीख आज के युवा पीढ़ी पर घलो बहुत जरूरी हवय। खेती सिर्फ अन्न उपजाए के कारज न हरय, खेती हमर जीवन के आधार आए। किसान जब खेत में बीज बोते तो वो सिर्फ धान या गेहूं नहीं बोत रहा है, बल्कि अपना सपना, अपन मेहनत, अपन परिवार के भविष्य बोत रही थी। साल भर किसान प्रकृति संग जुड़ के काम करते, वर्षा के इंतजार करते, खेत की तैयारी, बोनी, निराई, गुड़ाई और कटनी, ये सब्बो काम एक प्रकार के जीवन चक्र आए। ये चक्र के संग संग हमार संस्कृति घलो चलती। गाँव में जब बोनी के समय आते तब पूरा माहौल बदल जाती। किसान बिहान ले संझा तक खेत में जुट जाते। महिला मन घलो खेती के मा बराबर की भागीदार निभाते। इस सहयोग की भावना हमारे संस्कृति के सबसे बड़े पहचान आए। किसान और प्रकृति के रिश्ता बहुत गहरा होते संगी हो। किसान धरती ला महतारी मानते। पानी, जंगल और जमीन के सम्मान करना किसान के संस्कार में शामिल होते। जब खेत में नया धान तैयार हो जाते तो नवा खाई मनाए जाते। किसान सबसे पहली नया अन्न भगवान ला अर्पित करते। ओखर बाद परिवार के सदस्य मिलके नया फसल के भोजन ग्रहण करते। ए परंपरा किसान के कृतज्ञता के प्रतीक आए। नवाखाई हमला बताते कि अन्न सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि भगवान के प्रसाद आए। संगी हो, छत्तीसगढ़ में जिन तिहार मन है ओखर सीधा संबंध यहाँ के खेती किसानी ले जुड़े है। जेमा पहली तिहार है हरेली। ए तिहार में खेती किसानी के शुरुआत करथन और जितना भी खेती किसानी के उपयोग होने वाला उपकरण है, जैसे नागर, रापा, कुदारी, तेखर मन के पूजा करथन। और ही मा गेड़ी के परंपरा तको छुपे हवय। पहले के बेरा मा ज्यादा सुविधा नहीं रही से, चिखला ज्यादा रहा है, जेखर से कहूँ आना जाना मुश्किल रहा है। तेन समस्या ला दूर करे बर हमार सियान मन बांस के बने गेड़ी के खोज करिन और धीरे धीरे ये हमार संस्कृति के हिस्सा बन गए। ऐसने भोजली जमारा तिहार में अन्न बो के 9 दिन पूजा करथन, जिन समृद्धि के प्रतीक होते। भोजली और जमारा हमला सिखाते कि हमला अपन विकास कैसे करना चाहिए। जैसे छोटे पौधा है धीरे धीरे अपन जड़ ला माटी में पकड़ के रखते, वैसने हमला अपन संस्कृति ले जुड़ के रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भोजली गीत बहुत ही मधुर है। दीपचंदी ताल में जब एला गाए जाते तो सुनैया मन के हृदय में माँ गंगा ह भक्ति के धारा बोहादरी थी। एखर आगे आते पोला तिहार। जेन तिहार खेती किसानी में हमार मदद करैया गाय बैला मन के सम्मान में मनाए जाते। ए दिन बैला मन के श्रृंगार करे जाते, ओखर पूजा करे जाते और घर के व्यंजन के भोग लगाए जाते। घर के लइका मन माटी के बैला बना के बैला दौड़ के आनंद उठाते। संगी हो, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश आए और गाय ला माता के रूप में देखे जाते। ए तिहार मन हमला सिखाते कि जौन जीव जंतु मन प्रकृति और खेती के साधन में हमार मदद करते ओकर सम्मान करना चाहिए। ये भावना हमार संस्कृति के महान विशेषता आए। छत्तीसगढ़ के जितना भी तीज तिहार है तेखर संग यहाँ के संस्कृति के गहरा जुड़ाव है। दिवाली तिहार सबले बड़का तिहार में से एक है। जी हाँ, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सबो एक संग जुड़ाव देखे बर मिलते। किसान के किसानी हाँ सोना रूप ले लेते और फसल रूपी लक्ष्मी के अपन घर में स्वागत करथन। गोवर्धन पूजा के दिन पशुधन के पूजा करे जाते। गांव के राउत मन राउत नाचा करते और पशु मन के गला में सोहाई बांध के मंगल कामना करते कि कोनो प्रकार के रोग राई झन आवय। एखर आगू छेरछेरा तिहार बड़े जोर शोर से मनाए जाते, जेन ह दान, खुशी और समृद्धि के तिहार आए। घर के कोठी ह धान ले भर जाते त गांव के लोगन मन खुशी मनाते और अपन खुशी ला दूसर मन संग बांटथन। छेरछेरा माई कोटी के धान ला हेर हेरा। छेरछेरा के तिहार हमन ला सिखाते कि जब प्रकृति हमन ला भरपूर अन्न संपदा दे हे तब हमन ला अपन उपयोग के संग संग जरूरतमंद ला तको बांटना चाहिए और बांट के खाना ही हमार संस्कृति के निशानी है। हमार गांव देहात में ऐसन बहुत ज्ञान हवे जौन किताब में नहीं मिले। किसान मन बादल देख के बरसात के अनुमान लगा लेते, चिड़ै चुरगुन के व्यवहार देख के मौसम पहचान लेते। कई किसान मन चंदा और सूरज की स्थिति देख के खेती के काम तय करते। ये लोग ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आई हवे। एक ज्ञान हमारे संस्कृति धरोहर आए जौन ला बचाना जरूरी हवे। गांव के संस्कृति के सबसे सुंदर पहलू सामूहिकता आए। पहली के बेरा मा किसान मन एक दूसर के खेत मा मदद करे बर जावे। ककरो घर मा बोनी होत रहा है तब पूरा गांव सहयोग करते। कटनी के समय घलो लोग मिलजुल के काम करे। ये परंपरा ले समाज मा भाईचारा और एकता बनी रही थी। खेत के काम ले घर के जिम्मेदारी तक महिला मन महत्वपूर्ण योगदान देवत हवे। बीज संजोना, रोपाई करना, फसल के देखभाल करना और पशुपालन जैसे काम में महिला मन के योगदान अमूल्य हवे। हमार संस्कृति में महिला मन ला अन्नपूर्णा के रूप सम्मान दे जाते। इस सम्मान के मूल में ओकर मेहनत और योगदान छुपे हवे। छत्तीसगढ़ के लोकगीत में खेती के विशेष स्थान हवे। खेत खार, बरसात, रोपाई और कटनी के समय अलग अलग गीत गाए जाते। रोपा लगावत समय महिला मन गीत गाते। ये गीत मन काम के थकान ला कम करते और उत्साह बढ़ाते। ददरिया, सुवा, कर्मा और भोजली जैसे लोकगीत मन में खेती के सुंदर चित्रण मिलते। ये गीत मन हमार सांस्कृतिक धरोहर आवे। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा में खेती संग जुड़े अनेक कहावत मिलते, जैसे बहू वैसे काठू। ये सिर्फ खेती के नियम नहीं है बल्कि जीवन के नियम आए। मेहनत के पसीना कभी खाली नहीं जाते। एक किसान के जीवन ले निकले सत्य आए। एक कहावत मन हमार संस्कृति के अनुभव के खजाना हवे। छत्तीसगढ़ के दीवार, चित्रकारी, लोक नृत्य और लोकगीत में खेती की झलक दिखाई देती। धान के बाली, बैल, खेत और गांव के दृश्य लोक कला के प्रमुख विषय रही थे। ये बताते कि खेती सिर्फ अर्थव्यवस्था के हिस्सा नहीं है बल्कि कला और संस्कृति के प्रेरणा स्रोत घलो आए। आज खेती में आधुनिक मशीन, वैज्ञानिक तरीका और नई तकनीक के उपयोग बढ़ा था वह। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और आधुनिक सिंचाई प्रणाली किसान के काम ला आसान बना दे हवे। फिर बदलाव के बीच हमार सांस्कृतिक मूल्य घलो बने रहना चाहिए। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन होना बहुत जरूरी हवे। नई पीढ़ी ला तकनीक सीखना चाहिए, फिर अपन संस्कृति ले जुड़ाव घलो बनाए रखना चाहिए। आज के युवा मन गांव छोड़ के शहर की ओर बढ़त हवे। ये स्वाभाविक बात आए, फिर खेती और संस्कृति ले दूरी बनाना ठीक नहीं है। युवा मन अगर खेती में नवा तकनीक, नवाचार और वैज्ञानिक सोचला लेकर आई तो खेती और मजबूत हो सकती। संगी हो, खेती किसानी सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि हमार संस्कृति, हमार पहचान और हमार गौरव आए। खेती ले हमार पेट भरती और संस्कृति ले हमार मन। जैसे खेत में बीज बोए बिना फसल नहीं मिले, वैसे संस्कृति के संरक्षण बिना समाज के विकास अधूरा रही थी। आओ हम सब मिलके खेती के सम्मान करो, किसान के सम्मान करो और अपन संस्कृति के संरक्षण के संकल्प लेवो। आगू आओ वैसने आप मन तीरा गोठियाए बर मिलबो। सादर जोहार। संगी हो, खेती किसानी और हमर संस्कृति क्रम संस्कृति के महक में अभी आप में सुनत रहे हो दीपमाला तिवारी के सुघर वार्ताला।
4: दामिनी,
3: हाँ,
4: खेती किसानी और हमर संस्कृति के बारे में तो बड़ सुघर वार्ता सुन डारे।
3: हाँ,
4: अब चलना संगी मनोरंजन खातिर सुन लेथन ए सुघर गीतला।
3: हाँ संगी।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला जिलापन स्वर में सजारे से लता खापड़े हा।
1: और सुने बर चाह रही हमारे संगवारी मन रिसाली भिलाई ले दुखुराम साहू, हेमा उत्तम उर्वशी अलका सेजल साहू, सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ ले गुनीराम राजपूत, संतोषी हेम प्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बुढ़ादेव पारा लुकाउपाली छतवन ले नीतू जीतू रिया जया राहुल युवराज सिंह सूर्यवंशी मन, पलारी छत्तीसगढ़ ले नीलेश नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग लखनलाल देवांगन मन, पहंदा पलारी ले नीतीश कुमार ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन तनुजा बाई देवांगन मन, अड़ार नांदघाट ले हमर संगी है माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा, हमर संगी है भंवरपुर बसना ले चंपा देवांगन, राधे श्याम देवांगन, राजू जगदीश देवांगन, भाटापारा ले बच कामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु चोवाराम वर्मा, अब्दुल मजीद कुरैसी, रेहाना बेगम मन, हमर संगवारी है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ ले चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा मन, हमर संगी है जवाहर नगर दुर्ग ले आर सी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, हमर संगी है बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ले बसकरण बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद बंटी बबली वर्मा मन, हमर संगी है ग्राम ढोड़ी घोटिया जिला मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, कुमारी पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद मन, हमर संगी है हिंगोली महाराष्ट्र ले साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे मन, हमर संगी है बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, हमर संगवारी है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, हमर संगवारी है नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा मयंक वर्मा, हमर संगवारी है मेघापारा रे राम कुमार पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु दिव्या, दीपांजलि दीपक, टेक लाल पटेल मन।
2: तृप्ति, किसान हा मेहनत के बूता है, और ओखर ही मेहनत ले ओखर मन के खान पान घलो बने रहते ना।
1: सितोन संगी, किसान हा रात के बाचे भात मा पानी डार के रख देते, और बिहनिया उला गोंदली या मारी भाजी और चटनी के संग खाते।
2: तोर गोट ला सुन के मोर मुंह में पानी आ गए। यही मेहनत हा अपन थकासी ला दूर करे बर, मन ला रिझाए बर ददरिया सुवा और कर्मा के गीत ला सुनते।
1: तावो संगवारी हो, यही गोट बात संग इस सुघर गीत के मजा लेथन।

0: संगवारी हो, अभी आपन सुनत रहे को सुघर अकन माटी के गीत ला, जिला अपन स्वर में सजा रही से विदुषी ममता चंद्रा कर।
1: अब सुने बर चाह रही हमारे संगवारी मन कर्मा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत निशांत साहू, दतरंगी भाटापारा ले नोखीलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेन्द्र साहिल चंद्राकर, खमरिया ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार मन, धरसीवा ले हमर संगवारी मन है छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरैसी। हमार संगवारी मन है दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ राजेश्वरी, आस्था यादव, अनुराग अभिषेक, डुग्गू कान्हा यादव मन। हमार संगवारी है सिंगारबाड़ी घुटकुले भगत राम पटेल, किसान सोनम, मानवी पटेल। हमर संगी है बंगला मटिया बालोदले शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। परसरटोला जिला अंबागढ़ चौकी ले संगी है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुसारनी मसिया, खुमेंद्र मसिया मनहा। सौंगा मगर लोडले हमर संगी है फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र चंदन, हेयास कुमार चंदन मन। खैरागढ़ राज लालपुर ले संगी है मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा नेहा, यीशु भीमटे। हमार संगवारी है चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, पुतकी कला कवर्धा ले हमार संगवारी है राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर, नयन, सुमांशु पांडे मन। हमार संगवारी है डोंगर गांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिस्का और तन्मय गजभिये। हमार संगी है पथरिया भरे वाले चंदूला सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल मन।
2: तृप्ति,
1: हाँ,
2: तुम्हार डहार बरसा आने की तैयारी हो गए?
1: हाँ दामिनी, उही तैयारी चला थे।
2: हाँ।
1: घर में खपरा लहुटाई।
2: हाँ।
1: फिर टार वो मोला तो बड़ परेशानी घलो लाग जाते।
2: तोला का परेशानी होती तृप्ति?
1: बनिहार आहे दुझन।
2: हाँ।
1: जतेक के दूठन खपरा नहीं लहुटही ना।
2: हाँ हाँ।
1: ततेक के घेरी बेरी मोला चाह मांगते।
2: ओहो, तोर घर के एक किलो शक्कर ला उरका दी का तृप्ति?
1: देखना दामनी।
2: हाँ।
1: और ज्यादा गुठिया देबे।
2: हाँ हाँ।
1: ते हा चुप्पे रहा, बड़ पुचुर पुचुर मारथस कही देती।
2: हाँ संगी, तहू बने कहा थस, बेरा देख के बोले बर पड़ते।
1: हाँ दामिनी।
2: हाँ?
1: फिर चाहा हा घलो हमर पहुना के सम्मान के चिन्हारी आए।
2: हाँ हाँ।
1: तेकरे सेती खुशी खुशी बना देता हूँ।
2: बने हैं तृप्ति, गोट बात ला आगू बढ़ावा, चल सुनथने गीत ला।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला, जिला अपन सर में सजाए रही से भूपेन्द्र साहू और पुष्पलता कौशिका।
1: और सुने बार चाहरीन हमारे संगवारी मन छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा मन।
0: तृप्ति मानथो की आज तकनीकी जमाना आए,
1: हाँ।
0: फिर अपन चिन्हारी ला घलो संजो के रखना हमरे बुताए, कैसे
1: बने कहा था संगवारी,
0: हाँ।
1: तेखरी सेती तो कही था दामनी,
0: हाँ।
1: माटी के घलो मितानी रख, पक्की घर संग मा कच्ची के निशानी रख, कैसे
0: सिरतोन मा,
1: हाँ संगवारी। अब चल इही सुघर भाव संग में सुनथन ए सुघर गीत ला।

0: संगवारी अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला जिला पंसौर में सजारे से लक्ष्मण मस्तूरिया है।
1: और सुने बर चाहरीन हमारे संगवारी मन हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू, जितेंद्र, दिलीप, प्रवीण, पायल, लक्ष्मी, गीतांजलि, आकांक्षा, पार्वती, टिकेश्वरी, नागेश्वरी और तुलसाराम साहू है।
0: तृप्ति,
1: हाँ,
0: संगी मन से गोट बात करत करत कब बेरा पहा जाते पता नहीं चले, है ना। तो जाए के पहले काली के कार्यक्रम, काली के कार्यक्रम आप मन सुनो हिंदी में, जिसमें आप मन सुनो वार्ता और कवाली। तो संगी हो, स्वस्थ रहा, मस्त रहा और अपन स्वास्थ्य ला बने रखत रहो, यही गोट बसंग अपन संगवारी दामनी से ला
1: तृप्ति भारती हमर दोनों संगवारी ला दौबी दा
0: नमस्कार।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
5: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।

0: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार वित्त बछर 2026-27 मा ग्रामीण क्षेत्र मा 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा और आम मनखे मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले प्रदेश भर मा नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाथे। और शक्ति जिला के फगुरम चौकी पुलिसा आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार वित्त बछर 2026-27 मा ग्रामीण क्षेत्र मा 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहल मा अवैया ग्रामीण क्षेत्र मा सड़क के निर्माण बर 18,900 करोड़ रूपया ले ज्यादा आवंटित करे गए है। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के प्रगति के आकलन करे बर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल के अध्यक्षता मा उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के संग आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आने राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मनहा भाग लीन। ए दौरान राज्य ला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन मा अवैया लंबित परियोजना मा सरलक काम करे के निर्देश दे गए है। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत काली 17 जून ले रावघाट रेलखंड मा नियंत्रित गति और सीमित भार के संग तकनीकी ट्रायल शुरू करेगी। ए ट्रायल आने आने चरण मा आगू भी जारी रही। ए दौरान रेल लाइन के परिचालन के क्षमता सुरक्षा और तकनीकी मानक के परीक्षण करे जाही। करीब 95 किलोमीटर लंबा दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना ला सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयास ले विकसित करे जाते। युवा और आम मनखे मन ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले काली 17 जून ले प्रदेश भर मा नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगारहा मंत्रालय मा आयोजित कार्यक्रम मा अधिकारी और कर्मचारी मन ला नशा मुक्ति के शपथ दिलाईन। ओ मनहा बतायन कि ए बछर नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत के पहचान थीम मा सप्ताह भर आने आने गतिविधि के आयोजन करे जाही। 26 जून तक चलैया नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज और आने शैक्षणिक संस्था मा सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित करे जाते। उन्हें स्वास्थ्य विभाग डहल ले नशा छोड़ चुके मन के मन के प्रेरणादायक सफलता के कहानी के प्रचार प्रसार करे जाते। एकर अलावा महिला और बाल विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग डहल ले मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधि के आयोजन करे जाही। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार के अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान पर गठित राज्य स्तरीय समिति के बैठक हुई। बैठक में राज्य के हरेक विकास खंड के 1,000 ले ज्यादा जनसंख्या वाला नवा ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। समिति हा नशा पीड़ित मनखे मन के पुनर्वास बर संचालित 15 बिस्तर वाला एकीकृत पुनर्वास केंद्र के क्षमता 15 ले बढ़ा के 50 बिस्तर करे के सुझाव दिन। संगे संग 5 जिला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा मा नवा नशा मुक्ति केंद्र खोले के निर्णय लेगी। प्रदेश में कुपोषण के समस्या ला दूर करे बर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण ला जन आंदोलन के स्वरूप दे के आह्वान करे है। श्रीमती राजवाड़े हा सबो जनप्रतिनिधि मन ले वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोत के तीर्थखार, ग्राम पंचायत परिसर, सार्वजनिक जगह और हितग्राही मन के घर मा मुनगा के पौधा लगाए के आग्रह करे है। ओमन हा सबो मन के मन ले ए अभियान मा सक्रिय भागीदारी निभा के सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण मा योगदान दे के अपील करीन है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास करके अनोखा रिकॉर्ड बनैया चारू पांडे लेगी साक्षात्कार के प्रसारण आज रतिहा 8:15 मा करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार को थी। सक्ती जिला के फगुरम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत करीब 1,45,00,000 रुपया बताए जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर हा बताए इनकी मुखबिर ले मिले सूचना के आधार मा पुलिस हा नाकाबंदी करके गाड़ी के जांच करीन। ए दौरान पुलिस हा ओडिशा ले राजस्थान ले जावत गांजा ला एक ट्रेलर ले बरामद करीन। आरोपी मन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करे गए है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम हा काली प्रदेश की टीम आने आने जिला मा दबिश दे के भ्रष्टाचार के मामला मा 3 लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। ACB के टीम हा काली भिलाई नगर निगम ले सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ला भ्रष्टाचार के एक मामला मा हिरासत मा लीन। एकर अलावा धमतरी मा विद्युत यांत्रिकी विभाग मा प्रदस्त प्रोग्रेस मैन ला 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करीन। उहे ACB हा जशपुर नगर मा RES विभाग के SDO ला घलो 25,000 के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली गरियाबंद जिला ला 603,46,00,000 रुपया ले ज्यादा के विकास काम के सौगात दिन। पुलिस परेड ग्राउंड मा आयोजित कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री हा 76 विकास काम के लोकार्पण भूमि पूजन और शिलान्यास करीन। एमा सड़क सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षा पानी और बिजली ले जुड़े काम शामिल है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस मा राज्यपाल रमन डे का हा आज लोकभवन मा उखड चित्र मा फूल चढ़ा के ओमल्ला नमन करीन। ए अवसर मा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल के संग लोकभवन के आने अधिकारी कर्मचारी मन हा घलो रानी लक्ष्मीबाई ला श्रद्धांजलि दीन। कोरिया जिला के कलेक्टर रुक्तिमा यादव हा एक आदेश जारी करके महलापारा बैकुंठपुर नौगई के संग भाजपा नेता भरत सिंह घरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरा मा धारा 163 लागू कर दे है। जारी आदेश के अनुसार कोनो भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामान पाए जाए मा कड़ा कार्रवाई करे जा। एकर अलावा ए क्षेत्र मा जुलूस धरना प्रदर्शन और आम सभा मा प्रतिबंध लगाए गए है। जिला दंडाधिकारी हा स्पष्ट करे है कि ये आदेश ओ शासकीय कर्मचारी अधिकारी ऊपर लागू नहीं हुई जेन मन हा अपन शासकीय दायित्व के निर्वहन करे बर लाठी या शस्त्र राखे के जरूरत होते। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मन ला इस संवेदनशील क्षेत्र मा लगातार निगरानी राखे और कोनो भी अप्रिय स्थिति ले निपटे के निर्देश दे गए है। जानबा के मुताबिक कोरिया जिला के कटगोड़ी गांव मा भाजपा नेता के संग 3 लोगन के मौत के मामला मा पुलिस हा 4 लोगन मन ला गिरफ्तार करे है। लोरमी मा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा कहिन है कि महाराणा प्रताप के जीवन साहस स्वाभिमान और राष्ट्र के भक्ति के अमर मिसाल है। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ला आधुनिक और उद्योग के लायक बनाए जाते। योजना के तहत छात्र मन ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI और ड्रोन जैसन नवा तकनीक के प्रशिक्षण दे जाही। संगे संग पुराना मशीन के जगह मा आधुनिक उपकरण डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम के सुविधा उपलब्ध कराए जाही। मुख्य सचिव विकास सिल की अध्यक्षता मा मंत्रालय मा आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति के बैठक मा पीएम सेतु योजना के प्रगति के समीक्षा करेगी। राजधानी रायपुर मा पहली बार ईस्टर्न स्लैम के आयोजन करे जाही। एकर तहत 22 ले 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित एक्सक्वेस कॉम्प्लेक्स मा प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। इमा सिंगापुर के संग भारत के 21 राज्य ले लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लेही। प्रतियोगिता बर 2,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार राशि निर्धारित करे गए है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव हा बिलासपुर के भतराई राज्य खेल प्रशिक्षण के निरीक्षण करीन। ए दौरान ओमन हा निर्माण काम के प्रगति ऊपर नाराजगी जताइन। ओमन कहीन कि खिलाड़ी मल्ला अच्छा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है और एमा कोनो भी प्रकार के लापरवाही स्वीकार नहीं करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक फेर। केंद्र सरकार वित्त बछर 2026-27 मा ग्रामीण क्षेत्र मा 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा और आम मन के मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डाल ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। सक्ती जिला के फरगुम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्याः वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिसनगरे प्रमुखैः फ्रांसदेशीयैः वाणिज्यनेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीयमेलनानि कृत्वा वीवाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणाय 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजयति केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायै सर्वान् सम्बन्धान् अधिकारिणः जागरूकाः भवेयुरिति निर्दिष्टवान् अमेरिका ईरान देशाभ्याम् आगामि 6 दिनपर्यन्तं व्यापकशान्तिसन्धिवार्तायां सहमतिः प्रकटिता अपि च न्यूजीलैंडदेशे FIH महिला नेशन्स् कप् इति हॉकीस्पर्धायां भारतदलम् उरुग्वेदेशं 3-2 इति अन्तरालेन विजित्य उपान्त्यचक्रं प्रविष्टम् अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणः भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्यनेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीयमेलनानि कृतानि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आल्स टोम संस्थायाः मुख्यकार्यकारी अधिकारिणा मार्टिन सियोन इत्यनेन सह मिलितवान् सामाजिकप्रसारमाध्यमे विदेशकार्यमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आल्स्टोम् इत्यस्य मुख्यकार्यकारी अधिकारिणः च मध्ये आयोजिता चर्चा मोबिलिटी इति अथ रेल आधुनिकीकरणस्य अवसरेषु केन्द्रिता आसीत् प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्यकार्यकारी अधिकारिणा च आर्थर मेन्स इत्यनेन सह अपि मिलितवान् सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिकव्यवस्थायाः अवसराणां विषयेऽपि अवधानं दत्तम् प्रधानमन्त्री मोदी सायंकाले फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमेन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह वीवाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति सः शिखरसम्मेलने उच्चस्तरीयसंवादानां शृङ्खलायाः नेतृत्वं करिष्यति यस्य परिसमाप्तिः बहुप्रतीक्षितेन मुख्यभाषणेन भवन्नस्ति यस्मिन् भारतस्य खंस्पर्शिनं वैश्विक डिजिटल पदचिह्नं प्रकाशिते वीवाटेक शिखरसम्मेलनं यूरोपदेशस्य बृहत्तमं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इति आयोजनम् अस्ति यत्र मोदी भारतस्य वर्धमानं नवान्वेषणात्मकं पारिस्थितिकव्यवस्थां प्रौद्योगिकीयप्रगतिञ्च प्रकाशयिष्यति इत्यपेक्षते वीवाटेक शिखरसम्मेलनस्य अस्मिन् संस्करणे भारतस्य बृहत्तमं राष्ट्रियमण्डपं भविष्यति यः भारतीय यूरोपीय नवान्वेषणव्यवस्थायाः मध्ये सहभागित्वस्य अपारसम्भावनायाः उपयुक्तं प्रतीकं भविष्यति प्रधानमन्त्री विशेषप्रवासीनां कार्यक्रमे भारतीयसमुदायस्य सदस्यान् अपि सम्बोधयिष्यति केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणं करिष्यति ग्रामविकासमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्री ग्रामसडकयोजना तत्सम्बद्धग्रामीणसम्पर्क उपक्रमाणाञ्च अन्तर्गतं ग्रामीणमार्गाणां निर्माणार्थम् 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति ग्रामीणमार्गसम्पर्कपरियोजनानां प्रगतिमूल्याङ्कनं कर्तुम् उच्चस्तरीयसमीक्षासभा आयोजिता राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः 5-दिवसीययात्रां प्रारब्धवती यात्रायाः प्रथमदिवसे सा बैतूलनगरम् अगच्छत् यत्र प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थया आयोजिते आध्यात्मिकजागरणेन जनजातीयसमुदायानां सशक्तीकरणम् इति कार्यक्रमे तस्याः सहभागिता अभवत् राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् जनजातीयसमुदायानां सशक्तीकरणार्थम् आयोजितम् इदं सम्मेलनं केवलम् अस्य क्षेत्रस्य न अपि तु सम्पूर्णदेशस्य समाजस्य च हिताय महत्त्वपूर्णम् अस्ति सा श्वः ओडिशाराज्यं प्रस्थास्यति प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रविवासरे निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः सज्जता मूल्यांकनाय समायोजितायाः उच्च स्तरीय समीक्षा सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां मंत्री परीक्षा प्रक्रियायां सत्यनिष्ठायाः पारदर्शितायाश्च उच्चतम मानकानां अनुरक्षणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये संधिज्ञापनं प्रभावी जातं, येन चतुर्मासीय प्रत्यक्ष संघर्षः तत्कालरूपेण विरमितः। उभौ देशौ आगामि षष्टिदिनपर्यन्तं व्यापक शान्ति संधिवार्तायां सहमतिं प्रकटितवन्तौ। चतुर्दशसूत्रीय संधिपत्रे युद्धविरामस्य शत्रुतापूर्णक्रियाणाञ्च परित्यागस्य प्रावधानम् अस्ति। अत्र ईरान देशस्य परमाणु कार्यक्रमः क्षेत्रीय सुरक्षा संबद्ध विषयाः अपि चर्चायाः अंतर्गताः भविष्यन्ति। कलकत्ता उच्च न्यायालयेन अद्य पश्चिमबंगस्य विधानसभायाः अध्यक्षस्य रथीन्द्र बोसस्य विधानसभायाः विपक्ष नेत्री रूपेण विच्छिन्नस्य तृणमूल कांग्रेस पक्षस्य विधायकस्य ऋतव्रत बनर्जी इत्यस्य नियुक्तेः निर्णय विषये कापि अंतरिम आश्वस्तिः दातुं निराकृतम्। टीएमसी विधायकेन शोभनदेव चट्टोपाध्याय इत्यनेन स्वस्य नामांकनस्य निराकरणं बनर्जी इत्यस्य नियुक्तिश्च याचिकायां प्रश्नीकृता आसीत्। वादश्रवणकाले न्यायमूर्तिः कृष्णरावः अध्यक्षस्य निर्णयं स्थगयितुं निराकृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहल्यां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रमरोजगारमन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयाः अवदत् यत् गतवर्षस्य ऑगस्ट मासात् आरभ्य 63,00,000+ कर्मचारिणः PMBVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति। येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः अपि सन्तीति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिक धरोहरस्य संरक्षणं संवर्धनञ्च नवोत्साहेन वर्धमानम् अस्ति। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् विरासत भी विकास भी, विरासततः अपि विकासोपि इति दृष्ट्या प्रेरिताः प्रयासाः जनान् भारतस्य सनातनपरम्पराभिः पुनः संयोजयन्तीति। आगामिषु 4-5 दिनेषु तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्येतेषु केषुचित् भागेषु नैऋत्यप्रावृष्टिः अग्रेगमनाय परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अवदत्। ऋतुविभागानुगुणम् असम, मेघालय, उपहिमालयीय पश्चिमबंगक्षेत्रं, सिक्किमराज्येषु च अग्रिमेषु 4 दिनेषु महतीतः अतिमहती वृष्टिम् अन्ववर्तितुं शक्नोतीति अनुमन्यते। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः। FIH महिला नेशन्स् कप् हॉकी स्पर्धायां भारतदलम् उरुग्वे देशं 3-2 इति अन्तरालेन पराजितवत्, उपान्त्यचक्रं प्रविष्टञ्च। अयं भारतस्य निरन्तरं तृतीयः विजयः अस्ति। तिसृषु स्पर्धासु विजयं प्राप्य भारतदलं पूल ए इति मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तवत् तथा उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। उपान्त्यचक्रे भारतदलस्य सामुख्यं चिली कोरिया देशयोः मध्ये भाविना स्पर्धायाः विजेतृदलेन सह भविष्यति। फीफा विश्वचषक क्रीडायाम् अद्य रात्रौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य अटलांटा क्रीडाङ्गणे ग्रुप ए क्रीडायां चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ 9:30 आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ 12:30 ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्वचषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज कलाकार हैं मुन्ना लाल पाल और साथी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: लोक संगीत में लीजिए सुनिए मुन्ना लाल पाल, तुलसी शर्मा, विमला निषाद और जनक यादव के स्वरों में एकता गीत।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ल तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: लोक संगीत में अभी आप मुन्ना लाल पाल और साथियों को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रूपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल हुए। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत कल 17 जून को रावघाट रेलखंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। ये ट्रायल विभिन्न चरणों में आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान रेल लाइन की परिचालन क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाएगा। करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना को सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयासों से विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में रावघाट स्टेशन भवन, यात्री सुविधाओं तथा सिग्नलिंग और दूर संचार से जुड़े कार्यों को

0: नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम पर सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 26 जून तक चलने वाले नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 1000 से अधिक जनसंख्या वाली नई ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया। साथ ही 5 जिलों मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा और कोरबा में नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरिया जिले की कलेक्टर रोकतिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महलपारा, बैकुंठपुर, नौगई के साथ भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जुलूस, धरना प्रदर्शन और आमसभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए लाठी अथवा शस्त्र रखने की आवश्यकता होती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सक्ती जिले के फगुरम चौकी पुलिस ने आज 2 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,45,00,000 रुपए बताई जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे गांजे को एक ट्रेलर से बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं ACB ने जशपुर नगर में RES विभाग के SDO को भी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज रात 8:15 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर राज्यपाल रमेश डेका ने

0: आज लोकभवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित लोकभवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603 करोड़ 46 लाख रूपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया है। श्रीमती राजवाड़े ने सभी जनप्रतिनिधियों से वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोतों के आसपास, ग्राम पंचायत परिसरों, सार्वजनिक स्थलों तथा हितग्राहियों के घरों में मुनगे के पौधे लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। लोरमी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी 23 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जांजगीर चांपा जिले के कोड़ाभाट गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म एयरलिफ्ट में अरमान मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार को गीत के बोल कुमार के और संगीत अमाल मलिक का।

लीजिए अब सुनिए रमैया वस्तवैया। इस फिल्म में आतिफ असलम और श्रेया घोषाल को गीत के बोल प्रिया पांचाल के और संगीत सचिन जिगर का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए ऐश किंग, क्लिंटन सरजो और शब्बीर अहमद को फिल्म बॉडीगार्ड में गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम तेजेश्वर। अब संगे संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मना घलो हमर दुनो के
0: राम राम, राम।
1: गजब दिनो संग्रह तेजेश्वर है ना।
0: हाँ दीदी देख।

0: सही बात कहे सब बने बने दीदी
1: बनेज बने है भाई बनेज बने में भेंट घाट होते
0: और देख दीदी अभी कहात रहे बने दिन में सकला संग्रहण की के तो का करबे ऐसा हावे कि कतको कन जो बूता काम है तेमन सिरावे नहीं और वही मौसम ला घलो देख ले फिर बेरा रहत ना दीदी जब काम बूता ला करथन ना तो वह बड़ घलो को अच्छा होते और नहीं तो फिर हमन घुरा जाथन
1: हाँ काम रही जाते तो रही जाते है ना बात तो एकदम सही है तेजेश्वर और देख काम जो है ना तेजेश्वर चाहे हम माई लोगिन मन कहूँ घरोधी बात करन तो घरोधी बूता हुआ है चाहे बाहर कोनो कमाएल जावत हन है या फिर खेती की बूता हुआ है ना तो कोनो भी काम हुआ है वो बेरा में कर लेबे तब बने रहते है ना
0: और देख दीदी काम तो करे बर पड़ी चाहे घर परिवार चलाना है और जिम्मेदारी हवे तो फिर बूता काम तो रहते और कमाबे नहीं तो खाबे काला घलो ऐसे हो जाते हैं
1: खाबे काला और खवाबे काला है ना और तेजेश्वर देख घर परिवार के जिम्मेदारी के संग में ना समय परिस्थिति देखत अब आज जो है लोगन एक काम संग लगेली है दूसर काम घलो करत है काबर की बढ़त खर्चा है और बढ़त शौक साध है तो सबो पूर्ति करना है तो मनखे ला आमदनी ज्यादा चाहिए पैसा ज्यादा चाहिए है ना तेकर बर एक दू काम करते है ना
0: और देख दीदी इसने जो खेती है ना बोला किसानी जब हमन करथन तो खेती के संगे संग जो लगे या लिहे जोन व्यवसाय हवे ओकर से जोन डिगर व्यवसाय कहना मन हा ओमा हमन चाहे फसल लेवन चाहे ओ आने कोनो भी खेती करन पशुपालन है ओमन ला करथन ना तो ओ बड़ के लाभ के होते हो
1: आमदनी मिलते है ना तभे तो वही कहे ना एक के काम में काम नहीं बने तब ओकर से लगे लिए कोनो भी व्यवसाय है कोनो बूता है कोनो काम है ओला करबे तभे पूरा परिवार के जो है पूर्ति होते है ना जरूरत के पूर्ति होते और देखते जे सर अब तो वही किसानी दिन आ गए है ना और किसान जो है एखर जोखा पहली कर डारते और कर डारे है देख जैसे कि अब गहिर जुताई है खेत की गहिर जुताई या फिर नींदा निकालना है या फिर मेड़ पार मरम्मत है वो माटी के जांच होते बीजा है खातुक व्यवस्था है ये सबो काम ला जो है पहली ले समय राहत कर लेते है ना बस अगोरा रहते तब बरसा बरसे के है ना
0: देख दीदी किसान के जन तैयारी है ना वो तो रहते तब तभो फिर हमन देखन तो काम जो है सही बेरा में हो जाते ना तो बड़ लाभ के होते
1: सही बात
0: तो सही बेरा रही तो फिर बने काम हो ही बेरा राहत काम हो ही कथे गलो की भाई डारा के चुके बेंद्रा और समय के चुके किसान
1: बिल्कुल
0: एक चूक हर पूरा बूता काम लो
1: पछवा देते वैसे ही पाए के देख तेजेश्वर हमारी है ना अभी जो उन्हें खरीफ मा वैसे तो ज्यादातर धान के लगाते हैं फिर अब तो हर प्रकार के फसल लेवत है और किसान संगवारी मन जो ये सब लगाते हैं फिर कुछ फसल जो है साल के 12 महीना लेते है ना मौसम के हिसाब ले बोई हुआ थे अब जिसे देखे बात मक्का खेती के है ना तो जिसे मक्का खेती है तो साल में तीनों मौसम में करे जाते और जिसे खरीफ है रबी है या जायद है जैसे गर्मी है तो खरीफ के जो मक्का है ना तो खरीफ के मक्का बुआई बर अभी जो जून और जुलाई के समय ला सही कहे जाते है ना
0: और यही बेरा में अगर कहूँ ना दीदी हमन हाँ बने ढंग ले जोताई करके एकर खेती कर ले वन तो बड़ लाभ के होते
1: बिल्कुल
0: मक्का के जन कहात नहीं दीदी जोंधरा के जन खेती है ओकर अच्छा उत्पादन हमला लेना है तो ओकर बर जलवायु अच्छा होना घलो जरूरी हवे
1: बिल्कुल
0: घाम थोकन रहा है मध्यम वर्षा होए और सबले ज्यादा अभी की सरकार ऐसे है कि धान के छोड़ आने जोन फसल है ओला लेवा थन दलहन तिलहन ले थन
1: ओला
0: बढ़ावा घलो देते प्रोत्साहन राशि घलो देता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक ले हमन हाँ लाभ घलो ले सकथन प्रोत्साहन राशि घलो लाभ ले सकथन हमर फसल बदलही तो फिर माटी घलो सुधार होही हमर आने फसल हमन ला मिलही
1: फसल चक्र ला अपनावे तो जो माटी में जो भी पोषक तत्व रहते ओकर बरोबर भरपूर सदुपयोग हो जाते है ना और देख तेजेश्वर का है कतकन जो खेती में कतेक उन्नत तकनीक आ गए है ना जेकर उपयोग करत किसान जो है फसल के अच्छा पैदावार लेते है ना और वैज्ञानिक जो तरीका ले खेती करके फसल के उपज बढ़ाए के सोचते और वो समय आज के जो समय है वो खर हिसाब ले ही है ना तो जिसे मक्का के खेती के जिसे बात करत रहे ना वैज्ञानिक खेती के तो मक्का के अच्छा पैदावार ले पर जैसे कि ते बताएस ना कि जलवायु अच्छा होना चाहिए वही रिकीम ले उन्नत और प्रमाणिक बीज के चुनाव करना जरूरी है नी।
0: रोग रोधी किस्म हो हाँ। रोग राई कम हो हाँ। और उत्पादन हमला ज्यादा मिले
1: अच्छा होना चाहिए है नी। और इसने है देखा कतार से कतार के जो सही दूरी है माने कतार वार बुआई करना चाहिए और कतार से कतार के दूरी जो है वो सही ढंग से होना चाहिए वो रिकिम बुआई करना चाहिए। और इसने है देख संतुलित जो पोषण होते पोषक तत्व होते ओकर प्रबंधन करना जो है बहुत महत्वपूर्ण होते।
0: बीजहक जिसे बात करत रहे दीदी तो एक ठनो मऊ बात कहूँ कि भाई हमन किसान संगियन हमला उत्पादन जरूरी हवे
1: बिल्कुल
0: तो उत्पादन हमला तभी मिली जब हमर क्षेत्र हमर जन जगह हवे हमर जन खेती किसानी के जन मौसम है या जलवायु जो हिसाब ले हावे ओकरे हिसाब ले अगर कहूं किस्म चयन करबो
1: हाँ।
0: तभी उत्पादन हमला बने मिली
1: अच्छा वही प्रजाति हाँ। के हम जो बीज के चुनाव करन
0: काहे कतको बेरा देखथन आने राज्य में हो या मक्का के बीज है वहाँ हमन कहूं गेन या हमर कोनो आने संगी साथी मन बतेन कि वहाँ अच्छा उत्पादन होइस कहके हम मन सोचथन कि चल हमरो यहाँ हो जाएगी के
1: तो वही प्रजाति है यहाँ काम नहीं करे
0: तो हमन कृषि विशेषज्ञ ले पूछन सलाह लेवन का जिनिस हमारा कौन सा जन किस्म है वो हमर बल ज्यादा लाभ के
1: ज्यादा अच्छा थे वैसे
0: भी पूछ परख करके कहूं हमन हां बने ढंग ले अगर बीजा अगर लगाबो तो हमन ल उत्पादन घलो बने दीही
1: बिल्कुल सही कहे। देख हां
0: जोन खेती के जन समय हमने दीदी ओमा जून जुलाई के है तो हमन हा 10 किलो जन बीजा है ऊपर प्रति एकड़ जन होते ओमा हमन हा लगा सकथन संग में कतार के दूरी है हमन हा
1: कतार के कतार से कतार के दूरी है पौधा से पौधा दूरी है और जो जमीन में बीजा जो डालना है ओकर गहराई है वो सबको ध्यान देल पड़ते है। और फिर एक बात यू है ना तेजेश्वर की मक्का फसल बना सही मात्रा में खाद जल निकासी वाले उपजाऊ माटी की जरूरत होते है ना। और इसने मक्का ला जो है ना उथला खेत में लगाना चाहिए काबर कि नीचे खेत में कहूँ लगा देवे फसल ला तो जल भराव हो जाते है ना ओखर ले फसल के नुकसानी हो जाते। तो देख खेत ला बरोबर समतल करके एक बार बने गहिर जुताई करके और बने ओमा दो तीन ट्राली बने सड़े हुए गोबर खाद ला माटी मिलाना चाहिए। तो ऐसा ढंग ले उन्नत बीज किस्म के प्रमाणिक और अच्छा प्रजाति के हाइब्रिड बीज जो होना चाहिए एकर ले काहे जो है मक्का के फसल जो है वो अच्छा मिलते। देख आगू गोड़ बताओ करबुन तेजेश्वर अभी सुनथनी संदेश।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा
4: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है तुरते आओ पूरा जांच कराओ
3: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी
4: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर।
5: बदलो बदलो आदत बदलो
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
5: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: अब बेरा है तेजेश्वर किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: दीदी
1: हाँ?
0: अभी खरीफ के मौसम है
1: हाँ?
0: और हमन जब देखथन कतको कन हमार बकरी बारी है वो मन खाली रहते
1: हाँ?
0: या आने जन जगह है वो मन हमन उपयोग कर सकथन मेड़ है खेत के
1: हाँ?
0: या हमार जोन ऊपरी खेत है वो मन के उपयोग कर सकथन
1: हाँ?
0: और जोन कंद वाला फसल है जेमा हल्दी है अदरक है इकर मन के खेती कर सकथन
1: हाँ?
0: हमन दीदी आज के जोन सलाह क्रम है ना
1: ओमा
0: हल्दी और अदरक के वैज्ञानिक खेती ये बारे में आज जानबो।
1: अच्छा
0: हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी
1: एमन
0: हा विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उद्यानिकी में उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी मा इकर सन गोड बात करे पूजा चंद्रवंशी हर
2: संगी हो। अभी खरीफ फसल के तैयारी शुरू हो गए हैं जेमा खेत के गहरी जुताई खातू पालन नर्सरी के तैयारी ये सब शुरू हो गए हैं। फिर हमर विशेषज्ञ मन एकर संगे संग फसल चक्र बर दूसर फसल घलोक लगाए बर बोलते जैसे साग भाजी मक्का हल्दी अदरक असन फसल लगाए बर बोलते त इही क्रम मा आज जानबो कि खरीफ फसल मा धान के अलावा हल्दी अदरक के खेती कैसे करे जा सकत है त ये विषय मा जानकारी दे बर आए हमर स्टूडियो मा हमर विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी ले। सबले पहले तो राम राम स्वागत है आपन के हमर कार्यक्रम में।
3: राम राम।
2: सबले पहले आपन बताते हो कि जैसे अभी हमर किसान भाई मन खरीफ फसल में धान लगाते और लगाते मक्का साग भाजी सबो लगाते ता इही मा हम धान के अलावा हल्दी और अदरक के खेती कैसे कर सकत हन का एमा हल्दी अदरक लगाना अभी सही हुई कि सिर्फ धान की ही फसल लेना सही है एला विस्तार ले बताते हो।
3: जी किसान भाइयों हल्दी और अदरक ऐसी फसल है जिसे हम धान के अलावा ये हम बरसात के सीजन में हम इसको लगाते हैं जिसमें अधिक जल मांग वाली जो फसल है ये हम इसे लगाते हैं हल्दी और अदरक को। तो ये जो है हम या तो फसल चक्र परिवर्तन के रूप में हम धान के अलावा इसे लगा सकते हैं या फिर जिस खेत में हम धान लगाए हैं अगर वहां की मेड़ अगर चौड़ी है तो उस जगह में भी हम हल्दी और अदरक की खेती आसानी से हम कर सकते हैं।
2: भैया आपने बताया कि धान के अलावा या धान के संगे संग बोल सकते हैं अगर हम धान खेत में लगावा था तो खेत की मेड़ अगर चौड़ा ही तो लगा सकते
3: हाँ।
2: यहू बताते हो डॉक्टर साहब कि मैं जलवायु भूमि और माटी के चुनाव कैसे कर सकते हैं।
3: जी ये हल्दी और अदरक लगाने का जो सही समय जो होता है वो हम एक तो अप्रैल से जून के महीने में हम इसे लगा सकते हैं या कह सकते हैं हम इसे गर्म या नम जलवायु जहाँ की होती है वहाँ हम हल्दी और अदरक आसानी से लगा सकते हैं और जहाँ वार्षिक वर्षा जिसको हम बोलते हैं वो 1200 mm के आसपास हो ऐसे जगहों में हम आसानी से लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है भूमि की तो जहाँ की भूमि भुरभुरी हो जिसमें हमारा कंद अच्छे से विकसित हो ऐसी भूमि में हम आसानी से हल्दी और अदरक की खेती कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब हल्दी और अदरक पर खेत की तैयारी और बीज के जो उपचार है बहुल करे पड़त हुई तो ओला विस्तार ले बताती हूँ कि कौन प्रकार ले हम ये कर सकते हैं।
3: जी किसान भाइयों खेत की तैयारी करना सभी फसल के लिए एक तो महत्वपूर्ण भाग होता है। हल्दी और अदरक के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कंद के बढ़वार के लिए गहरी जुताई करना 2 से 3 बार गहरी जुताई करना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही जब हम अंतिम जुताई जब करते हैं उसके साथ में हम 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट हम मिला देते हैं ताकि हमारे भूमि के जो जीवाश्म है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ सके और हमारी भूमि जो है वो भुरभुरी हो जाए और हमारी कंद की विकास जो है बहुत अच्छे से हो सके और अधिक से अधिक लाभ हमको मिल सके। जहां तक बात है बीज दर की तो हल्दी के लिए हमको लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अदरक के लिए 7 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम इस बीज को हम अपने पास ले आते हैं तब इससे कार्बेंडाजिम नामक जैव फफूंदी नाशक या बाविस्टीन का हम 2.5 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से हम इसे लगभग 60 मिनट तक हम इसे डुबा करके रखते हैं और 24 घंटे तक इसको छायादार जगह में सुखाने के बाद ही हम इसके कंद को बुवाई के लिए खेत में लेकर जाते हैं।
2: तो एकर बुवाई के सही बेरा का होना चाहिए और बुवाई की विधि और एकर उन्नत प्रजाति के बारे में घलोक बताते हो।
3: जी बुवाई की विधि और बुवाई का समय जो है हल्दी और अदरक के लिए दोनों सेम होता है। हम 15 अप्रैल से 30 जून के बीच में हल्दी और अदरक की बुवाई कर देते हैं और पानी की व्यवस्था भी हमें इसमें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था अगर अच्छे से हुई तो 15 से 20 दिन में ही इसमें अंकुरण आराम से आ जाता है। बुवाई की विधि जो होती है इसमें हम एक तो मेड़ बना करके, मेड़ मतलब क्यारी बना करके, या फिर हम समतल भूमि में भी इसकी कंद की बुवाई जो हम करते हैं जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम 30 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी हम 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि हमारे कंद का जो बढ़वार है वो अच्छे से हो सके। जहां तक बात है प्रजाति की, तो हल्दी के लिए अभी छत्तीसगढ़ हल्दी 1 और छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 2 ये जो किस्में हैं वो छत्तीसगढ़ की भूमि में लगाने के लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म है। इसे हमें किसान भाइयों को हम लगाने के लिए हम बोलते हैं और किसान भाइयों को इसे लगाना भी चाहिए। अदरक की जहाँ तक बात है, इसमें सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि ये ऐसी वैरायटी है जो छत्तीसगढ़ की भूमि में हम आसानी से लगा सकते हैं।
2: ये तो बड़ा सा जानकारी रही से भाई कि ये जो प्रजाति आपन बताया हो ये मन आसानी ने आप मन के आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विश्वविद्यालय में आसानी ने उपलब्ध हो जाएगी।
3: हाँ, उपलब्ध होता है।
2: जी जी डॉक्टर साहब, यहू बताते हो आपन की अदरक की खेती पर खाद, उर्वरक और सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कौन प्रकार ले करना चाहिए?
3: जी, किसी भी फसल के बढ़वार के लिए खाद एवं उर्वरक मतलब खाना देना हमें बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके अच्छी बढ़वार के लिए हम गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का हम उपयोग करते हैं, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उपयोग करते हैं। साथ ही हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है वो 80 और 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन 3 भागों में बांट कर देते हैं और फास्फोरस एवं पोटास की जो मात्रा है उसे हम शुरुआत में ही दे देते हैं। सिंचाई एवं जो जल निकास की जो व्यवस्था है, किसी भी फसल के लिए पानी तो बहुत जरूरी होता है और उसी प्रकार हल्दी और अदरक के फसल के लिए भी हमें इसके लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए या 10 से 20 दिन के अंतराल में हमें सिंचाई करनी चाहिए ताकि प्रकंद जो रहते हैं वो अच्छे से मिट्टी में जमा करके रखे और जो और भी जो कंद आते हैं वो अच्छे से आ सके। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अगर नाली बना करके या पंक्ति बना करके हम इसकी कंद की रोपाई करते हैं तो हमें मल्चिंग लगाना चाहिए। मल्चिंग लगाने से खरपतवार जो नियंत्रण है बहुत अच्छे से होता है। अगर हम नहीं भी लगाए हैं तो 2 से 3 बार हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा करके भी हम इससे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, हल्दी और अदरक में लगने वाला जो कीट है, प्रमुख कीट और रोग, एकर बारे में विस्तार से बताते हो कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं और एकर प्रबंधन कौन प्रकार ले करना चाहिए?
3: जी, हल्दी और अदरक ऐसी फसल है जो मिट्टी के नीचे रहती है तो जड़ गलन जिसे हम बोलते हैं, प्रकंद भेदक कीट या दीमक या फिर चींटी, ऐसे कीड़े होते हैं जो उसमें लगते हैं और ये जो कीट है वो अधिक पानी जमा होने के कारण भी लगते हैं। इसलिए हमें पानी के जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो उचित तरीके से हमें करनी चाहिए और इसके नियंत्रण का मुख्य जो भाग है वो है जो हम निंदाई गुड़ाई करते हैं उसे हमें अच्छे से करना चाहिए ताकि उसमें जो अंडे रहते हैं या उनके जो शिशु प्यूपा जिसे हम बोलते हैं वो सूर्य की किरण से आराम से वो नष्ट हो जाए, ऐसे निंदाई गुड़ाई हमें करना चाहिए। या कॉर्पोरी फॉस का 20 ईसी का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। अब जहां तक बात है रोग की, तो इसमें प्रकंद गलन रोग होता है, येलो विल्ट होता है, बैक्टीरियल विल्ट नामक रोग होते हैं। तो इसके लिए हमें फसल चक्र परिवर्तन अपनाना चाहिए, रोग ग्रसित जो पौधे हैं उसे हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, साथ ही जो बीज हम ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से रासायनिक कीटनाशक से, रासायनिक रोगनाशक से या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक जैव फफूंदी नाशक होता है उससे हमें उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। इसके अलावा डायथेन M45 का 0.2%, मैनकोजेब 0.3% या बोडो मिक्सर में 30 मिनट बीज को डुबा करके इसकी बुवाई हमें करनी चाहिए।
2: डॉक्टर साहब ये तो हो गया आपन के कीट प्रबंधन और रोग के जानकारी, यहू बताते हो कि एमा हल्दी अदरक के खुदाई और भंडारण कौन प्रकार ले कर सकत हन और संग मा एकर उपज प्रति हेक्टेयर खर्चा और लाभ कतका होते।
3: जी, किसी भी फसल को हम लगाते हैं तो उसका खुदाई का या हार्वेस्टिंग का जो बात कहें, तो हल्दी और अदरक के लिए जब हमारे लगाने के 6 से 9 महीने के बाद में हमारी जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है, इसमें क्या होता है पत्तियां जो है वो पीली पड़ के सूखने लगती है, तब उस अवस्था में हमें इसकी खुदाई करनी चाहिए और खुदाई करने के बाद उसकी मिट्टी को अच्छे से साफ करके उसे छायादार जगह में भंडारण करके हमें रखना चाहिए। और उपज की जहां तक बात है, हल्दी और अदरक में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर हमें उपज मिलता है। और मूल्य वर्धन की जहां तक बात है तो आपको सब पता है कि अदरक से हम एक तो सोठ बनाते हैं जिससे अलग अलग प्रकार की हम दवाइयां बनाते हैं, साथ ही जो हल्दी होता है उसका भी मूल्यवर्धन करके उसे उबाल करके सुखा करके हम उसका हल्दी पाउडर बनाते हैं, या फिर उसका हल्दी को अच्छे से पका करके हम एक तो पूजा पाठ में भी उसका उपयोग करते हैं। और खर्च एवं लाभ की जहां तक बात है तो अदरक की खेती में लगभग हमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है, तो उसमें शुद्ध लाभ जो होता है 3 से 6 लाख के आसपास प्रति हेक्टेयर हमें शुद्ध मुनाफा होता है। हल्दी की खेती के लिए लागत जो है वो 40,000 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ होता है, तो शुद्ध लाभ हमें 1 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मिलता है।
2: तो भाई में लागत कम है और लाभ ज्यादा है।
3: जी जी जी
2: जी जी। तो डॉक्टर साहब अपन जो किसान भाई है अभी जो धान के अलावा करेला करना चाहते हैं तो अपन का संदेश देना चाहूँ?
3: जी, अभी के युवा जो किसान भाई उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जो अभी खेत बचाओ अभियान जो हमारा चला आ रहा है उसके अंतर्गत जो आप धान लगाने के बाद जो पराली जलाने की जो परंपरा चली आ रही है उसे खत्म करिए, पराली न जलाएं, और साथ ही अपनी भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको अच्छी भूमि और अच्छा जल देने के लिए धान के बाद धान फसल न लगा करके फसल चक्र परिवर्तन अपनाएं और चना मूंग उड़द सब्जी जैसी फसलों का आप उपयोग करें और अपनी भूमि को और अपने जल को बचाएं।
2: तो डॉक्टर साहब आप मन बड़ सुघर जानकारी दे हो कि भाई धान के अलावा भी बहुत सारा विकल्प है हमारे पास कि हम अपन भूमि ला अपन जलवायु ला अपन पर्यावरण ला हम कैसे सुरक्षित रख सकत हन, माटी ला स्वस्थ रखत हम अपन भविष्य ला कैसे स्वस्थ बना सकत हन।
3: जी,
2: तो भाई बड़ सुघर आप मन जानकारी देओ, ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
0: दीदी। अभी आज के सलाह क्रम हमन सुनत रहें जेमा हल्दी और अदरक के वैज्ञानिक खेती ला सुघर जानकारी देत रहिन हवे विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी। एमन हा विषय वस्तु विशेषज्ञ रहिन हे हवे कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी मा, एकर संग गोड़ बात करत रहिन हे पूजा चंद्रवंशी।

0: तेजेश्वर।
1: हाँ दीदी,
0: ये बात तो हम सब जानथन कि पानी ले जिनगानी है और पानी ले खेती किसानी है ना। पानी के हर बूंद कीमती होते तो पानी ला बचा के रखना हमारी जिम्मेवारी बनते है ना। और देख इसने ही कुछ बात ये गीत मा संदेश दे हैं चतुर राम साहू, कांतिबाई यादव और गीता भट्ट। तो इखर संदेश सुनथन ये गीत के रूप में।

0: पानी ल अवैया पीढ़ी बर बचाओ, कतका बढ़िया संदेश रहिस ए गीत म। एला स्वर दे रही ने चतुर राम साहू, कांति यादव और गीता भट्ट।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम
2: किसान। दीदी, आज जो खेती के तौर तरीके है ना, ओमन में बड़ा कन बदलाव देखे बा मिला।
0: बिल्कुल हाँ।
2: भाई पारंपरिक जो खेती होत रही से ओला हट के हमन हा कम लागत और ज्यादा उत्पादन होए, ज्यादा आमदनी होए, एकर बर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती ला अपनावा जावत
0: है। बिल्कुल, और नवा नवा तकनीक आगे है अब तो, है ना, तो सब तकनीक ला अपना के किसान जो है वो खेती करत है, है ना।
2: और खेती के जो भुइया हावे ना, वो दिनों दिन हमार बढ़त जनसंख्या के हिसाब से नहीं बढ़त है, वो बढ़त जनसंख्या भरे हावे, फिर जो खेती के भुइया है वो कमती हो जाते
0: हैं।
2: और भाई जब हम किसानी करबो या हम किसान संगी जतिक जन हवन, ओकर मन में प्रश्न चिन्ह हो जाते कि आने जन कौन विधि है जिला हमन हाँ अपना के अपन जन बढ़त जनसंख्या है ओकर
0: बर पूर्ति हो जाए,
2: सबो बर पूर्ति हो जाए और जतिक भी कृषि संसाधन है ओकर उपयोग घलो हो जाए और संग मा जन खाद्य के पूर्ति है वह घलो बने रहा है। कृषक जन उत्पादक संगठन है ना दीदी, जिला हमन हाँ एफपीओ कथन, ओला जो है किसान मन के जन बनाए एक ठन कहान त कंपनी कहान या संस्था कहान, वो हर हरे जेमे खुदे किसान मन सदस्य बनते और सदस्य बने के बाद मन मिलजुल के खेती ले जुड़े जम्मो बूता काम है ओला करते। एकर ले एकर मुख्य उद्देश्य ही हावे कि किसान जोन भी फसल ला उत्पादन करत है ओकर जोन सही और उचित मूल्य है ओला मिल जाए। बीजा है, खाद है, रासायनिक जतिक भी दवा है

0: ना सके, ए जम्मो मन ह कमती कीमत म ओला मिल सके,
1: कमती कीमत म समय म ओला मिल जावे, है ना।
0: जब कृषि उत्पाद है, जब हमन कोनो भी उत्पाद हमन बनात हन ओला सामूहिक ढंग ले हमन बिक्री कर सकथन, कोनो भी जगह बेचत हन तो बढ़िया ढंग ले हमला मूल्य मिल सकते।
1: फसल बिचौलिया

0: व्यवस्था है बहु एकर ढंग ले हो जाते उप उत्पाद जतिक भी बने हैं ओकर प्रसंस्करण के सुविधा हमें मिल जाते कतको अकन जगह में लाना ले जाना है तो गाड़ी है परिवहन है एक व्यवस्था बन ढंग ले हो पाते और ये जम्मो ले किसान मन के आय में घलो बढ़ोतरी देखे में मिलते है।
1: बिल्कुल
0: दीदी ऐसे होते कि ये जन संगठन है कुल मिला के कहां तक खाद उर्वरक और बीजा कीटनाशक मन ला कमती कीमत में हमला दे सके संग में फसल ला बेचे के बाद हमन जन बिचौलिया मन ला जोन ऊपर आश्रित रहन ते हमला छूटे और बैंक ले जोन हमला कृषि ऋण है वो बने ढंग ले मिल सके संग में सरकारी योजना मन है ओकर आसानी से हमला लाभ मिल सके ये जम्मो
1: ला उद्देश्य है
0: और नवा जोन कृषि तकनीक है ओकर जानकारी घलो हमन हा एक दूसरा ला बता पाथन। दीदी एक ठन ना हेलो चौपाल ले जुड़े सूचना घलो हावे संगी मोला बता देथन। संगी हो अवैया शुक्रवार 19 जून 2026 यानी काली प्रसारित हो या हेलो चौपाल के जोन कार्यक्रम के विषय हावे लाख लगाए लाखों कमाए जीवन समृद्ध बनाए। आपके आप मन के जतिक भी समस्या है जिज्ञासा है एकर समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू एमन हा विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पांदा दुर्गमा। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमला फोन कर सकत हो हमार फोन नंबर हावे 400-3482 400-3483 400-3484 रायपुर के स्टडी कोड हावे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार के 19 जून 2026 के 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा 7:30 बजे करे जाही। हमन ला आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही संगी हो सूचना ही मेर सिरावत है।
1: तो ये तो रही सूचना और अब तेजेश्वर बेरा है कृषक प्रश्न मंच क्रम के संगवारी मन अगोरा हुई आज के प्रश्न के तो हमारे तेजेश्वर भाई आज के प्रश्न कतका देर बताए के तो संगवारी मन बता दे आज के प्रश्न।
0: दीदी हमारे संगी मतलब बता दन कि जन छत्तीसगढ़िया हन छत्तीसगढ़ में हन तो हमर जन छत्तीसगढ़ पर हल्दी और अदरक के उपयुक्त जोन किस्म हावे किस्म हावे वो का हावे ओला बताओ संगी हो हमारा आज विशेषज्ञ है मतलब बताइन घलो हावे कि का हमन हा किस्म के उपयोग हमन करबो या लगाबो
1: ये सवाल के जवाब संगवारी मन आज के जोन कार्यक्रम सुने है ना ओमा मिल जाही है और पाछू हफ्ता जोन प्रश्न पूछे रहे ओकर सही जवाब बता देते जे सर।
0: पाछू हफ्ता के जोन प्रश्न हिसाब दीदी की जोन हाइड्रोपोनिक तकनीक है वो का होते ओकर विशेषता का है तो ये हर ऐसे होते कि बिना माटी के जोन पोषक तत्व है और पानी है एकर घोल में जोन है पौधा के तक उपयोग करथन हमन पौधा लगाथन एकर ले घास या फिर हमन जोन सब्जी वाला पौधा है ओला उगा सकथन और सही जवाब भेजे हमार संगी मन घलो
1: हावे संगवारी है
0: एमन हावे बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा पार्थ कश्यप उमेश धनेश्वरी वर्मा बंटी और बबली वर्मा लोरमी ग्राम चचेड़ी ले है कमलकांत मरावी प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मदनपुर कवर्धा ले है श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू तेंदु भाटा मगलोर जिला धमतरी ले है उमेंद कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन भूपेश दिव्यांग शिवा निषाद मनहा। सही जवाब भेजिए जम्मू संगवारी मन ला
1: बहुत बहुत बधाई। तो ये तो ही सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम और एक ठीक बढ़िया सही गीत सुनते तेजेश्वर राकेश तिवारी और नरेश निर्मल करके स्वर में।

0: राकेश तिवारी और नरेश निर्मलकर के स्वर में अभी सुग्घर अकन गीत सुनत रहे दीदी। ये तो रही से किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और तेजेश्वर अभवत है जाए के बेरा तो संगवारी मन बता देते जाए के पहली काली के कार्यक्रम तो काली चौपाल में हो ही संगवारी हो क्रम हेलो चौपाल फोन इन कार्यक्रम एमा विषय हो ही लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं। ये विषय में कल आप मन फोन कर सकता हो विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू और हो ही कृषक प्रश्न मंच क्रम और गीत संगीत भी हो ही संगी हो तब कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगवारी मल्ला विनीता
0: और तेजस्वर के
1: राम राम, राम।

0: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म हंसी तो फंसी में चिन्मय श्रीपदा को, गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत विशाल शेखर का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

सिंह इज किंग। लीजिए इस फिल्म में सुनिए राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल को, गीत के बोल मयूर पुरी के और संगीत प्रीतम का।

बैंड बाजा बारात लीजिए। इस फिल्म में सुनिए श्रेया घोषाल को गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत सलीम मजन का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की।

0: श्रोताओं नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं रीना त्रिपाठी। श्रोताओं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन इस पंक्ति को छत्तीसगढ़ की एक होनहार बेटी चारू पांडे ने अपने जुनून से सच साबित कर दिया है। महज 23 साल की उम्र में चारू ने वह कर दिखाया है जिसका सपना लाखों एस्पिरेंट्स देखते हैं। उन्होंने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर एक मिसाल कायम की है। रायपुर जिले के तुलसी तिल्दा की रहने वाली चारू आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही रणनीति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। और श्रोताओं, चारू इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनकी उपलब्धियों और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू।
0: चारू, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी उपलब्धियों के लिए। चारू, 23 साल की उम्र है आपकी। इस उम्र में आपने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आप अपनी इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और क्या आपको कोई सम्मान भी मिलने वाला है इसके लिए?
1: जी, मुझे अभी राष्ट्रपति जी से सम्मान मिलने वाला है एट होम पे 15 अगस्त को। इस उपलब्धि को बस मुझे देख के खुशी होती है क्योंकि मैंने भी कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगी।
0: चारू, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था?
1: जी, एक्चुअली मुझे मतलब सोची नहीं थी कि कभी इतने सारे एग्जाम्स दूंगी, क्रैक करूंगी। बट ये था मुझे कि एक मुझे अच्छे डिपार्टमेंट पे जाना है। मेरा ड्रीम था कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जाना है या मैं कोई भी एग्जाम से जाऊंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही चूज करना था। फिर किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट बाद में, इसलिए मैं सारे फॉर्म्स डालते जाती थी, सारे एग्जाम्स देते गई बस।
0: तो आपका लक्ष्य क्या था?
1: मेरा लक्ष्य यही था कि मैं किसी भी स्टेट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बस मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, यही मेरा एम
0: था। मतलब आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करने का शुरू से मन था। जी। चारू, आपने कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं? इनमें से कौन सी सफलता आपके लिए सबसे यादगार रही?
1: हाँ, एक्चुअली मैंने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम्स ट्रू जैसा था। क्योंकि मैं एग्जाम्स देने के लिए जाती थी, तब मैंने ये एग्जाम देखा था जिसपे एकदम मतलब टाइम इतना कम हमारे पास, इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। फिर जब ये क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद जो मेरा ड्रीम जॉब था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना था, सो मुझे एसएससी सीजीएल के थ्रू ही उस डिपार्टमेंट पे मुझे हुआ। सो इसलिए एसएससी के सारे एग्जाम्स मेरे लिए बहुत वो है।
0: जी। चारू, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं?
1: जी, एक्चुअली अभी मेरी पोस्टिंग एसएससी सीजीएल के थ्रू हुई है। मेरी पोस्टिंग चेन्नई में है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
0: चारू, मैं आपसे यह भी जानना चाहेंगी कि आपकी पढ़ाई करने की दिनचर्या क्या रहती थी, आपने किस तरह से तैयारी की?
1: जी, एक्चुअली मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे इतने टॉपिक्स एक दिन पे कवर करना है, तो वो जितना भी टाइम लगे मैं वो कवर करती थी। एक्चुअली रात को सोने में वही 12-1 बज जाती थी और मुझे सुबह 4 बजे उठना होता था। तो जैसे कि अब हम फोन पे अलार्म सेट करेंगे, क्या होती है वो हम ऑफ करके सो जाते हैं, इसलिए मैं अलार्म सेट नहीं करती थी। मेरी नानी थी, वो मुझे डेली 3:40 में कॉल करके उठाती थी। क्योंकि नानी का कॉल ऐसा रहता था, एक बार आप कट किए या नहीं उठाए तो वो बार बार कॉल करती थी। तो उनका सबसे बड़ा
0: कॉल उनका अलार्म की तरह ही था आपके लिए, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें।
1: बहुत बड़ी है।
0: तो आप किस तरह से पढ़ाई करती थी? दिन भर आपका शेड्यूल क्या होता था?
1: दिन भर एक्चुअली स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो मैं कोचिंग भी जाती थी, तो 7 to 10 मेरी कोचिंग होती थी। फिर कोचिंग से आने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। जब ऐसा होता था कि रूम में पढ़ाई का मन नहीं होता था तो मैं लाइब्रेरी चले जाती थी, क्योंकि लाइब्रेरी पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती थी। अगर आप वहां नींद आएगा तब भी आप जब सबको देखोगे पढ़ते हुए तो खुद को लगता था कि
0: कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहता है लाइब्रेरी में,
1: इसीलिए फिर मैं लाइब्रेरी चले जाती थी। फिर थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए एकाग्रह घूम के फिर आके रूम में पढ़ाई करती थी।
0: तो पूरा दिन आप पढ़ते रहते थे?
1: हाँ, ऑलमोस्ट मतलब 7 मंथ्स जब तक मैं थी बाहर पीजी में, उस टाइम बस पूरा पढ़ाई ही की मैं।
0: यह भी बताएं कि अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई?
1: जी एक्चुअली एसएससी में देखेंगे या रेलवे में देखेंगे, इस दोनों में सबसे कॉमन चीज होती है टाइमिंग
0: जी,
1: क्योंकि जितना जल्दी हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो। दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोगों को पहले ये समझना जरूरी होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है
0: जी,
1: क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाली क्वेश्चन रहती है उसको हमें स्किप करना रहता
0: और
1: है।
0: किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है,
1: नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस दोनों में ही। तो फिर वही मेन चीज समझना होता है कि क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है। उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए वो समझने के लिए। सिलेबस में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होती थी, किसी में कुछ टॉपिक्स कम होती थी। ये मतलब रेलवे के लिए मैं एक्स्ट्रा 2 आवर्स टाइम देती थी क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होता था बस। बाकी एसएससी के लिए ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस इसी के सिलेबस से हो गई वो। फिर
0: चारू, इस वक्त आपको बहुत सारी युवा श्रोता सुन रहे हैं, तो आप उन्हें समय प्रबंधन को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगी?
1: देखिए, इसका एक ही है कि एक दिन का आप टारगेट बना के रखिए कि इतना पढ़ना ही है। कभी भी हम लोग टाइम टेबल सेट करेंगे उस टाइम टेबल पे हम लोग कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए एक मतलब रखेंगे कि इस दिन पे मुझे इतने टॉपिक्स कवर करनी है। अभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद कर लो, लेकिन जब तक वो टॉपिक्स कवर ना हो तब तक सोना नहीं है
0: जी।
1: तो वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, तो वो अच्छा होता है उससे। फिर सबसे ज्यादा मेरे काम वही आई।
0: क्या आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था या स्व अध्ययन पर ही भरोसा किया?
1: एक्चुअली अभी जितने भी एग्जाम्स किया मैंने उसका कोचिंग मैंने नहीं किया। मैं सोशल मीडिया से पढ़ाई करती थी, सोशल मीडिया पे अलग अलग टीचर्स होते हैं, वो लोग सारे रील्स डालते थे तो उनकी हेल्प से फिर मैंने पढ़ाई किया।
0: चारू, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग टॉप करते हैं या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते हैं उन्हें अक्सर यह कहते सुना जाता है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। तो आपने किस तरह से सोशल मीडिया और पढ़ाई के बीच में सामंजस्य बिठाया?
1: जैसे कि उस पे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्लियर किया हुआ है
0: जी।
1: जिसका नोट्स मैंने सोशल मीडिया से मैंने

0: खरीदा टॉपर्स का नोट्स, तो वो नोट्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ही मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया। देखिए जैसे कि वो ऐसा कंटेंट शो करते हैं सोशल मीडिया जिसपे हम इंटरेस्ट करेंगे, अगर एक बार हम स्टडीज वाला चीज देखेंगे तो वो हमें बस वही वही शो करेंगे, तो वो और अच्छे अच्छे सजेशन देके वो हमें और अच्छे अच्छे वीडियो सजेस्ट करते हैं जिससे बहुत हेल्प होता है। तो जैसे कि अब जब हम पढ़ाई का ही देख रहे हैं तो जब भी हम खोलेंगे सोशल मीडिया पूरा हमें वही सब ही दिखाएगा, तो फिर डिस्ट्रेक्शन की तो बात ही नहीं है।
1: तो मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल रहा आपकी तैयारी के लिए।
0: जी।
1: चारू, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
0: नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे डिमोटिवेशन होता था कि कर पाऊंगी या नहीं
1: जी।
0: बाकी और कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा कुछ होने से पेरेंट्स होते थे मतलब मोटिवेट करने के लिए वो लोग।
1: चारू, क्या आपको याद आता है कभी ऐसा भी समय आया हो जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो, और अगर हाँ तो उससे आप कैसे उभरी?
0: मुझे निराशा का सामना तभी करना पड़ता था जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स कम आते थे, तो मतलब ऐसे ही देखते देखते मतलब पता चला भी हमारे पास सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं हम
1: जी।
0: तो वहां से मैंने एनालिसिस किया तो एआई मेरे बहुत ज्यादा हेल्प किया, मतलब वो बताता था कि मैं कैसे मिस्टेक्स कर रही, कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है तो एआई से मिला है।
1: आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसमें आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही?
0: शिक्षकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जितना भी मैंने उनसे पढ़ा उसी से ही जाके मैं पूरा सीखी। फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, 100% सपोर्ट मिला। जो भी पढ़ना चाहती थी, जहां भी रह के पढ़ना चाहती थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। सबसे ज्यादा सक्सेस पे मेरा मतलब देखेंगे तो मेरे फैमिली से ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर, सारे टीचर्स, पैटर्नल देखेंगे या मैटर्नल देखेंगे तो सबसे ज्यादा उनका वो रहा। मेरे दादा स्वर्गीय श्री हीरालाल पांडे
1: जी
0: वो भी टीचर थे। जो मेरे नाना जी थे मतलब स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर तिवारी
1: जी,
0: मतलब उनका शुरू से बिलीव था मेरे ऊपर। जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे बोलते थे मेरी अफसर बिटिया, वो तब से ही बहुत बिलीव था उनको मेरे ऊपर कि मैं जाके आगे कुछ ना कुछ अच्छा
1: करूंगी। अफसर बन के दिखा दिया। और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके जीवन में?
0: फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल था, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे। जब मुझे ये हुआ कि मुझे कोचिंग करना है, मतलब ये अब देखेंगे छत्तीसगढ़ पे सबसे ज्यादा कोचिंग होती है सीजीपीएससी की, तो मैंने बोला कि मुझे सीजीपीएससी की कोचिंग करनी है। तो तब दो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे साथ घूम घूम के पूरे डेमो अटेंड करते थे।
1: अच्छा।
0: फिर जब मैंने बोला कि मुझे पीजी पे शिफ्ट होना है, उन्होंने पूरा मेरे लिए अच्छा सा पीजी ढूंढा। फिर अब पीजी पे रह रहे तो ऑब्वियसली हम लोगों को टिफिन सर्विसेज चाहिए होगी, सारा अरेंजमेंट्स वो लोग करते थे।
1: चारू, आज के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफी दबाव रहता है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को काम नहीं मिलेगी, कोई वर्क नहीं है। आज की मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, तो ऐसे निगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देखेंगे तो स्टेट सेंट्रल इतनी सारी होती है। अगर हम अच्छे से टारगेट करके मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा, दो में नहीं, लेकिन वो मिलेगा फ्यूचर में कुछ ना कुछ। मतलब बस ये कहना चाहती हूँ कि एक एग्जाम में ना रहे, वो
1: ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है,
0: उसके सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उस पे वो ट्राई करना चाहिए।
1: डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं आजकल के बच्चे और युवा जो हैं।
0: जी।

0: फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11 बजे हैं, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।